एफएम 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 15वीं तिथि तदनुसार 6 अगस्त सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58:40 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।

0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणाली के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉक्टर वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपए की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार नमस्ते स्कीम के अंतर्गत ऐसे लोगों को टिकाऊ आजीविका के अवसर देना जारी रखे हुए है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का ढहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही पहलों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पर श्री जोशी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। ईरान ने कहा है कि ओमान के साथ हॉर्मूज जलडमरू मध्य पर समझौते की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस सप्ताह समझौते की घोषणा का अंदेशा जताया है। संभावित समझौते से इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को फिर से खोलने में मदद मिल सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सकता है। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयंबटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कोयंबटूर में आज खेले जाने वाले सेमीफाइनल में ओडिशा का मुकाबला पंजाब से और झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, ओडिशा, महाराष्ट्र के भीतरी हिस्सों, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आराध्य को निवेदित भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हे भोलेनाथ, आप तो कृपा के सागर हो, आपको बारंबार प्रणाम है।
2: शिवलिंग का अभिषेक करने चल पड़ता है तो नीलकंठ के दर्शन की लालसा बढ़ती ही जाती है। उसे रास्ते के कुछ कांटे भी फूल समान लगते हैं। उसकी श्रद्धा अटूट होती है और विश्वास सागर से ज्यादा गहरा।

सूरदास जी हरे कृष्ण धुन गाते गाते एक कुएं में गिर गए। कृष्ण को पुकार लगाई, कृष्ण आ गए और ले चले सूरदास को कुएं से निकालकर बाहर। सूरदास तो समझ गए ये और कोई नहीं है, ये मेरे कन्हैया हैं। पकड़ लिया हाथ। कृष्ण बोले अब तो छोड़ दो, मैं तो तुम्हें छुड़ाने आया था बस। सूरदास बोले नहीं, तुम और कोई नहीं, मेरे कन्हैया हो। कन्हैया बोले नहीं सूर, मैं तो बस साधारण ग्रामीण हूं, यहां से गुजर रहा था, तुम्हें कुएं में गिरे हुए देखा तो निकाल दिया। सूरदास जी ने कहा नहीं, मैं जानता हूं तुम कौन हो, तुम ही हो मेरे कन्हैया। और कृष्ण ने हाथ छुड़ाया और भाग गए। सूरदास जी

0: काचरू अनूप चलोटा और साथियों को एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन बिंदु।
1: बात प्राचीन समय की है। किसी राजा के राज्य में अकाल पड़ा, प्रजा भूख मरने लगी। राजा चिंतित हो उठे। मंत्री और दरबारियों से परामर्श किया गया। सुझाव मिला, राज्य में यदि एक बड़ी नहर बनवा दी जाए तो पानी की समस्या हल हो जाएगी। राजा को बात जच गई। नहर की खुदाई का काम शुरू करा दिया गया। राज्य के हजारों व्यक्ति इस काम में लग गए। उसी राज्य में एक घसियारा रहता था। वो देशभक्त और परिश्रमी था। नहर की खुदाई की बात घसियारे ने भी सुनी। वो सोचने लगा, राजा प्रजा की भलाई के लिए ये काम करवा रहे हैं, प्रजा का भी कुछ कर्तव्य है। ये सोचकर वो नहर के किनारे आ गया, फावड़ा लेकर खुदाई में जुट गया। वह प्रतिदिन दोपहर तक घास खोदता, उसके बाद नहर की खुदाई में हाथ बटाता था। खुदाई का काम कराने वाले उसे मजदूरी देते, मगर वह लेता नहीं था। धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंच गई। वो भी चकित रह गए। दूसरे दिन राजा स्वयं नहर पर आए। पसीने से लथपथ घसियारा नहर खोदने में जुटा हुआ था। पास ही घास का गट्ठर रखा हुआ था। राजा ने उसे अपने पास बुलाया, पूछा, तुम मजदूरी क्यों नहीं कर लेते? उसने हाथ जोड़कर कहा, अन्नदाता, मैं आपकी प्रजा हूं, आप हमारी भलाई के लिए ये काम करा रहे हैं, क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? मगर तुम्हें खाने पीने के लिए भी तो कुछ चाहिए, राजा ने पूछा। मैं घास खोद कर लाता हूं, इसे बेचने से मेरे परिवार का गुजारा चल जाता है। खुदाई का काम तो मैं अपनी खुशी से करता हूं। राजा ने मंत्री से सलाह की, फिर कुछ सोचकर घसियारे से कहने लगे, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुम दरबारी नियुक्त किए जाते हो। घसियारा तुरंत बोला, आप राजा हैं, आपकी हर आज्ञा मुझे शिरोधार है, किंतु मैं दरबारी कैसे बन सकता हूं? मैं तो बिना पढ़ा लिखा आदमी हूं, मुझे जैसा गंवार दरबारी होगा तो उससे आपकी प्रतिष्ठा घटेगी। तभी काम का समय समाप्त हो गया। मजदूर अपनी मजदूरी लेने लगे। घसियारा घास का गट्ठर उठाकर चलने लगा। राजा ने उसे रोका, कहा, ठीक है, तुम मेरे दरबारी नहीं बनना चाहते हो तो मत बनो, मगर आज से तुम मेरे गुरु बन गए। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो गंवार आदमी हूं, गुरु तो बहुत ऊंची पदवी है, मैं आपका गुरु कैसे बन सकता हूं? घसियारे ने पूछा। हां, मैं राजा होकर भी इतने बड़े त्याग की बात नहीं सोच पाया। तुम अपने परिवार का मुश्किल से पालन करने पर भी दूसरों की भलाई में जुटे हो, कहकर राजा ने घसियारे को राजकीय सम्मान देकर विदा कर दिया।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन बिंदु। विषय था राजगुरु, आलेख आचार्य भगवान का था और वाचन स्वर था श्री श्री कृष्ण शरद का। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

जनकपुर से श्री राम विवाह के समाचार की पत्रिका पाकर अयोध्या के राजमहलों में आनंद की लहर दौड़ गई। राजमहलों में उत्साह और उमंग छलक रहा है। रानियां ब्राह्मणों तथा भिक्षुकों को बुलवाकर दान और निछावरे दे रही हैं। शुभ समाचार पाकर अयोध्या के नागरिक प्रेम मग्न हो रास्ते, भवन और गलियां सजाने लगे हैं। ध्वज पताकाओं, पर्दों और सुंदर चंवरों से बाजार की शोभा अनूठी हो गई है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरों, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से सजाकर लोगों ने अपने अपने भवन मंगल

मैं बना लिए हैं। चंदन, केशर, कस्तूरी और कपूर के चतुरसम से गली चौराहों पर चौक पुराए जा रहे हैं। सुंदर सुहागिने सोलहों श्रृंगार किए मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं। राजा दशरथ के राजमहलों की शोभा का वर्णन शब्दों से परे है। उस स्थान का वर्णन कौन कवि कर सकता है जहाँ समस्त देव

सकता है, जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री राम ने अवतार लिया है। राजा दशरथ ने कुमार भरत और शत्रुघ्न को बुलवाकर बारात सजाने का आदेश दिया। कुमारों ने साहनी अर्थात घुड़साल के अध्यक्ष को बुलाकर घोड़े हाथी सजाने की आज्ञा दी।

अभी आप सुन रहे थे सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में तैयार श्री रामचरित मानस गान का आज का संगीतबद्ध प्रसंग, जिस स्वरों में पिरोया था भूपेंद्र सिंह और मिताली पी सिंह ने। FM 102.2 मेगाहर्ष पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

से कुछ देर बाद यानी 6:50 पर कार्यक्रम खेती की बातें में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का विषय रहेगा वैज्ञानिक प्रजनन से पशुपालन में अधिकतम लाभ, और वार्ताकार होंगे विजय सिंह नौलखा। 7 बजे हमारे श्रोता आनंद लेंगे पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भोले बिस्तरे गीत का। 7:18 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी लखनऊ से। आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रजमाधुरी। ब्रजमाधुरी कार्यक्रम

में आज आप सुनेंगे ब्रज वार्ता। ब्रज के शिव देवालयन में श्रावण मास की धूम। वार्ताकार होंगे आचार्य अशोक कुमार जोशी। साथ ही आनंद लेंगे आप कुछ ब्रज लोकगीतों का। 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में कुछ गीतांजलि के नगमे। 9:00 आप सुनेंगे काव्यलोक कार्यक्रम में। आज का विषय रहेगा पावस और श्रावण मास। आलेख एवं वाचन होगा रविंद्र पाल सिंह रसिक। 9:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आबो हवा। 9:30 पर कार्यक्रम विशेष बातचीत आप सुनेंगे। ओबी आधारित संस्मरणात्मक बातचीत विशेषज्ञ होंगे ब्रजलता चतुर्वेदी की रश्मि शर्मा की बातचीत। और 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 11:00 आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। बारह बजे हमारे श्रोता सुनेंगे सिम्स हेलो डॉक्टर कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। विषय रहेगा अवसाद, डिप्रेशन की समस्याएं और उनके समाधान। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मेघना गुप्ता, वरिष्ठ सलाहकार, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हॉस्पिटल मथुरा। 12:30 पर हमारे श्रोता आनंद लेंगे कार्यक्रम ब्रज लोकगीत में। आज कलाकार होंगे ओम प्रकाश को। 1:15 पर बहनों का कार्यक्रम होगा कार्यक्रम वनिता लोक। आज की चर्चा का विषय रहेगा माँ का दूध सर्वोत्तम आहार। साथ ही इस कार्यक्रम में सुनेंगे वार्ता श्रावण मास की तीज त्योहार और परंपराएं। वार्ताकार होंगी रजनी खंडेलवाल। 2:30 पर हमारे श्रोता सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें में ये जानकारी।
1: आज हम दुधारू पशुओं से अधिकतम लाभ कैसे कमाएं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। पशुपालक अपने दुधारू पशुओं के अनावश्यक खर्चों में बचत करके एवं अधिकतम दुग्ध उत्पादन प्राप्त करके ही सर्वाधिक लाभ कमा सकते हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पशुपालक अपने पशुओं की प्रजनन क्षमता का भरपूर उपयोग करके ही कर सकते हैं। इसके लिए पशुओं का प्रजनन व्याधियों से मुक्त रहना अति आवश्यक है, जो कि उचित आहार व्यवस्था, व्यक्तिगत देखरेख तथा कुशल प्रबंधन द्वारा ही संभव है। पशुओं का सही उम्र पर प्रजनन योग्य हो जाना, कम से कम ब्यांत समय अंतराल, खानपान, गर्मी में आए पशु की पहचान, उचित गर्भाधान व्यवस्था, प्रजनन अभिलेखों को तैयार करना तथा अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करके ही आर्थिक लाभ बढ़ाया जा सकता है। डेयरी पशुओं में एक बार ब्याने से लेकर दोबारा ब्याने तक के समय को ब्यांत अंतराल कहते हैं। यह गायों में 12 माह तथा भैंसों में 13 माह का होता है। बहुत अधिक दूध देने वाले पशुओं में 14 महीने तक ठीक है। ब्यांत अंतराल को कम रखकर पशुपालक अपने पशु से प्रतिदिन व पूरे जीवन काल में अधिकतम दुग्ध उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। दुधारू पशुओं से पूरे ब्यांत के लाभ का 50% प्रथम 100 दिनों में ही प्राप्त हो जाता है। पशु के जीवन में इन दिनों की बढ़ोतरी के लिए ब्याने के बाद शीघ्र गर्भित होना आवश्यक है। ऐसा तभी संभव है जब पशु प्रजनन व्याधियों से मुक्त रहेगा। पशुओं के ब्याने के बाद आहार व्यवस्था समुचित होने पर वह शीघ्र गर्मी में आ जाएगा। ऐसे पशुओं को पहचानने के लिए विभिन्न तरीके अपना सकते हैं, जैसे पशुओं के व्यवहार में परिवर्तन, गायों का एक दूसरे के ऊपर चढ़ना, उत्तेजित रहना, योनि में सूजन व श्राव होना। भैंसों में एक दूसरे पर चढ़ने की क्रिया नहीं दिखाई देती, किंतु इसमें डोंका दिखते हैं। डोंका यानी दूध दुहने के बाद भी थनों में दूध बना रहता है। गर्मी में आए पशुओं की पहचान नियमित रूप से सुबह या शाम को करनी चाहिए, जिससे कि अधिकाधिक पशुओं को समय से गर्भित किया जा सके।

0: अच्छी गर्भित दर पाने के लिए सही समय पर अच्छे वीर्य द्वारा पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान कराना चाहिए। पशुओं को गर्भित कराने में सुबह शाम का नियम अपनाना चाहिए। सुबह गर्मी में दिखे पशुओं को शाम को और शाम को गर्मी में दिखे पशुओं को सुबह गर्भित कराना चाहिए। जो पशु अपेक्षाकृत ज्यादा समय तक गर्मी में दिखे उसे 12 से 24 घंटे के अंतराल पर पुनः गर्भित कराना आवश्यक होता है। गर्भाधान करने के पश्चात जो पशु गर्मी के संभावित समय पर दो बार गर्मी में ना आए ऐसे पशुओं का गर्भ परीक्षण 60 दिन होने पर अवश्य कराएं। गर्भित न होने पर जांच और उपचार करवाएं। कभी कभी गर्भित पशु भी गर्मी के लक्षण प्रदर्शित कर सकता है, ऐसे पशुओं को पुनः गर्भ परीक्षण करवाएं। पशुओं के प्रजनन संबंधी महत्वपूर्ण दिनांकों को पशुपालक को नोट करके रखना चाहिए जिससे कि अपेक्षित घटनाओं का पहले से तैयारी व आकलन किया जा सके। पशु के प्रसव के तरीके को नोट करके रखना चाहिए जिससे कि प्रसव के 50 दिन के अंदर पशु को गर्मी में आ जाना चाहिए एवं 75 से 80 दिन पर कृत्रिम गर्भाधान हो जाना चाहिए। पशु के गर्मी में आने की सभी तारीखों को नोट करके रखना चाहिए ताकि उसके गर्भित होने अथवा गर्भित न होने पर गर्मी में आने की संभावित समय की जानकारी हो सके। गर्मी में आने में अनियमितता अथवा पहचान में चूक की जानकारी आवश्यक है। पशुओं को गर्भित कराने की दिनांक को नोट करके रखना चाहिए तथा 60 दिन होने पर गर्भ परीक्षण अवश्य कराना चाहिए। गर्भित न पाए जाने पर जांच व उपचार तथा गर्भित पाए जाने पर प्रसव के संभावित समय से 60 दिन पूर्व से दूध दुहना बंद कर देना चाहिए। पशुओं के आहार तथा आवास व्यवस्था पर विशेष ध्यान आवश्यक है। अब बात आती है पशुओं की आहार व्यवस्था की। दुधारू पशुओं में व्यवस्थित प्रजनन के लक्ष्य प्राप्ति हेतु संतुलित आहार आपूर्ति आवश्यक है जिससे पशु के दुग्ध उत्पादन हेतु आवश्यक अवयव शरीर में कम न पड़े तथा उच्च दुग्ध उत्पादन के साथ ही पशु गर्मी में भी आ सके। इसके लिए हरा चारा दाना तथा मिनरल मिक्सर पशु को दिया जाना आवश्यक है। प्रसव काल निकट आने पर पशु को पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है जिसकी पूर्ति में कमी होने पर पशु का शरीर विभिन्न व्याधियों से ग्रस्त हो सकता है जैसे गर्भाशय का प्रोलैप्स एबॉर्शन मृत बच्चों का जन्म डिस्टोकिया जेर का रुक जाना आदि। इन व्याधियों से पशु का दुग्ध उत्पादन प्रभावित होता है। यह जानलेवा भी साबित हो सकती है। पशु के स्वस्थ हो जाने के बावजूद वह बांझ हो सकता है तथा उसकी प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है। अतः प्रजनन संबंधी व्याधियों का निदान व उपचार केवल योग्य पशु चिकित्सकों द्वारा ही करवाना चाहिए। जिन पशुओं की प्रजनन क्षमता अपेक्षा के अनुरूप न हो उनको पालना हानिकारक होता है, अतः ऐसे पशुओं को बेचकर नए पशु को खरीदना चाहिए।
1: कार्यक्रम खेती की बातें में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। विषय था वैज्ञानिक प्रजनन से पशुपालन में अधिकतम लाभ। वार्ताकार थे विजय सिंह नौलखा। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
2: संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ता। संसदा षड्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमं सर्वोच्चन्यायालयस्य संशोधनविधेयकं पारितं यत् चर्चोत्तरं राज्यसभया तत् पुनः लोकसभायै प्रेषितम्। लोकसभया एतद् विधेयकं गत सोमवासरे एव पारितम्। अनेन विधेयकेन भारतस्य मुख्य न्यायाधीशं विहाय सर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या वर्तमानात् 33 इत्यतः 37 यावत् वर्धयितुं सर्वोच्च न्यायालयाधिनियमः 55-1900 इत्यस्मिन् संशोधनं भवति। लोकसभया बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयकं 20-26 इति पारितम्। अस्य विधेयकस्य उद्देश्यं बैंक अभिलेखानां साक्ष्य सम्बद्ध नियमं आधुनिकीकांकीय बैंकिंग व्यवस्थया सह अनुकूलयितुमस्ति। विधेयके प्रावधानमस्ति यत् बैंक अभिलेखस्य वैद्युतिकः उत वा आंकिकीयाभिलेखः साक्ष्यरूपेण ग्राह्यः वैधः तथा विधितः प्रवर्तनीयः भविष्यति। लोकसभायाः कार्यम् अपराह्णे 2 प्रथम स्थगनानन्तरं पुनः समारब्धे सति केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एतत् विधेयकं प्रास्तौत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रतिपादितवान्

0: और आइए सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत का ये पहला नगमा। पहला गीत हमने लिया है फिल्म मिलन से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की।
1: सावन का महीना पवन करे शोर,

करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

लता मंगेशकर और मुकेश के गाए फिल्म फर्ज के इस गीत के साथ ही पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तर गीत अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का यह मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे।

0: बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। संसद ने पारित किया न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026। अनुपूरक बजट पास करने के साथ प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के रवैये पर जताई नाराजगी। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के मामले में एनएचएआई ने जिम्मेदारों पर की कार्रवाई। सड़क मरम्मत पूरी होने तक यात्रियों से नहीं वसूला जाएगा टोल टैक्स। और नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण शुरू। अब समाचार विस्तार से। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। राज्यसभा ने इसे कल पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को ही पारित कर दिया था।
1: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस साल जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2019 से

0: सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 जजों की स्वीकृत संख्या पूरी होने के बावजूद केवल 65,000 से अधिक मामलों का ही निपटारा हो सका, जबकि पिछले साल अदालत में 75,000 से अधिक नए मामले आए। हर साल नए मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों से अधिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़ने से मामलों का निपटारा तेज होगा और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 भी कल पारित हो गया।
2: इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले विधानसभा में कल विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच अनुपूरक बजट पास कर दिया गया। कल ही सदन में संभल हिंसा की रिपोर्ट भी पटल पर रखी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जताते हुए उसे लोकतंत्र विरोधी करार दिया। मुख्यमंत्री ने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार ने 59,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया।
3: मानसून सत्र में हम लोग 59,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक बजट को भी लेकर के आए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के नकारात्मक रवैये के कारण युवाओं के मुद्दे पर, अन्नदाता किसानों के मुद्दे पर, महिलाओं के स्वावलंबन के मुद्दे पर या गरीबों के लिए बनने वाली वेलफेयर की अन्य स्कीमों के मुद्दे पर सदन में समाजवादी पार्टी ने कोई चर्चा नहीं होने दी। इनका ये आचरण असंवैधानिक भी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है और गरीब विरोधी भी है।
1: उधर विधान परिषद में कल उत्तर प्रदेश विनियोग 2026-27 का अनुपूरक विधेयक 2026, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2026 और उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 सहित कुल 12 विधेयक पारित किए गए। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने प्रयागराज चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है।
4: करीब 23,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस विकास क्षेत्र में 6 जिले शामिल होंगे। प्रयागराज को जोनल केंद्र बनाया जाएगा, जबकि चित्रकूट को धार्मिक पर्यटन और बुंदेलखंड को प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया जाएगा। कौसाम्बी को बौद्ध पर्यटन केंद्र, फतेहपुर को कृषि व्यापारिक केंद्र तथा बांदा को बुंदेलखंड का आर्थिक केंद्र बनाया जाएगा। वहीं हमीरपुर और महोबा को खनिज एवं औद्योगिक विकास केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। समाचार कक्ष से अरुण।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के मामले में देखरेख करने वाली कंपनी और संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। कल लखनऊ में एक प्रेस वार्ता में NHAI के क्षेत्राधिकारी गौतम विशाल ने बताया कि परियोजना के निर्माण और निगरानी में पाई गई कमियों के लिए जिम्मेदार सभी पक्षों की जवाबदेही तय की जा रही है।
5: हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके हम लोगों ने एक्शन भी लिया है, जैसे कि कंसेसनाय का प्रोजेक्ट मैनेजर जो वहाँ थे DGM हाईवेज को इमीडिएट सस्पेंड भी किए हैं और उसको 2 साल के लिए डीवार भी किया गया है। ये ऑलरेडी एक्शन 30 तारीख को ही ले लिया गया है। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट इंजीनियर हैं उनके टीम लीडर जो प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में सुपरविजन में थे और अभी भी थे और रेसिडेंट इंजीनियर उनको भी सस्पेंड कर दिया गया और 2 साल तक के लिए उनको भी डीवार किया गया।
1: NHAI के क्षेत्राधिकारी ने बताया कि सुधार कार्य पूरा होने तक यात्रियों से कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। मेडिकल परामर्श समिति ने नीट UG काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण कल से शुरू कर दिया। पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान 12 अगस्त तक होगा। शुल्क भुगतान 12 अगस्त को शाम 6 बजे तक किया जा सकता है।
6: अभ्यर्थी 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं।

0: अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को एमसीसी पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है।
2: राज्यपाल ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपनी शिक्षा, प्रतिभा और कौशल का उपयोग समाज और राष्ट्र के हित में करें। तकनीकी विश्वविद्यालयों में बेहतर आधारभूत सुविधाओं के विकास पर जोर देते हुए राज्यपाल ने निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी तकनीकी विश्वविद्यालय के भवनों को एकरूपता के साथ डिजाइन किया जाए, साथ ही प्रत्येक संस्थान में 5 सदस्यीय समिति गठित की जाए जिसमें विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाए। यह समिति समय समय पर उपलब्ध संसाधनों, आवश्यक सुविधाओं और भविष्य की जरूरतों की समीक्षा करेगी। जीएन चौबे, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
1: राज्यपाल आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का कल शाम नई दिल्ली के एक अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार थे। बसपा विधायक के निधन पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने शोक जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने पारित किया न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026। अनुपूरक बजट पास करने के साथ प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के रवैये पर जताई नाराजगी। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के मामले में एनएचएआई ने जिम्मेदारों पर की कार्रवाई। सड़क मरम्मत पूरी होने तक यात्रियों से नहीं वसूला जाएगा टोल टैक्स। और नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
4: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान। सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद। अंदर से अच्छा लगेगा भले ही लगे थोड़ा वक्त। यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना करें उनका उल्लंघन। यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक। जब भी आप चलाएं कोई वाहन, ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।
5: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
6: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: माधुरी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, वंदे ब्रज वसुंधराम। ब्रज की आप पावन धरा को नमन करें, वंदन करें। ब्रज सम और को नहीं धाम, या ब्रज में परमेश्वर के हु सुधरे सुंदर नाम। कृष्ण नाम ये सुनियो गर्ग ते, कान कान कही बोले, बाल केल रस मगन भय सब, आनंद सिंधु कलोले। यशोदा नंदन दामोदर, नवनीत प्रिय तथि चोर, चीर चोर चित चोर, चिकनिया चातुर नवल किशोर। राधा चंद चकोर सांवरो, कोकुल चंद्र तददानी, श्री वृंदावन चंद्र चतुर चित प्रेम रूप अभिमानी। राधा रमन सुराधा वल्लभ, राधा कांत रसाल, पल्लव सुत गोपी जन वल्लभ, कृपाल प्रतिपाल। कावत निगम शेष सारद अरु, सनकादिक गुण गाथा, नागरी दास रसिक धन एई, चासो मन अटकाता। भगवान श्याम सुंदर के अनेक नाम है, उनकी कृपा ब्रजमंडल में खूब खूब बरसे और अपने इष्ट के लिए तो वो खूब आनंदित हो। आज आपको सुनना में ब्रज वार्ता। ब्रज के शिव देवालय में श्रावण मास की धूम। वार्ताकार है आचार्य अशोक कुमार जोशी।
1: ध्याये नित्यं महेशं व्रजतिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्न

जय। भगवान शिव अकारण करुणा वरलाल है, अर्थात भगवान शिव की कृपा कब बरस जाए इसका कोई निश्चित प्रमाण ना है। उनके नाम में ही भाव है कल्याण, शिव का मतलब कल्याण। शिव भगवान कल्याण के ही प्रतीक हैं। शिव साकार हूं हैं, शिव निराकार हूं हैं, शिव अनादि हैं, शिव अज है। भगवान शंकर को हम ब्रज में डमरूवारे, मतवारे, भोले भंडारी आदि अनेकान नामंते पुकारे हैं। श्रावण मास आते ही ब्रज में चारों तरफ भगवान शिव की जय जयकार होवे लगे है। श्रावण मास की त्रयोदशी शिवरात्रि

कहलावे है और जाको बड़ो विशेष उत्सव ब्रज में मनायो जाए। जगह जगह शिवालय की सज्जा सजावट होवे है, लोग नाना प्रकार के भोग पदार्थन को लगाए करके और रात्रि भर शिव जी को जागरण करें। ब्रज मंडल में भगवान शिव के अनेकान प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर हैं, जहाँ में कछून को उल्लेख या प्रकार है, भूतेश्वर महादेव, गर्तेश्वर महादेव, पिपलेश्वर महादेव, गोकर्णेश्वर महादेव, रंगेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव, चकलेश्वर महादेव, चिंतेश्वर महादेव और नंदीश्वर महादेव आदि। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में द्वादश ज्योतिर्लिंगन की प्रतिष्ठा अर्थात 12 लिंग जो हैं वो विशेष प्रतिष्ठित माने गए हैं।

अर्थात 12 लिंग जो हैं वो विशेष प्रतिष्ठित माने गए हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ हैं, श्री मल्लिकार्जुन श्रीशैल में हैं, महाकाल उज्जैन नगरी में हैं, ममलेश्वर ओंकारेश्वर में हैं, वैद्यनाथ भगवान शिव का मंदिर परली में हैं, भीमा शंकर डाकनी में हैं, रामेश्वरम सेतु मंदिर रामेश्वरम में हैं, द्वारका में नागेश्वर हैं, बनारस में विश्वेश्वर हैं, नासिक में त्र्यंबकेश्वर हैं, हिमालय में केदारनाथ हैं और शिवालय में घुश्मेश्वर हैं। यह प्रकार ये संपूर्ण भूमंडल भगवान शिव की अपूर्व महिमा और उनके दिव्य कथान से परिपूर्ण है। ब्रज में तो भगवान शिव की कई घटनाएं बड़ी अद्भुत हुई हैं। गर्ग संहिता में उल्लेख आवे है कि जब आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र को ब्रज में प्राकट्य भयो तो भोलेनाथ कैलाश पर्वत ते चल के उनके दर्शन को ब्रज भूमि में आए और मैया यशोदासों बाल कृष्ण के दर्शन की बड़ी मनोहार करी। मैया बाबा को रूप देखकर डरप गई कि जाके सांप बीछू कातर लटक रहे हैं, ऐसे भयंकर आकृति को देख करके मेरो छोटो सो गोपाल अवश्य ही डरप जावे। वो मैया ने बाबा से मना कर दी कि बाबा मैं तुझे दर्शन ना कराऊंगी। भोलेनाथ निराश है वे को लगे और भगवान को प्रकार लगाए, प्रभु मैं कैलाश से चल करके आपके दर्शन को यहाँ आयो और मैया बाधा बन रही है, कृपा करो जाते मुझे आपके शीघ्र दर्शन है जाए। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी हते, उनने बाबा की पुकार सुनी और बहुत जोर से रोना शुरू कर दियो। मैया ने बहुत छुपाया और बहुत तरह से लाड़ लड़ाए, लेकिन मैया हार गई और लाला चुपी ना हो गए, रोवे रोवे लगे। घर में बड़े बूढ़े ने कही कि अरे दशोदा, तेरे लाला को नजर लगी है, जाकर साधु ते झाड़ो लगवाओ, कोई गंडा बंधवाओ, कोई ताबीज लगवाओ, तब जे लाला चुप हो। ढूंढ में गए तो बाहर भोले बाबा तो समाधि लगाए बैठे थे। उनते प्रार्थना करी, बाबा हमारो बालक बहुत रो रो है, आप कृपा करके कोई उपाय करो। बाबा ने कही, अरे हम तो तैयारी बैठे हैं, आप चलो। अंदर गए और बाबा ने जो दृष्टि डाली है, जो लालन पे हाथ फिराया और जो दर्शन करे हैं, तुरंत जो है भगवान बाल कृष्ण स्वस्थ है गए, शांत है गए। तो यह व्यास थे हमारे भोलेनाथ को लाला के प्रथम दर्शन ब्रज में भये हैं और तभी से बाबा भोले ब्रज से बहुत प्रेम करे हैं। दूसरी घटना रासलीला की है। भोलेनाथ की इच्छा भई के पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम श्याम सुंदर आनंद कंद श्री कृष्ण रासलीला को रास वृंदावन में रचाए रहे यमुना जी के तट पर, अवश्य ही जा अद्भुत लीला को दर्शन करने को उनके मन में प्रेरणा भई और महाराज श्री भोलेनाथ नंदी सर पर बैठ करके और कैलाश से वृंदावन को पधारे हैं। वृंदावन धाम में पहुंच करके श्री यमुना जी के तट पर, जहां विशाल रास मंडल में भगवान श्री कृष्ण रास लीला कर रहे थे, वहां जैसे प्रवेश करने के लिए चले हैं, तुरंत ब्रजगोपिन ने उनको रोक दिया। बोले, बाबा यहां पर जो है स्त्री के अलावा काउ पुरुष को प्रवेश ना है, क्योंकि केवल एक ही पुरुष श्री कृष्ण है यहाँ और सब जो भी आए हैं स्त्री भाव से आई हैं, समर्पण के भाव से आई हैं, और अगर बाबा तू वास्तव में रासलीला को दर्शन ही करवो चाहे तो स्त्री को रूप धारण कर ले, क्योंकि पुरुषन कुंजा लीला में प्रवेश ना है। ऐसे जब गोपिन ने बाबा से कही और बाबा ने देखी कि अब कोई उपाय ना है, तो बाबा ने फिर स्त्री रूप धारण करके और भगवान श्री कृष्ण की रासलीला में प्रवेश प्राप्त किया है। वो गोपीश्वर रूप का दर्शन आज उसी धाम वृंदावन में हमारे सब भक्तन को प्राप्त हो। कहवे को आशय यह है कि भोलेनाथ को ब्रज व ब्रज बिहारी बहुत ही भावे हैं, यही कारण थे ब्रजवासी भोलेनाथ को विशेष प्रेम करे हैं, वे उनकी पूजा अर्चना करवे में बड़ी रुचि रखे हैं। शिवार्चन करवे ते ही जीव की समग्र बुराइन को नाश है जावे है और परम कल्याण में प्रभु को वाय दर्शन प्राप्त हुए है। भगवान शंकर तो भगवान द्वार हैं हमारे प्रभु को मिलावे वाले हैं। भगवान शिव पौराणिक देवता ही ना हैं, वास्तव में वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक हैं और संपूर्ण जगत को संहार करवे की क्षमता हु रखे हैं। वो देवन के देव महादेव कहलावे हैं। शिव के दो स्वरूपन को बखान हमें शास्त्रन में मिले है, रुद्र और शिव। रुद्र को मतलब होवे रोद यति दुष्टान, जो दुष्टन को

0: रुलावे अर्थात उनको विनाश करे वो रुद्र है, और शिव को मतलब है कल्याण, जो जगत को कल्याण करे है, सब जीवन को आनंद दे है। तो वे संसार को विस्पान, संसार को विस्पान करके लोक कल्याण के लिए भगवान शिव सदा संलग्न रहे। शिव अन्य देवताओं की अपेक्षा बहुत शीघ्र प्रसन्न होमे हैं। केवल जल की अंजलि भर या बेल पत्र चढ़ाए वे मात्र से वे रीत जामे हैं, और प्रसन्न है करके जो इच्छा हो वो वरदान प्रदान कर देवे हैं। जायते लोक में उन्हें अवडर धानी आशुतोष कहो जाए है। बड़े बड़े विद्वान ने, कवि ने शिव जी की महिमा में बड़े बड़े सुंदर काव्य, स्त्रोत्र और इस प्रकार गीतन की रचना करी है, जिन्हें पढ़वे थे हमें लगे कि वास्तव में भगवान शिव की महिमा कितनी अद्भुत है, विशाल है, महान है। श्रावण मास में ब्रज के शिवालयन में पंचामृत दूध दही घी शहद बूरो आदि से भगवान शिव को अभिषेक कराया जाए, तत्पश्चात उनको जो है रोली अक्षत पुष्प चंदन फूल माला वस्त्र मिठाई फल इत्यादि से उनकी अर्चना करके और फिर अंत में आरती करके जय जयकार करते हुए और उनकी विशेष स्तुति करते हुए जीव अपने को धन्य माने है। और भगवान शिव जो हमारे समस्त संकट, हमारे समस्त पापन को नष्ट करके और अंत में हमें परम पिता परमात्मा की प्राप्ति कराए देवे हैं, ऐसे भगवान शिव की समस्त ब्रज में जय जयकार या श्रावण मास में है रही है। बोले शंकर भगवान की जय।
1: अपने आनंद लियो या ब्रज वार्ता को ब्रज के शिव देवालय में श्रावण मास की धूम। वार्ताकार है आचार्य अशोक कुमार जोशी। शिव मंदिर में कोई रुद्री को पाठ करे, कोई सौमवेद को गायन करे, कोई ऋग्वेद को गायन करे, कोई पदावली गायन करे, कोई कन्हैया की लीला को सुनावे और आपको सुनवावे ये सुंदर सो ब्रज लोकगीत।

संबलेश्वर में आपने सुनियो ये लोकगीत, झूलन आज पधारो परसाने बारी। भैया जब राधा रानी श्याम सुंदर झूला पधारे तो ब्रजमंडल में, समूचे ब्रजमंडल में कशु आनंद और बढ़ जाए। यमुना मुलन पुलन हिनोरो रूपियो कन्हाई है, झूलन को ब्रजवाल सवय मिल आई है। ललिता चंद्रावली और राधा गोरी है, साजे नवसत अंग प्रेम रंग बोरी है। श्री यमुना पुनन हिंडोरो रूपियो कन्हाई है, झूला झूले कुंजन में श्यामा श्याम, चुनामे गामे ब्रज वनिता।

झूला झूले कुंजन में श्यामा श्याम झूला वे गावे ब्रज वनिता। श्री बाबू कौशिक के स्वर में या गाए ब्रज लोकगीत के संग ही आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम अब संपन्न हो है। सबन को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है जिसका उपयोग देश को वैश्विक स्तर पर सामग्री सृजन के केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सरेंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं।
6: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया

0: से शेयर करें।
1: आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे, और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
2: नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा हुई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव डॉ टीवी सोमनाथन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कल इसकी मंजूरी दी। डॉ सोमनाथन का कार्यकाल इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रहा था। समिति ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल भी एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
3: इंडिया इज प्राउड टू बी वन ऑफ अफ्रीकास।
4: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमरीकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का रहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। संसद में आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा निर्धारित है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। ये विनियोजन उस वर्ष सेवाओं के निर्धारित से अधिक राशि के भुगतान के लिए किया जा रहा है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई थी जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपये की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। राज्य में विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नेता देवेंद्रनाथ महतो के साथ 5 प्रदर्शनकारी शामिल हो गए हैं। इनमें 2 महिलाएं भी हैं। ब्लड शुगर और रक्तचाप कम हो जाने के कारण श्री महतो के स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर राजधानी रांची में 25 जुलाई से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारी विद्यार्थी 14वें झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी।

0: ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद हुर्मुज जलडमरू मध्य से होकर 60 व्यापारिक जहाज सुरक्षित निकाल आए हैं। संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खाड़ी क्षेत्र से 3972 भारतीय नाविकों को स्वदेश भेजा गया है और 2400 घंटे काम कर रही आपदा प्रबंधन प्रणाली के पास हजारों फोन और ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए यह दुनिया का एक प्रमुख जलमार्ग है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम मिश्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजेता हेरात और विदेश सचिव अरुणी रणराजा से मुलाकात की। ईरान ने कहा है कि हुर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। एक रिपोर्ट।
1: इस संभावित समझौते से हुर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। ईरान ने कहा कि वह हुर्मुज जलडमरू मध्य पर एक हद तक नियंत्रण चाहता है और इस मार्ग से आवाजाही वैसी नहीं रहेगी जैसी युद्ध से पहले थी। ईरान हुर्मुज जलडमरू मध्य के उत्तरी हिस्से को जबकि ओमान दक्षिणी हिस्से को नियंत्रण करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ईरान युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हुर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण चाहता है। ईरान ने आगाह किया कि अमेरिका के किसी और हमले की स्थिति में वह खाड़ी देशों को निशाना बनाएगा। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: जापान के हिरोशिमा में आज परमाणु बम गिराए जाने की बरसी है। सन 1945 में हुई इस घटना में 140,000 लोग मारे गए थे। आज सुबह घटनास्थल पर पीस मेमोरियल पार्क में मौन रखा गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने परमाणु हथियारों को खत्म किए जाने की अपील की। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों को घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने को कहा है। उत्तराखंड आपदा विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है।
2: उत्तराखंड के लिए अभी जो अलर्ट आया है वो देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के शेष जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। तीन जनपद जहां पे ऑरेंज अलर्ट है वहां पर ज्यादा बरसात की संभावना है और बाकी जनपदों में नॉर्मल बरसात होगी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं विभिन्न माध्यमों से और SMS के माध्यम से हम लोगों को अलर्ट करते हैं।
0: राज्य में मौसम के बारे में और जानकारी दे रही है हमारे संवाददाता।
3: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभावित आपदा की किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य की सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों और नदी नालों की निगरानी रखने पर भी जोर दिया है। उन्होंने आपातकालीन परिचालन केंद्रों को 2400 घंटे सक्रिय रखने और प्रत्येक घटने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में जनहानि को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: मौसम विभाग ने आज झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार आज दोपहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रीय हित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। खेलों में जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में उड़ीसा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज सेमीफाइनल में उड़ीसा का मुकाबला पंजाब से जबकि झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा।

0: के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद फरहत।
2: संसद में जारी गतिरोध समाप्त करने के प्रयास के तहत संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है संसद गतिरोध, राहुल गांधी से मिले रिजिजू, परिसीमन और FCRA पर राहत तलाशने की कोशिश, जकरबर्ग ने भारत से मांगी माफी, फेसबुक से पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर आखिर झुके मेटा प्रमुख, अमर उजाला सहित कई अखबारों की सुर्खी है। पत्र लिखता है मेटा ने माना, खास तरह का कंटेंट बढ़ाने के लिए मिली थी मोटी रकम। दैनिक जागरण ने अपने आर्थिक पन्ने पर RBI गवर्नर के शब्द प्रकाशित किए हैं, लगातार चौथी बार रेपो रेट 5.25% पर स्थिर। गवर्नर ने कहा पश्चिम एशिया में संघर्ष जारी रहा तो ईंधन और खाने पीने की चीजें हो सकती हैं महंगी। नीट होगी फुल प्रूफ, JEE तर्ज पर परीक्षा की तैयारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया हलफनामा। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर युवाओं के नशे में गिरफ्त होने का लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है ताकि नशे की गिरफ्त में ना आए युवा। पत्र लिखता है भारत में करीब 75% युवा 21 साल की उम्र तक किसी न किसी नशे का शिकार हो चुके हैं। परिवार और शिक्षक संजीदगी से संवाद करें तो उन्हें नशे से बचाया जा सकता है। ईरान और ओमान होर्मुज खोलने पर हुए सहमत, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है ईरान को होर्मुज पर मिल सकता है कंट्रोल। दैनिक भास्कर ने कोटा में नोनेरा एब्रा डैम के बंद होने के बाद काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से चारों तरफ छाई हरियाली का चित्र प्रकाशित किया है, जिसमें पानी के ठहराव से नदी किनारे बसी कराइयों और हरी भरी वादियों का सौंदर्य चरम पर है।
0: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज इंडियाज एक्स्ट्रॉर्डिनरी पूल ऑफ क्रिएटिव टैलेंट कैन बी लीवरेज टू स्ट्रेंथन नेशंस पोजिशन एज ग्लोबल हब फॉर कॉन्टेंट क्रिएशन। Government extends 10 years of Cabinet Secretary T.V. Somnathan and Union Home Secretary Govind Mohan by 1 year. Students intensify their protest over irregularities in recruitment exams in Jharkhand. Uttarakhand government puts agencies on high alert following warning of heavy rain in the state. New Delhi urges Colombo to cooperate in early release of Indian fishermen detained by Sri Lankan authorities. And India safely moves 60 ships through Strait of Hormuz during Gulf crisis. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has underscored that India has a rich tradition of storytelling and an extraordinary pool of creative talent which can be leveraged to strengthen the nation's position as a global hub for content creation. In a social media post, Mr. Modi informed that he met the co-CEO of Netflix, Ted Sarandos, in New Delhi. The Prime Minister also noted that during the meeting, they discussed the immense potential of India's media and entertainment sector. Addressing a conference of content creators in New Delhi last year, Mr. Modi called upon them to share India's stories to the world.
1: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत, हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें, हम भारत की अपनी स्टोरीज सबको सुनाएं। लेट अस क्रिएट ऑन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही आपके देश, हम सबका देश भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया की यूनिवर्सिटीज के साथ, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं।

अनुराधा पौडवाल, मोहम्मद अजीज और साथियों को सुना अभी आपने। फिल्म का नाम था आई मिलन की रात। और आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण को। फिल्म का नाम है दिल तो पागल है।

0: लता मंगेशकर उदित नारायण के गाए फिल्म दिल तो पागल है के गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं काबिलो कार्यक्रम में आज का विषय है पावस और श्रावण मास। आलेख एवं वाचन रविंद्र पाल सिंह का है। सुनते हैं एक छोटे से व्यवसायिक अंतराल के पश्चात।
1: अब भरो सक्सेस की उड़ान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ मुंबई बेंगलुरु हैदराबाद लखनऊ की डायरेक्ट फ्लाइट्स दे कॉर्पोरेट और बिजनेस को कनेक्टिविटी की राइट चॉइस।
2: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वे ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: हॉलीडेज प्लान करना है पर छुट्टियां हैं कम। टेक डायरेक्ट फ्लाइट्स टू धर्मशाला देहरादून जम्मू अमृतसर एंड जयपुर फ्रॉम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी इजी एक्सेस और नो ट्रैफिक जैम्स दे आपके हॉलीडे को स्मूथ स्टार्ट।
2: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: मित्रों जैसा कि आप सभी जानते हैं पावस ऋतु का ये मौसम चल रहा है और साथ साथ सावन का महीना भी है तो आप सभी आज इस पावन ऋतु पर मेरी रचनाओं का आनंद लीजिए। और मैं आपको काव्य पाठ प्रारंभ करने से पहले माँ शारदे के चरणों में चंद पंक्तियाँ आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी आनंद लें। कि हंस वाहिनी सुज्ञान दायिनी सुहानी मात सदा पाती आप सम्मान मेरे देश में वेद कर धारणी माँ सस्वर गुंजारणी माँ ऋषियों ने ध्याया तेरा ध्यान मेरे देश में।

माला को पिरो के लाया, मातु फैले सदा सद ज्ञान मेरे देश में। और एक घनाक्षरी और माँ के चरणों में कि पावन धरा के सुविचार हो न जाए नष्ट, शिष्टता के मिले परिधान मेरे देश में, और सात्विक आहार और विमल विचार हो, शुद्धता का मिले खान पान मेरे देश में।

रसिकवाणी वंदना की माला को पिरो के लाया, मात फैले सदा सद ज्ञान मेरे देश में। और मित्रों, पावस ऋतु पर मैं एक गीत नायक नायिका के वर्णन में ब्रह गीत एक प्रस्तुत कर रहा हूँ। नायक अपनी बात को कहना चाहता है, एक गीत के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूँ।

आओ मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्रज में तो सावन की छटा भगवान कृष्ण के हिंडोले जगह जगह पर आपको दिखाई देंगे। मैं एक मल्हार आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ आज के समसामयिक परिवेश पर। उससे पहले चार पंक्तियाँ दे रहा हूँ।

और इस मल्हार के बाद में तो अब मैं आपके सामने पुनः एक बार पावस ऋतु के इस अवसर पर हमारे नायक और नायिका के विरह का वर्णन करते हुए आपके सामने कुछ गणाक्षरी रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि पावस के मावस की घोर अंधियारी रात, सूना घर देख मेरा हिया घबराता है। और मैं तो हूँ अकेली पिया परदेश जाके बसा,

रात लगे नैन नहीं, नींद को बुलाऊं दिल आंसू भर लाता है, कि नींद को बुलाऊं दिल आंसू भर लाता है। ये घनाक्षरी और देखें कि आने की सुनी है मैंने जब से ही सावन की, गाने को लगा है मन तब से मल्हार है, और रसिक अटारी पर खड़ी हो घटा को देखूं, झूम झूम कर मन करता पुकार है।

0: कि कोयल की कुकुमन हुकुसी उठाने लगी, कि कोयल की कुकुमन हुकुसी उठाने लगी, नेह बरसाने लगी मेह की फुहार है, और कैसे मिलूं साजन से सजनी ये सोच लगी, पिया के मिलन हेतु करे मनुहार है, कि कैसे मिलूं साजन से सजनी सोचने लगी, पिया के मिलन हेतु करे मन हार है। इसी प्रकार एक घराक्षरी और देखिए, के प्रीति करी पाहन ते ऐसी में दीवानी भई, के प्रीति करी पाहन ते ऐसी में दीवानी हुई, हृदय में जो घाव हुए किसको दिखाऊं मैं, और सोचा नहीं पहले मन मूरख की बात मानी, अब नित्य आंसुओं की सरिता बहाऊं मैं, कि ऐसा निर्मोही हुआ दिल को ही तोड़ दिया, कि ऐसा निर्मोही हुआ दिल को ही तोड़ दिया, निकाल के कलेजा अब किसको दिखाऊं मैं, और कैसे दुख दूर कहूं और किसको सुनाऊं सखी, बोया है बबूल तब आम कैसे खाऊं मैं, कि कैसे दुख कहूं और किसको सुनाऊं सखी, बोया है बबूल तब आम कैसे खाऊं मैं।
1: अभी आपने आनंद लिया काव्यलोक कार्यक्रम में। पावस और श्रावण मास विषय पर आलेख एवं वाचन था रविंद्र पाल सिंह रसिक का। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए इटावा और बुलंदशहर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं इटावा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित तिवारी का।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 जुलाई 2026 को इटावा के नुमाइश पंडाल में शाम 3 बजे पहुंचकर 604 करोड़ रुपए की 128 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उसके बाद जनसभा को संबोधित किया।
2: इटावा जनपद की 128 परियोजनाओं को, जिनकी लागत 604 करोड़ है, इसका उपहार भी मैं इटावा वासियों को प्रदान कर रहा हूँ। इसकी हृदय से बधाई देता हूँ।
1: इस मौके पर बड़ी संख्या में हजारों लोगों की भारी भीड़ ने मुख्यमंत्री की योजनाओं और विकास के बारे में सुना। इस मौके पर पुलिस का बड़ा सुरक्षा बल तैनात रहा। मुख्यमंत्री के साथ मंच पर सदर विधायक सरता भदौरिया, पूर्व सांसद रामशंकर कठेरिया, मंत्री बेबी रानी मौर्य और जिलाध्यक्ष सहित कार्यकारिणी के पदाधिकारी मौजूद रहे। इटावा के सेफई में स्थित उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय PMR दिवस पर अत्याधुनिक पुल्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन सुविधा का शुभारंभ किया गया। कुलपति डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि इस तकनीक से पुराने और जटिल दर्द से पीड़ित मरीजों को सुरक्षित और प्रभावी उपचार मिलेगा। उन्होंने जरूरतमंद मरीजों को ऑर्थोसिस भी वितरित किए और कहा पुनर्वास का उद्देश्य मरीजों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस मौके पर दिव्यांग बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें विजेताओं को स्टेशनरी देकर सम्मानित किया गया। प्रकाश डी, पुलिस महानिदेशक रेलवे उत्तर प्रदेश ने दिनांक 7 जुलाई 2026 पुलिस लाइन सभागार में संगोष्ठी कार्यक्रम में RPF, GRP और सिविल पुलिस के साथ सामंजस्य पर निर्देश दिए। साथ ही मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में रेल यात्रियों की सुरक्षा, रेल पटरियों की सुरक्षा, रेल नेटवर्क के प्रति शासन मुख्यमंत्री जी DGP महोदय गंभीर हैं। उसी सिलसिले में इटावा पुलिस लाइन में एक वृहद समीक्षा बैठक आयोजित की गई। GRP, RPF और स्थानीय पुलिस के बीच में एक विस्तृत चर्चा हुई। रेल यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा के प्रति गंभीर हैं। रेलवे से जुड़े अपराधियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, अपराध नियंत्रण में है। वृक्षारोपण महाभियान के अंतर्गत कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज के आवासीय परिसर में वृक्षारोपण करने मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे डॉक्टर JPS राठौर, सहकारिता विभाग के राज्य मंत्री ने पौधा लगाया। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण एक जन आंदोलन बन गया है। उत्तर प्रदेश पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। इटावा ने भी उपलब्धि हासिल की है। वन आवरण 12% हो चुका है। मुख्यमंत्री जी आज बीमारू राज्य को हटाकर विकसित राज्य बनाने का काम कर रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा तभी सभी का विकास होगा। इटावा जिलाधिकारी सुब्रांत कुमार शुक्ल अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में स्थानीय निकायों से संबंधित समीक्षा बैठक

0: आयोजित की गई। बैठक में नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, MRF सेंटर, सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था तथा स्वच्छता संबंधी कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद में MRF सेंटरों की प्रगति की समीक्षा की, अवगत कराया कि जनपद में 10 MRF सेंटर निर्मित हैं, जिनमें से 8 संचालित हैं और 2 अभी संचालित नहीं हैं। DM ने निर्देश दिए हैं कि जहां कूड़े का अधिक संग्रहण हो रहा है, वहां प्राथमिकता के आधार पर MRF सेंटर स्थापित किए जाएं। उन्होंने सभी MRF सेंटरों को शीघ्र पूर्ण क्षमता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग के उपनिदेशक सतीश कुमार ने बताया कि जनपद में वर्षा अब तक 145 mm होनी चाहिए थी, ऊपर से एलनीनो का प्रभाव पूरे देश में है। वर्षा कम होने की संभावना है और दिखाई भी पड़ रहा है। जुलाई में जो वर्षा होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। थोड़ा पानी गिरा है, उससे किसानों को फायदा है। बासमती चावल का बहुत बड़ा एरिया है, क्षेत्र में प्लांटिंग चल रही है। दूसरी ओर सुपर एलनीनो का जो प्रभाव है, उसके लिए सरकार और विभाग ने रणनीति बनाई है। किसानों के लिए दलहन तिलहन के एरिया को बढ़ाया जाए, उसकी बुवाई भी समय से संभव हो पाएगी। विभाग के द्वारा मिलेट्स का निःशुल्क वितरण कराया जा रहा है। कृषि विभाग के उपनिदेशक सतीश कुमार ने बताया कि
1: जो विभाग और सरकार ने रणनीति बनाई है किसानों को दलहन तिलहन मिलेट्स एरिया को बढ़ावा जाए, उसकी बुआई भी समय से इस वर्षा के कारण संभव हो पाएगी। विभाग द्वारा जो भी रणनीति बनाई गई है उसमें निःशुल्क मिनी किट वितरण है मिलेट्स का, वर्षा को देखते हुए लगभग 4500 पैकेट हम लोग ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से, लाटरी के माध्यम से दे रहे हैं। दलहन तिलहन में भी निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
0: संकर बाजरा और संकर मक्का भी 50% अनुदान पर बांट रहे हैं। अधिक से अधिक किसान कम वर्षा को देखते हुए इन्हीं फसलों की बुवाई करें। जनपद में 1 अप्रैल 2026 से 31 जुलाई 2026 तक आपदा की विभिन्न घटनाओं में 21 लोगों की मृत्यु हुई। आपदा विभाग ने मृतकों के परिजनों को 84 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि वितरित की है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी अवनीश दुबे ने बताया कि सबसे अधिक 14 लोगों की मौत नदी और तालाबों में डूबने से हुई। इनके परिजनों को 56 लाख रुपए की राहत सहायता दी गई। इसके अलावा आंधी तूफान में 3 लोग, सर्पदंश से 2 लोग और आकाशीय विद्युत गिरने से 2 लोगों की मृत्यु हुई। इन सभी मामलों में नियमानुसार मुआवजा राशि पीड़ित परिवारों को उपलब्ध कराई गई है। बाढ़ आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी अवनी ने कहा कि बाढ़ से बचाव के लिए पहले से ही कार्य योजना बनाकर काम किया जा रहा है। वर्तमान में सदर तहसील के बड़पुरा क्षेत्र में 13 स्थानों पर बाढ़ चौकियां और बाढ़ राहत शिविर तैयार किए गए हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी अवनीश दुबे ने बताया,
2: बाढ़ की तैयारियां हम पूर्व से ही कर रहे थे। वर्तमान समय में हमारे पास तहसील सदर में 13 लोकेशंस पर हमारी बाढ़ चौकी और बाढ़ राहत शिविर तैयार है। तहसील चकरनगर में भी जो गाँव प्रभावित होते हैं उन पर सेक्टर के माध्यम से हमने जो निर्धारित हमारे जो ऐसे स्पॉट रहते जो ऊंचे स्थानों पर है, वहाँ 14 लोकेशंस पर बाढ़ राहत चौकी स्थापित की गई है।
0: किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कलेक्टर में स्थित कंट्रोल रूम में 24 घंटे कर्मचारी ड्यूटी लगाई गई है। कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर 1077 एक्टिव कर दिया गया है। जैसे ही कोई सूचना मिलती है उस पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है।
3: इटावा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बुलंदशहर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्रीपाल सिंह का।
4: बीते दिनों बुलंदशहर में 574 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 18 जुलाई को बुलंदशहर दौरे के दौरान शिकारपुर स्थित रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में छात्रों, अभिभावकों और प्रबुद्ध जनों से संवाद किया। इसके बाद वह बुलंदशहर पहुँचे, जहाँ उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने बुलंदशहर और सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्रों की 574 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 57 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 30 परियोजनाओं का लोकार्पण और 27 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लैपटॉप, चेक, चाबी, थर्मल प्रिंटर, आयुष्मान कार्ड, छात्रवृत्ति, सब्सिडी, टूल किट और प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की अनुमति मिल चुकी है, जिससे बुलंदशहर को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों के मुआवजे में वृद्धि की गई है, जिससे क्षेत्र के किसान और अधिक समृद्ध होंगे तथा औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि जेवर में केवल एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि इंटरनेशनल फिल्म सिटी, आईटी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक विकास का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। एयर कार्गो, डोमेस्टिक इंटरनेशनल कनेक्टिविटी का लाभ भी इस क्षेत्र को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद बुलंदशहर की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है तथा बुलंदशहर के लिए रिंग रोड भी स्वीकृत हो चुकी है। बुलंदशहर जिले के शिकारपुर तहसील में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शिरकत की। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भाजपा के बूथ अध्यक्षों को 2027 के चुनाव को लेकर जागरूक किया। वहीं

0: राम मंदिर में हुई कथित चोरी के मामले में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी बोले, विपक्ष कभी नहीं चाहता था राम मंदिर बने।
1: सनातन के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति कैसे लोगों के मन में विश्वास समाप्त, ये विपक्ष का एजेंडा। उसने हमेशा राम मंदिर ना बने इसका प्रयास किया।
0: बुलंदशहर जिले में कांवड़ यात्रा को सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए और कांवड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए की जा रही तैयारियों का आयुक्त मेरठ मंडल भानु चंद गोस्वामी, डीआईजी मेरठ रेंज कलानिधि नैथानी ने निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी कुमार हर्ष और SSP दिनेश कुमार सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण करते हुए जायजा भी लिया गया। 30 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस अवसर पर कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर DM ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संबंधित विभागों के अधिकारियों की ब्रीफिंग बैठक की। जिले के अनुपशहर में स्थित LDAV इंटर कॉलेज में जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कांवड़ यात्रा को सम्पन्न कराए जाने के लिए पूरे जनपद को जोनल एवं सेक्टर में विभाजित करते हुए अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बुलंदशहर जिले में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बीते दिनों SSP ने 59 पुलिस बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। ये सभी टीमें 59 सेक्टरों में कांवड़ मार्गों का लगातार भ्रमण करेंगी। कांवड़ियों की सहायता के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जनपद में 200 से अधिक खाद्य शिविर लगेंगे। यातायात व्यवस्था के लिए जनपद को 5 सुपर जोन, 19 जोन और 59 सेक्टर में बांटा गया है। हर सेक्टर में एडिशनल SP व CO रैंक के अधिकारी, इंस्पेक्टर और संबंधित विभागों के अधिकारी रहेंगे। SSP ने बताया कि
2: जनपद के विभिन्न 59 सेक्टर्स में जाकर के ये अपने अपने लोकेशंस पे लगातार मौजूद रहेंगे और वहाँ से गुजरने वाले कांवड़ियों को का मार्गदर्शन भी करेंगे, सहयोग भी करेंगे और वहाँ पे अगर किसी आकस्मिकता होती है तो वहाँ पुलिस संबंधी जो भी आवश्यकता कार्रवाई है उसको भी करेंगे। और इसी क्रम में जो रोड साइड हमारा जो महत्वपूर्ण कांवड़ मार्ग है उस पे कांवड़ समितियों का गठन हुआ।
0: कांवड़ मार्गों पर 5,000 से अधिक CCTV कैमरों से निगरानी होगी। DM, SSP, ASP समेत वरिष्ठ अधिकारियों के मोबाइल पर एक्सेस रहेगा। जनपद के 8 प्रमुख गंगा घाटों पर बैरिकेटिंग पूरी हो चुकी है, जिनमें बिजली, गोताखोर, नाव और अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था भी वहां की गई है। 2,500 से अधिक पुलिसकर्मी और PAC की कई कंपनियां तैनात रहेंगी। PAC के गोताखोर भी मौजूद रहेंगे। इस बार गंगा एक्सप्रेसवे का भी उपयोग ट्रैफिक डायवर्जन से यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से रहने वाली है।
3: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आबो हवा।
5: आधुनिक जीवन शैली में ज्यादातर दिनचर्या का संबंध बाहर से ही रहता है। यातायात के साधन जीवन को सुगम एवं सुविधाजनक तो बनाते ही हैं, साथ में संपन्नता का परिचायक भी बन गया है। हम ये सारी बातों के साथ इस विषय पर भी विचार करेंगे कि यातायात साधनों का आवागमन प्रबंधन कैसा होना चाहिए ताकि स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन हो। यातायात प्रदूषण पर व्यंग करते हुए किसी के द्वारा कहा गया है कि आज हम पेट्रोल खा रहे हैं। यातायात वाहनों का धुआं वायु को प्रदूषित करता है एवं सही वायु हमारे श्वास क्रिया में जाती है। इसी कारण यातायात के प्रबंधन पर असंतोष पैदा होने लगा है। यातायात साधनों के द्वारा पर्यावरण प्रभावित होने का कारण अकुशल यातायात प्रबंधन भी है एवं ये किसी हद तक पूर्णतया जिम्मेदार है। यदि यातायात प्रबंधन समुचित होगा तो पर्यावरण प्रदूषण समस्या को कम किया जा सकता है। वातावरण से हम वायु ग्रहण करते हैं, वही ताजा शुद्ध वायु मनुष्य के लिए लाभदायक है एवं यही प्राणवायु यातायात वाहन से उत्सर्जित गैसों के द्वारा प्रदूषित हो जाती है, तो यही वायु न केवल स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है अपितु मानव आयु को भी कम करती है। वायु प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण होते हैं, लेकिन जो आज के समय में सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो है यातायात साधनों के द्वारा पर्यावरण को दूषित करना। इस समस्या का बढ़ना ये बताता है कि यातायात प्रबंधन की जनहित में समुचित व्यवस्था नहीं है। लोगों का अशिक्षित होना, यातायात नियमों एवं पर्यावरण के प्रति सजग एवं जागरूकता की कमी होना, ज्यादातर दुर्घटना इसी कारण से होती है कि यातायात नियमों का उल्लंघन किया जाता है, जैसे गलत साइड जाना, ओवरटेक करना, तेज गति से वाहन चलाना, सिग्नल को अनदेखी करना,

0: उम्र में शौकिया वाहन चलाना, ओवरलोड होना, मोबाइल का चलते वाहन में उपयोग करना आदि प्रमुख कारण है। लेकिन ये सब घटनाएं इसलिए घट जाती है क्योंकि हमारे यातायात प्रबंधन निरीक्षण नियंत्रण में कमी है। यातायात का उपयोग एवं यातायात प्रबंधन हमारे जीवन का दैनिक दिनचर्या का अंग है। अब तो इसे प्रबंधन द्वारा सख्त नियमों की पालना करवाकर ही जनजीवन को गंभीर परिणामों से बचाया जा सकता है। बड़े शहरों अब स्वच्छ वायु ऑक्सीजन के लिए शहर से दूर जाना पड़ता है। आज के आधुनिक युग में मनुष्य प्राकृतिक संपदा पानी को तो मूल्य अदा कर प्राप्त कर ही रहा है, लेकिन कुछ समय बाद खुले आसमान स्वच्छ पर्यावरण श्वास लेने के लिए वायु ऑक्सीजन को भी कीमत चुकाकर प्राप्त किया जा सकेगा। अतः पर्यावरण प्रदूषण को सख्त यातायात प्रबंधन द्वारा बचाया जाना आवश्यक हो गया है। वाहन पर्यावरण को किस प्रकार दूषित करते हैं तथा पर्यावरण को किस प्रकार बचाया जावे, क्योंकि ये वायु प्रदूषण अनेक दृष्टियों से जैविक तथा अजैविक जगत के लिए अत्यंत ही हानिकारक है। जैसे हम ग्लोबल इंडिया वाइब्रेंट इंडिया की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ज्यादा गति से हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है, तपेदिक की बीमारी पैदा करती है, सार साइंस गुर्दे का को क्षति पहुंचाती है जिससे पीलिया हो जाता है, हाइड्रोजन आंखों को अंधा कर देती है, क्लोरीन रक्त को गंदा कर त्वचा रोग फैलाती है, रेलगाड़ियों से निकलने वाला धुआं जकड़न थकान एवं उल्टी की बीमारी को बुलावा देता है। पर्यावरण की विषैली गैसों से अम्लीय वर्षा होती है जो वायु प्रदूषण के साथ जल प्रदूषण पैदा करती है जिससे जीव जगत का विनाश लगातार हो रहा है। ये यातायात के कुप्रबंधन का परिणाम है। पर्यावरण को बचाना होगा। कुछ उपाय यहाँ हम दे रहे हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं नियंत्रित हो, इसे तो वाहनों की नियमित जांच हो, तेल आयल से धुआं तथा गैस निष्कासित न हो, औद्योगिक इकाई गैस संयंत्रों का शहर से दूर स्थापित करें, कल कारखानों में चिमनियों की ऊंचाई बढ़ावें ताकि गैसों का प्रतिशत तक आते आते प्रभाव कम हो जावे, अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करें क्योंकि वनस्पति वायु शुद्धिकरण में हमेशा उपयोगी होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा, विषय था यातायात प्रबंधन और पर्यावरण, आलेख और वाचन था डॉक्टर ओपी सिंह का। आकाशवाणी का यह मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं विशेष बातचीत, ओबी आधारित संस्मरणात्मक बातचीत, और विशेषज्ञ हैं ब्रजलता चतुर्वेदी। आपसे बातचीत कर रही हैं रश्मि शर्मा। सुनते हैं एक छोटे से व्यावसायिक अंतराल के पश्चात।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
5: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कम्फर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Book your tickets now. Noida International Airport, जहां सपने भरे उड़ान।
6: श्रोताओ, आज हमारे साथ हैं ब्रजबाला चतुर्वेदी जी। ब्रजबाला चतुर्वेदी जी ब्रज की ही बिटिया रही और यहीं इनका विवाह हुआ, और ये एक ऐसे परिवार से संबंध रखती हैं जहां काव्य की अविरल धारा वर्षों से बहती चली आ रही है, और हम तो यूं कहेंगे कि ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी बहती चली आ रही है, और इसका इन्होंने खूब आनंद भी लिया है, चाहे इनके दादाजी हों, इनके पिताजी हों और या इनके पति ही क्यों ना हो, सभी का काव्य सृजन से अटूट रिश्ता रहा है। ब्रजवाला जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि आपने बताया अपने दादाजी के विषय में कि आपके दादाजी प्रकांड विद्वान थे और काफी साहित्य उनके द्वारा उसका सृजन किया गया, और काफी उनके ऐसे शिष्य भी रहे होंगे जिन्हें उनसे ज्ञान में जिनके वृद्धि हुई होगी। तो आपके दादाजी का नाम और क्या विशेष उनके जीवन की उपलब्धियां रही, सर्वप्रथम इस संदर्भ में जानना चाहूंगी।
7: उनकी शिष्य परंपरा तो बहुत लंबी थी, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी से लेके और पद्मश्री गोपाल प्रसाद व्यास तक उनकी शिष्य परंपरा थी। मेरे पिताजी भी उनके शिष्य थे, रामलला जी ये सब उनके ही शिष्य थे, और उपलब्धि तो कवियों की और क्या हो सकती होती है।

0: कवियों की यही उपलब्धि होती है कि जहाँ उनका सम्मान हो, उनको कई पुरस्कार भी मिले, गोल्ड मेडल भी उनके हैं जो मेरे पियर में सुरक्षित हैं और बहुत जगह सम्मानित हुए हैं। और कई उनके ग्रंथ भी थे जो प्रकाशित हुए, पर अब तो वो सब इधर उधर हो गए हैं, पर हाँ थीसिस है उसमें सब में उनका उल्लेख है। श्यामंगा भूषण हो गया और गोपी प्रेम पीयूष प्रवाह, ऐसे उनके स्नेह शतक, ऐसे उनके बहुत से ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने और उनके संस्मरण बहुत वो हैं। एक बार वो बनारस गए थे तो वहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का तो अवसान हो चुका था, पर उनकी वो काशी कवि समाज चलता था उनका, और बुधवारी सभा होती थी उनकी, तो मेरे दादाजी वहाँ गए तो उन्होंने कहा आइए चौबे जी। उनको बड़ा अपमान लगा, मैं चौबे जी बनकर थोड़ी आया हूँ तुम्हारे यहाँ, एक कवि के रूप में आया हूँ। तो वहाँ एक ऐसी व्यवस्था थी कि हर बुधवार को एक समस्या दी जाती थी और दूसरे बुधवार को उस समस्या पूर्ति पर छंद सुनाए जाते थे। तो उस दिन उन्होंने कहा आप आज की समस्या ले लीजिए, ऐसा करिए अगले बुधवार को सुनाइए। उन्होंने कहा मुझे तो आज की समस्या बता दीजिए। अरे कहीं नहीं, इतनी जल्दी आप कर नहीं पाएंगे, नहीं हम कर लेंगे। तो उन्होंने गातन मेरे गोराई न रहे हैं, तो उन्होंने उसी समय एक सवैया लिखा, मैं विश्वभान ब्रजेश की बाल, गोपाल तू ग्वाल न मौसम पे हैं, और दूर रहो नवनीत प्रिया, तुम्हारी छवि छाव छिनो पर जय हैं। तो फिर गोकुल के कुल की को गुजरी मोहे न उजरी कहे हैं, सावरे छन छुओगे जो मोहे, तो गातन मेरे गुराई न रहे हैं। वो सब बड़े चमत्कृत हो गए कि इतना सुंदर सुगठित छंद, और बड़ी प्रशंसा की उन्होंने। फिर मेरे दादाजी ने पूछा कब ये बताइए कि इसको सवैया क्यों बोलते हैं। वो सब सोचने लगे क्योंकि उन्होंने कहा कि आप बताइए कि इसलिए कि इसको सवाया पढ़ा जाता है। सर मैंने पढ़ा, उसके बाद में मैं वृषभानु ब्रजेश की बाल ये एक पत्ति और पढ़नी थी, तब वो सवैया होता है। तो बड़े वो चमत्कृत रह गए और उन्होंने बड़ा सम्मान किया उनका, और मेरे कवि के रूप में इन्होंने मुझे माना। और वैसे तो वो वहाँ कांकरोली में रहते थे, यहाँ दाऊ जी का मंदिर था, गया भी वहाँ के महाराज भी वो उनके मित्र थे बचपन में। उनके माताजी तो वो दो ढाई साल की थी जब भी गुजर गए थे, चार साल की उम्र में उनके पिताजी भी गुजर गए थे, चाचा जी ने पाला वो भी छोटी उम्र में गुजर गए। तो उस समय बड़ा भारी वो छोड़ के गए थे कर्ज, ये समझिए 150-200 साल पहले वो उनके सहपाठी थे, दयानंद सरस्वती के सहपाठी थे। उस समय के बताइए 900 रुपए कर्ज बहुत बड़ा था, तो वो बड़े छोटे थे, तो उन्होंने ये यहाँ के जो महाराष्ट्र थे दाऊ जी मंदिर के गोपाल लाल जी, और इनके भाई थे कांकरोली के बालकृष्ण लाल जी, उनके पास ही वो रहे क्योंकि वो परम विद्वान थे और कवियों का ये आदर सत्कार करते थे। तो इन्हीं लोगों की वजह से उनका कर्ज चुकता हुआ और काफी कुछ उनको बड़ा एक आश्रय प्राप्त हुआ। तो कवियों का तो यही है कि उस जमाने में आज ज्यादा अलग से बहुत कमा लेते हैं और बहुत नाम हो जाता है, उस जमाने का तो बिना आश्रय के आपको कहीं नहीं पूछ सकता कोई, अब स्वतंत्र तो कर ही नहीं पाती थी उस जमाने में। तो उस जमाने में उनको बड़ा राजस्व भी उनका प्राप्त हुआ और जगह जगह वो उनके जैसे वहाँ के मेवाड़ के राणा जी आए फतेह सिंह जी, तो वो शिकार करके आए थे, तो उन्होंने कहा कि उनके सम्मान में तुम एक छंद लिखो। वो ऐसे परंपरा थी, वो वीर आश्रम में बैठते थे राणा जी, और गुरु जी खाली उनके जो गोस्वामी जी थे वही गादी पर बैठते थे, बाकी सब लोग खड़े रहते थे। वो खड़े रहे मेरे दादाजी, तो उन्होंने कहा सुनाइए। तो उन्होंने एक छंद सुनाया, माँ था हमारी श्री जमुना जी, और पिता कहे गोवर्धन धारी, बाबा नंद जसोदा दादी, काका हल्दर अधिक प्रमादी, नाना सूरज मामा यमराज, जो हम कहे करे जो काज, द्वारकाधीश को शीश नमाऊ, बैठक पाऊ तो कभी सुनो, अगर मैं बैठने को तो हम कभी सुना
1: कभी सुना तभी तो बैठे तो भी तो आनंद आए हमें भी सुनाने में। खड़े खड़े क्या
0: राणा जी ने पूछा आपके यहाँ इनको जो कवि होते हैं उनको आप आसन देते हैं? उन्होंने कहा कि ये कवि हैं, शास्त्री हैं, और ये जमुना पुत्र हैं, हम इनको आसन देते हैं। तब फिर उन्होंने उनको आसन दिया और वो भी वीरासन में बैठ कर उन्होंने उनकी प्रशस्ति का कवित्व सुनाया। तो ऐसा भी होता था कि वो किसी के उसमें नहीं आते थे, अपने बड़े स्वाभिमानी भी बहुत थी। ऐसे ही मेरे पिताजी का, उनको बहुत छोटी से छोड़ के तो उनकी माँ गुजर गई, मेरी दादी चार साल के थे तो उनकी माँ गुजर गई। हाँ उनकी मेरी दादी ने देखा था तो उनके पति का कितना मान सम्मान होता है, वो कितने विद्वान, उस जमाने में महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी पर ये देखती थी कितना मान सम्मान होता है उनका जगह जगह। तो जब उनका आखिरी समय आया तो सबने कहा कि बेटे से मिलवाओ उनको, बेटा बुलाओ उनको, बेटे को दिखा दो। तो जब वो अपनी माँ के पास लाए गए तो उन्होंने एक ही बात कही मेरी दादी ने उनसे कि बेटा तू खूब पढ़ियो और खूब नाम करियो।

0: आपने बताई, आप कुछ पिताजी के संस्मरण और उनकी कुछ यादें।
1: पिताजी के संस्मरण, दादाजी तो मैंने सुना ही था कि दादाजी तो मेरे पिताजी को भी 17 साल की उम्र में छोड़ के चले गए थे। हमने क्या, मेरी माँ ने भी दर्शन नहीं किए थे उनके, क्योंकि मेरी माँ तीसरी शादी की थी। मेरे पिताजी की पहली शादी हुई 5 साल की उम्र में, दूसरी हुई 13 साल में, और तीसरी शादी हुई 27 साल की उम्र
0: जी।
1: तो मैं तीसरी शादी जो हुई थी उसकी बेटी हूँ। हमारे 4 भाई थे और हम 3 बहनें थी। तो 3 भाई पहले के हैं, पहली माँ के, और 1 भाई हमारा था और 3 हम बहनें थी। आज ये हो गया कि सारे गए, एकमात्र उनकी संतान में मैं बची हूँ। बहुत संघर्ष किया मेरे पिताजी ने, क्योंकि दादाजी गुजरे तब वो 17 साल के थे और कोई सहारा होता ही नहीं था उस जमाने में। पूरी पढ़ाई भी नहीं हो पाई थी 17 साल में, क्योंकि उन्होंने गांठ बांध ली थी कि मुझे पढ़ना है, नाम करना है। तो जो कुछ शिक्षा उन्होंने दी, बाकी फिर दूसरे गुरुओं से उन्होंने सीखा और पढ़ा। बनारस में पढ़ाई हुई, जाके बनारस में पढ़े
0: जी,
1: क्योंकि उनको ये था कि मेरी माँ ने जो कहा है वो मुझे पूरा करना है। आज मुझे लगा ब्रजभाषा का, ये समझिए, ब्रजभाषा कविता उनके नाम के बिना अधूरी रह जाती। आज इतना उनका वो है ब्रजभाषा कविता में, और उनकी पढ़ंत भी इतनी सुंदर थी। यहाँ का रेडियो स्टेशन शुरू हुआ ना, तब मैं यहीं थी और वो गए कि अब तो मैं जा रहा हूँ बेटा, आज यहाँ मथुरा में रेडियो स्टेशन शुरू है, अब दिल्ली ना जाना पड़ेगा, यहीं तक चले जाओ पर हम लोग। और दिल्ली में वो 46 से स्वतंत्रता के पहले से ब्रजबहादुरी में कविता पढ़ती दिल्ली जाते थे। तो एक बार वो गए दिल्ली, जब यहाँ मैं छोटी थी तो हम भी चली, मैं भी चली गई थी दिल्ली, रामलला जी साथ में थे, तो वो दोनों ही थे के शिष्य थे, वो लिए दूसरी पार खड़े थे और वो दोनों जने रेडियो स्टेशन से निकल के आ रहे थे। तो रामलला जी बड़े भोरे भारे अलमस्त आदमी, आ जा बेटा आ जा, ऐसे कही, और मैं तो दौड़ लगा दी मैंने रोड पे। और सामने से एक गाड़ी आ रही थी, वो बेचारा रास्ते में ब्रेक मारा, अरे किसका बच्चा है, मैं बहुत छोटी थी 4-5 साल की, और मेरे पिताजी दौड़ के आए, ये हमारा बच्चा, ऐसे छोड़ देते हैं रोड पे। और वो बहुत सीधे साधे थे रामलला जी। एक बार वो कवि सम्मेलन में ब्रॉडकास्ट था, रिकॉर्डिंग नहीं थी, तो दोनों ये रामलला जी और मेरे पिताजी दोनों ही गए, साथ में ही हो जाते थे दोनों, क्योंकि रामलला जी बहुत सीधे और बहुत भले आदमी थे और इतने ही ऊंचा सुनते थे। तो जब उनको दिल्ली जाना था ना, जाना होता, तो रात को आके हमारे यहाँ सो जाती और कहते बेटा तू ढोल बजावेगी तो मैं ना उठाऊंगा, मेरे ऊपर पानी डाल दीजिए मैं उठाऊंगा। बहुत भले आदमी, बहुत सीधे आदमी थे, बहुत मिलनसार, उनका साथ ही रहता था मेरे पिताजी का, रामलला जी का। उनकी ये तो मेरे पिताजी पर भी PhD हुई है MS यूनिवर्सिटी से, और मेरे दादाजी पर भी हुई है MS यूनिवर्सिटी से ही, बड़ौदा से। और एक कवि का जब सर्वश्रेष्ठ समय आता है 60 से बाद में आता है, तो वो ख्याति तो है उसकी जब शुरू से ही हो जाती है। यहाँ बहुत ख्याति थी उनकी, कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं होता था यहाँ पे मथुरा में स्वयं पिताजी को निमंत्रण न दिया जाए, चाहे कोई नेता आए, चाहे कोई कवि सम्मेलन हो, चाहे कोई ब्रजभाषा की गोष्ठी हो, उनके बिना वो संपन्न नहीं होती थी। जैसे यहाँ पे थे राधेश्याम द्विवेदी जी थे, उनके यहाँ कोई होती थी, वृंदावन लाल वर्मा थे, उनके यहाँ होती थी, तो वो हमेशा हर उस गोष्ठी में, हर उसमें वो बुलाए जाते थे, क्योंकि एक मथुरा का पर्याय थे, ये समझिए। कोई भी ऐसा नेता आता था तब भी उनको बुलाया जाता है। एक बार BD जत्ती आए, जो यहाँ के उपराष्ट्रपति थे भारत के, परम विद्वान थे संस्कृत के, किसी ने मेरे पिताजी का नाम बताया होगा, तो वो घाट पे आ गए, घाट पे रह रहे थे, और मेरे पिताजी ने तो फकड़ाना ड्रेस ले लिया था, तो वो तो पलंग का पाया टूट गया, तो उन्होंने 3.5 ईंट लगा दी, बिल्कुल फकड़ा वो रहते थे कि हमको कुछ नहीं चाहिए, जो कोई आएगा हमारा चेहरा देखा हमसे बात करेगा, हमारे खटिया थोड़ी देखेगा कोई, हमको हमसे बात करेगा, हमारा खाट या हमारी हमने क्या पहना है क्या उड़ा है थोड़ी देखेगा, हमारा चेहरा देखेगा, और हम सुंदर थे। तो वो आए और वो उतनी भीड़ पूरे उसमें, वो 1.5-3 के पास में बैठ के वो भी चले गए, और घंटों संस्कृत में उन्होंने वार्तालाप किया। कोई भी ऐसा आता कि जो विद्वान संस्कृत के घंटों संस्कृत में बात करते थे, क्योंकि संस्कृत के भी परम विद्वान थे मेरे पिताजी।
0: अच्छा,
1: संस्कृत के भी परम विद्वान थे। ऐसे ही एक बार वो विद्या निवास मिश्र जी आए हमारे सामने, अब उस समय तो ये मोबाइल होते नहीं थे, तो वो आए तो उन्होंने विद्या निवास मिश्र जी भी किसी का जहाँ सब जहाँ विद्वान मानते नहीं थे, किसी ज्यादा वो नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे। और मेरे पिताजी को मैंने देखा, वो खटिया पे ही बैठे थे 3.5 इंच की पे, वो आए और उन्होंने उनके पैरों में सिर रखा और साष्टांग दंडवत किया उन्होंने। इनके जैसा विद्वान कोई नहीं। परम एक एक

0: पुस्तक भी छपी है, उन्होंने भूमिका भी लिखी है इनकी पुस्तक की, तो मैं बहुत उनका बहुत प्रशंसा करूँ और उनका कुछ लिखूंगा। तो वो उनका एक्सीडेंट हो गया और वो गुजर गई, वो मौका नहीं आया तो उनके ऊपर कुछ वो लिखते। ऐसे ही बहुत से संस्मरण है उनके, तो मेरे पिताजी के तो
1: जी।
0: यहाँ शायद रामकृष्ण शास्त्री जी थे, वृंदावन में रह रहे थे, तो वो कुछ अपनी वो कृति लेके आए थे पिताजी के पास। मेरे पिताजी ने एक अभिनव गुप्त आनंद वर्धन की रस शास्त्र पे एक कविता, उनका जो रस शास्त्र का जो पुस्तक थी ना, उसका उन्होंने अनुवाद ब्रजभाषा छंद में किया था, छंद में उसने तो, और उसका भाषांतर भी किया था, उसका अनुवाद भी किया था। तो वो उन्होंने कुछ उनको सुनाया तो अरे आपका इतना महान, उनको 20 साल लगे थे मेरे पिताजी को ग्रंथ लिखने में। रस शास्त्र में कोई ऐसा वैसा ग्रंथ तो है नहीं, और अभिनव गुप्त आनंद का आपका इतना सुंदर ये ग्रंथ है, आप ऐसा करिए कि आप इसको, मैं उनको पत्र लिख देता हूँ, आप साइन करके शिक्षा मंत्रालय में भेज दीजिए। तो वहाँ उन्होंने एक पोस्ट कार्ड भेजा और स्वीकृत हो गया छापा लिख लिया। 60% का उन्होंने बोला, 60% में पुस्तक छप जाती थी, पर उन्होंने कहा कि मेरा ये मेरा जो इसका लहजा है ना, मेरा कथावाचक का है, तो उन्होंने अपने पुत्र माने डॉक्टर मानेलाल चतुर्वेदी को दे दिया, इसका तुम अपने सही भाषा में रूपांतर कर दो। और कई साल पढ़ा रहा पर हो नहीं पाया, और वो उनका स्वर्गवास भी होगा मेरे पिताजी का, उसके बाद में वो पुस्तक छप गई उनके बाद, और वो वैसे ही छपी, उन्होंने वो कर नहीं पाए उनका, जब वो परम विद्वान थे वो डॉक्टर मानेलाल चतुर्वेदी। और पर जो हो गया चलो
1: जी, जी,
0: जो
1: जी।
0: जो हो गया जो गया, अब तो कोई बचा ही नहीं है, न तो पिताजी रहे, न माँ, न कोई भाई, और एक भाभी बची है, बाकी सब पूरा सब बहन बहन सब चले गए, किसी के बारे में क्या कहना।
1: तो रेडियो से बहुत जुड़ाव रहा होगा जब यहाँ आकाशवाणी केंद्र मथुरा की स्थापना हुई।
0: हाँ।
1: तो अक्सर कर आना जाना रहता होगा।
0: हाँ, मेरे पिताजी का आना जाना होता था, मेरा बेटा छोटा था तो बहुत रोता था कि मैं भी चलूंगा, तो वो कहते कि मैं कहती अरे वहाँ का ये कविता पढ़ेंगे इसको देखें तो ये देखेंगे, तो दादा ने कहते अरे असलानगर खिंचा खिला ले गया, वो असलानगर देख लेगी, वो असलानगर खिला लेती थी उसको, वो अपना कविता पाठ कर लेते थे।
1: जैसा कि आज भी काव्य सम्मेलन जब होते हैं तो काफी उत्सुक रहते हैं लोग कवियों को सुनने के लिए, उस समय जब आपके पिताजी भी काव्य सृजन करते थे तो कुछ कवि सम्मेलन वगैरह में भी जाते थे, या उनका ग्रंथ में अपनी भाव अभिव्यक्ति उनकी रहती थी, किस तरीके का उनका
0: सम्मेलन? बहुत कवि सम्मेलन में जाते थे, जो ब्रज क्षेत्र का जितना भी क्षेत्र है ना, सब जगह कवि सम्मेलन में जाते थे। और उनकी गोपालदास नीरज जी तो हमेशा कहते थे, और जब भी मिलते, क्योंकि ये कवि सम्मेलन में बुलाते थे वहाँ पर हम लोग, तो जब भी मिलते तो मुझसे कहते थे मुझे मंच पर तुम्हारे पिताजी ने जमाया। तो कोई भी कितना बड़ा भी कवि हो, एक बार तो वो नया होता है, धीरे धीरे जमता है वो, उसकी जो प्रतिभा है वो धीरे धीरे आती है। वो हमेशा कहते थे मुझे जो गोविंद जी ने जमाया मंच पर, और इस बात को वो हमेशा कहते मुझसे, और मैं बड़ी खुश हो जाती थी कि देखो। अच्छा, एक उनकी एक पुस्तक कोई आई थी, नाम याद नहीं है नीरज जी की, तो हम लेके पढ़ रहे थे, एक छोरा है, छोरा की किताब पढ़ रही है। अब मुझे बड़ा वो लगा कि एक छोरा है, दादा जानते होंगे, उन्होंने नहीं कहा कि ये मेरे जान पहचान का है, मेरे पिताजी ने नहीं बनाया, और उन्होंने मुझसे बार बार जब भी मिलते तब भी कहते तुम्हारे पिताजी ने जमाया मुझे मंच पे। देखिए, संचालक होता है ना, उसका ही कर्तव्य होता है किसी नए कवि को जमाना या उखाड़ देना, उसकी भूमिका से ये चलता है। तो वो हमेशा इस बात को कहते थे कि मुझे मंच दिया और मुझे जमाया।
1: जी जी जी। तो कुछ पुस्तकें भी क्या आपके पिताजी के द्वारा लिखी गई, कुछ ग्रंथ?
0: बहुत लिखे गए, पर अब वो मेरे पास तो जो उनकी दो तीन डायरियां थी, एक उनका वो महाकाव्य था जो हमने दे दिया, सूरज अकेडमी में दे दिया है मैंने, पर जो उसमें से उन्होंने संपादित करके मेरे पति ने और तीन पुस्तकें छपाई, एक तो गोविंद सागर, एक कमल सत्संग और एक भनत गोविंद, ये तीन पुस्तकें उन्होंने छपा दी, क्योंकि बाकी सामग्री हमारे पास थी।
1: कुछ ऐसी ताने भी आपके दादाजी ने या पिताजी ने, पिताजी के द्वारा कुछ ऐसी रचनाएं रची गई, तो थोड़ा सा उसके विषय में भी जानना चाहूंगी।
0: उनकी तो सैकड़ों ताने हैं जो आज भी लोकप्रिय हैं और वो आज भी गाई जाती हैं, बैंड बाजे या जो नफीरी या जो निकलते हैं उसमें उनकी ही ताने गाई जाती हैं। चांद छिपकारी बदरिया में आई बरसा बहार, फिर एक है प्यारे गोविंद ब्रज रखवारे, और एक है सैन मेरो करे प्यार, जो बहुत लोकप्रिय है। जमुना के कुल से धाई बाम आयो शाम, जो बहुत गाई जाती है। पर दुख ये है, जो गाने वाले हैं आपके रेडियो स्टेशन पर

0: गाते हैं, मैंने सुना है, पर वो उनका नाम नहीं देते हैं, लोकतान करके खपा देते हैं। अरे लोकतान तो जब होती है जब उनका कोई बचा ही नहीं हो, 100-200 साल हो गए हो उनको, तब वो लोकतान होती है। अभी तो उनका उनकी बेटी बहू सब परिवार उनका है, बड़ा दुख होता है। जो गाते हैं उन लोगों को पता है कि तान उनकी है, गोविंद जी की है, फिर भी वो नाम नहीं देते हैं। इनकी सैकड़ों तान है जो इतनी लोकप्रिय है और आज भी गाई जाती हैं। होली पे जो नई लिखी जाती है उन पर लड़के, नए लड़के नहीं नाचते, नहीं गाते हैं, वही पुरानी ताने ही गाई जाती हैं उनकी। प्यारो रसिक शिरोमणि श्याम, और एक ओ मोरी प्यारी राधे पैरों गले में समार, फूलन के नवहार। अब ये इसमें सब फूलों के नाम है, कोई फूल ऐसा छूटा नहीं है जो जिसका नाम नहीं आया हो। एक है प्रेम पगे प्रीतम पढ़ रहे सब मोहन गहो, अंचल चंचल तू मत उड़ रे मोहन मेरे न जागे, कल कर रे कंगना तनक केस के भार सहो। प्रेम से पगे प्रीतम पढ़ रहे सब मोहन गहो, सैकड़ों ताने हैं जो आज भी बहुत लोकप्रिय हैं और गाई जाती हैं। ये नहीं है कि आदमी भूल गया उन तानों को, तान तो याद है पर उनके रचनाकार का नाम कोई नहीं लेता है, ये बड़ा दुखद होता है जी। ये बड़ा दुख होता है इस बात,
1: ये दुख का विषय है निश्चित रूप से, कि जिन्होंने उसका सृजन किया और जिन्होंने उनको सजाया,
0: जिस परिवार को उन्होंने सिखाया था और जिसको उन्होंने दिया कि तुम ये गाया करो, उनके परिवार के लोग जानते हैं, वही लोग गाते हैं ज्यादातर इसको, पर वो नाम नहीं लेते उनका और अब लोकतान करके गा देते हैं। बहुत दुखद है, बड़ा दुख होता है हमको।
1: जी जी बिल्कुल निश्चित रूप से। और कोई विशेष बात उनके जीवन से जुड़ी हुई?
0: वो खुद ही बहुत विशेष थे जी। उनसे कोई ऐसी बात नहीं थी, जो कोई ज्ञान ऐसा नहीं था। एक बार ब्रजभाषा अकादमी, राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी के आए कोई, तो गोथ क्या होता है? अब गोथ तो उन्होंने कहा कि देखोगे कि बताए दो, उनके लिए देखेंगे हम तो उन्होंने कहा बैठो, अब मेरी माँ ने खाना वाना लाया, खाना वाना खा के चलो एक गाँव में ले गए और जाके उससे बोले, एक लड़की जा रही थी, अरे चोरी गोथ कहाँ है तेरो, अरे क्या करेगा बाबा, तो उसने कहा हम देखेंगे, तो उन्होंने ये पर गोथ जहाँ उसका ढेर लगाती है ना
1: गोबर का,
0: उसको गोथ बोलते हैं।
1: अच्छा
0: वो लोग देखते रह गए, ये गोथ ये है गोथ का, ये है गोथ वहाँ तक ले गए उनको गांव को दिखाने।
1: जी, जी, जी, जी।
0: एक बार कभी सम्मेलन हो रहा था और सुबह हो रही जाए थी, तो उन्होंने कहा कि अरे अब सुबह होने को अब इस समय का कोई कवि सुनाओ, तो आशु कवि थे, तो उन्होंने एक कविता उसी समय लिख के सुना दी। पक्ष दुहु करताल उचार लगावत कोयल चूमती आई, जो कवि गोविंद तान बंधान जमाइन के मिस लूमती आई, नाचत झोंटन की झकझोर घुमेर घनेर घूमती आई, नैनन रंग थली पे भली इंद्रिया नटनी झुक झूमती आई। तो उनके बेटों पुत्रों
1: की चलिए दादाजी की बात हुई, पिताजी की बात हुई, और अब बात करते हैं आपके पति की। क्या शुभ नाम रहा आपके पति का?
0: उनका नाम था डॉक्टर विष्णु विराट चतुर्वेदी, विराट उन्नस अपना जो उपनाम रखते हैं ना।
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: विराट उनका उपनाम ही था, वैसे तो विष्णु प्रसाद था
1: जी,
0: फिर विराट इसी नाम से वो जाने गए।
1: तो कुछ अब उनके जीवन से जुड़े संस्मरण, और क्या किस प्रोफेशन में थे, कवि बनना एक शौकिया उनका था या पेशेवर कवि थे या कुछ और, क्या उपलब्धियां थी उनके विषय में?
0: से कवि थे। हाँ। जो जन्मजात कवि होता है ना वो थे।
1: अच्छा
0: शुरू से प्रतिभावान थे, तब वो जैसे स्कूलों में वो भाग लेते थे छोटी उम्र में 9वीं 10वीं में, तो वो अपनी कविता ही सुनाते थे ब्रजभाषा की, और जन्मजात कवि थे वो।
1: अच्छा
0: तो उनकी लोग याद भी करते हैं, बस ऐसे वो संस्मरण भी है उनके, जो किसी टीचर के लिए कोई ऐसी, अब लड़के लिख ही देते हैं तो किसी के लिए लिख दिया ऐसा, तो उन्होंने कहा कि सुधार दूंगा, पर सुधार नहीं पाए, और लड़कों ने कहा वही वही वही, अब मैं कहूंगी नहीं, वो अच्छा नहीं लगता है।
1: जी जी
0: तो किसी टीचर
1: से, चलिए टीचर और वो तो एक अलग स्टेज हो गई,
0: छोटे से बचपन से वो कवि थे।
1: तो अभी आपके लिए कभी कुछ लिखा उन्होंने, कुछ बताइए?
0: अब लिखा तो होता है अच्छा नहीं लगता है, और जब मैं कभी मथुरा आ जाती थी ना
1: हाँ।
0: तो उनको अच्छा नहीं लगता था। हाँ। इसमें उनका गीत है कि हम अकेले बैठे, अब मैं भूल रही हूँ किससे बात करें।
1: अच्छा
0: बेटे बहू ऊपर अटा में बैठे, हम किससे बात करें।
1: अच्छा
0: और फिर एक ये था, वो तो मेरी उनकी जो कलीग थी वहाँ यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा था कि आप जब नहीं होती थी ना तो ये कहते थे सर तुमसे ही घर घर लगता है, वरना इसमें डर लगता है।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है, तुमसे ही घर घर लगता है। तो घर की बातें और घर से बाहर की बातें, बहुत सारी बातें आपके जीवन से जुड़ी होंगी।

0: कुछ उनके जीवन के प्रसंग जानना चाहूंगी और एज ए प्रोफेशन उनका क्या पेशा था।
1: वो बड़ौदा में एम एस सी महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में वो शुरू पहले तो वो वहाँ प्रोफेसर थे, अभी पहले प्रोफेसर थे, पहला लेक्चर हुए फिर प्रोफेसर, फिर वहाँ की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट।
0: अच्छा,
1: वहाँ पे एम एस यूनिवर्सिटी में
0: जी,
1: और
0: जी।
1: वही पेशा था उनका
0: जी,
1: पढ़ने तो पढ़ाने का,
0: पढ़ने पढ़ाने का, और उसमें फिर जो समय बचे उसमें काव्य सृजन का।
1: उनका काव्य सृजन ऐसा था, कोई ऐसा नहीं था कि पहले अपने प्रयास से लिखें, अगर धुन हो गई है कोई वो हो गया है तो रात और दिन लिखाई करते थे, और नहीं तो महीनों नहीं लिखते थे। ऐसा बहुत से लोग जैसे समय से इतने बजे से इतने बजे तक लिखना है, ऐसा कुछ नहीं,
0: ऐसा कुछ नहीं है।
1: जब हमारी धुन आ गई तो हम लिखते ही जा रहे हैं
0: जी जी जी,
1: और नहीं तो हम महीनों नहीं लिखते, कुछ भी नहीं लिखते।
0: हाँ, हाँ, हाँ,
1: तो मैं कहती ऐसा क्या है आपका, ऐसा लिखते हो क्या? पता नहीं, कभी ऐसा हो जाता है ऊपर वाला भेजता है दिमाग में और मैं वो लिख देता हूँ, मैं अपनी तरफ से कोशिश कुछ नहीं करता हूँ। और इतना लिखा उन्होंने, 100 बुक लिखी दी होंगी
0: जी जी,
1: संपादित भी बहुत पुस्तकें की उनकी, अपनी भी कविता की पुस्तकें भी हैं उनकी, ब्रजभाषा में भी लिखा उन्होंने, हिंदी में भी बहुत लिखा और ब्रजभाषा में भी बहुत
0: जी जी जी।
1: तो उनके छंद वगैरह हैं, जहाँ आंध्रे सूर को श्याम बसे, रसखान बसे रसखान सी बानी, जहाँ घुंघरी बांध के मीरा नचे, जहाँ ताज का साहेब है दिल जानी, ब्रजमाम रटे घनश्याम जहाँ, जहाँ राधिका राजत रूप की रानी, बस जहाँ उन्हीं ब्रज बीथिन में, जहाँ है मनमोहन की मनमानी।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर।
1: तेरा ही रूप है तेरा ही रंग है, यह सब रास विलास त्योहारो, तेरी ही धूप है तेरी ही चांदनी, तेरी ही तेज है तेरा उजारो, तू ही विराट विवाह की प्रभा, और तू ही मनोज के ओज को पारो, तेरी वस्तु समर्पित तो तू ही को, तो पे न छावर छंद हमारो।
0: क्या बात है, शिक्षा दीक्षा में विशेष कुछ बातें उसमें शामिल हुआ करती थी। तो आपके पिताजी का जो आपने उल्लेख किया कि इस तरीके की जो उनकी प्रवृत्ति थी, और थोड़ा उस विषय में और प्रकाश डालिए, किस तरीके से कवियों को उन्होंने अपना मार्गदर्शन प्रदान किया, किस तरीके से
1: कवियों को। अब देखिए आजकल नए कवि हो, मेरे दादाजी तो बड़े सौभाग्यशाली थे जो उनके शिष्यों ने उनका सम्मान किया और उनको माना कि एक गुरु हैं, और मेरे पिताजी ने बहुत लोगों को पढ़ाया दी और शिक्षा दी। तो ऐसे छंद बनाते जैसे कमल का फूल है, तो वो कमल के फूल में जो शब्द ऐसे गया ना, तो वो पूरा आया तो एक एक पंक्ति हो गई, और लौट के आया तो दूसरी पंक्ति हो गई। ऐसे छंद वो लिख देते थे और सिखा भी देते थे, पर उनके शिष्यों ने कभी उनको यश नहीं दिया। बहुत से लोगों ने उनसे सीखा, और जब अब नाम दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, पर बहुत से जो उनसे सीख के गए, पढ़ के गए, उन लोगों ने भी वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी, इन्होंने बहुत सम्मान दिया, और विद्या निवास जी ये बहुत सम्मान करते थे, सीखा भी था उन्होंने कुछ। पर जो ब्रजभाषा कविता का जो सीख के गए ना, उन्होंने कभी नाम उनका कभी उल्लेख ही नहीं किया, जो मेरे सामने पढ़ के सीख के गए जाते थे। मुझे बड़ा बुरा लगता था कि देखो ये कैसे है, देखो यश की रेखा हर एक उस पर नहीं होती है, तो उनके जो सीख के गए ना मेरे पिताजी के, वो अपने स्वतंत्र ये हुए कि हम तो अपने जन्म जाते हैं, वो सीखा ही नहीं है ऐसा
0: जी जी जी। पर तो आज बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय हमने आपसे जाने, आपके जीवन से जुड़े हुए, आपके दादाजी के विषय में, आपके पिताजी के विषय में और पति के विषय में भी।
1: इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे
0: जी,
1: जिनकी कमी मैं अभी भी महसूस करती हूँ
0: जी।
1: ये नहीं है कि वो इतने पढ़े लिखे थे, कितनी पढ़ाई, डबल MA, PhD, D.Lit, आचार्य, शुद्धादेव आचार्य, दो दो डिग्री थी आचार्य की उनके पास, और इतना पढ़े लिखे आदमी, इतने सरल सहज। कभी मैं घर में भी काम करी तो मुझे साल पकड़ने लग जाती थी, चलो मैं करवा देता हूँ। इतना कोई अहंकार नहीं था, जैसे अब मैं लोगों में देखती हूँ ना, अहंकार वाले नहीं थे, हमेशा पैर जमीन पर रखते थे।
0: तो बहुत खूबसूरत यादें हैं आपके जीवन से जुड़ी हुई, और इन यादों का जो कारवां है वो अब हमारे श्रोताओं तक भी पहुँच रहा है, और उम्मीद करते हैं इस अनुभूति को वो भी दिल से अपनाएंगे। और ऐसे ही
1: एक उनका मेरे पति की एक भाई है, माना जग के ताज नहीं है, चर्चा हमें आज नहीं है, फिर भी गीत हमारे यारों परिचय के मोहताज नहीं है।
0: वाह वाह वाह,
1: ये उनका
0: बिल्कुल। तो विराट जी वास्तव में विराट रहे, और उनका विराट जीवन, विराट व्यक्तित्व ऐसे ही हम सभी को याद रहेगा, और बार बार उनकी याद आती रहेगी। और आपसे आज उनके जीवन के कुछ प्रसंग हम सभी ने जाने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे विशेष बातचीत, ओबी आधारित संस्मरणात्मक बातचीत, और विशेषज्ञ थे ब्रजलता चतुर्वेदी, और आपसे बातचीत कर रही थी रश्मि शर्मा। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। एक कार्यक्रम संबंधी सूचना, श्रोताओं स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश हेलो डॉक्टर में इस गुरुवार यानी कि आज 6 अगस्त मध्याह्न 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है अब साथ डिप्रेशन की समस्याएं और उनके समाधान। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर मेघना गुप्ता, वरिष्ठ मनोचिकित्सक आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565 कोड लगा करके 2530135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412255575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में अवसाद डिप्रेशन की समस्याएं और उनके समाधान से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे कार्यक्रम का विषय है अवसाद डिप्रेशन की समस्याएं और उनके समाधान। श्रोताओं यदि आप अवसाद डिप्रेशन की समस्याएं जैसे हार्मोनल परिवर्तन, दिन भर उदास दुखी या खालीपन महसूस होना, तनाव व चिंता, स्वच्छता का मानसिक प्रभाव, खुद को बेकार लाचार या दोषी मानना, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना या चिड़चिड़ापन होना, बार बार मन में नकारात्मक या आत्महत्या के विचार आना जैसी समस्याओं के बारे में जानकारी चाहते हैं तो पूछे सवाल डॉक्टर मेघना गुप्ता, वरिष्ठ मनोचिकित्सक आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। श्रोताओं ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन आज रहेगा गुरुवार 6 अगस्त 2026 और समय दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी को आपने सुना। फिल्म का नाम था दिल से। और आइए सुनते हैं सोनू निगम, अलका याग्निक को। फिल्म का नाम है दिल परदेसी हो गया।

अलका याग्निक, उदित नारायण को अभी आपने सुना फिल्म हमारा दिल आपके पास है में, और आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों को। फिल्म का नाम है दिल तो पागल है।

नारायण, अलका याग्निक, मनप्रीत अख्तर को अभी आपने सुना फिल्म कुछ कुछ होता है में। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। ये सुनते हैं कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश हेलीकॉप्टर में इस गुरुवार 6 अगस्त यानी आज 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है अवसाद, डिप्रेशन की समस्याएं और उनके समाधान। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर मेघना गुप्ता, वरिष्ठ मनोचिकित्सक, आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565 कोड लगाकर फोन करें 2530135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412255575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में अवसाद, डिप्रेशन की समस्याएं और उनके समाधान से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है अवसाद, डिप्रेशन की समस्याएं और उनके समाधान। श्रोताओं, यदि आप अवसाद, डिप्रेशन की समस्याएं जैसे हार्मोनल परिवर्तन, दिन भर उदास, दुखी या खालीपन महसूस होना, तनाव व चिंता, स्वच्छता का मानसिक प्रभाव, खुद को बेकार, लाचार या दोषी मानना, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना या चिड़चिड़ापन होना, बार बार मन में नकारात्मक या आत्महत्या के विचार आना जैसी समस्याओं के बारे में जानकारी चाहते हैं तो पूछिए सवाल डॉक्टर मेघना गुप्ता, वरिष्ठ मनोचिकित्सक, आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा आज यानी गुरुवार 6 अगस्त 2026 और समय दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

अभी आपने सुना आशा भोसले को। फिल्म का नाम था साहेब और गुलाम। और आइए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, अलका याग्निक, अमित कुमार और साथियों को। फिल्म का नाम है कभी खुशी कभी गम।

हेमंत कुमार, लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म झनक झनक पायल बाजे में। और आइए सुनते हैं यश उदास और साथियों को। फिल्म का नाम है सावन को आने दो। तो

अभी आपने सुना यश उदास को, फिल्म का नाम था सावन को आने दो, और एक कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश सिम्स डॉक्टर में इस गुरुवार यानी कि आज 6 अगस्त में 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है अवसाद, डिप्रेशन की समस्याएं और उनके समाधान। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर मेघना गुप्ता, वरिष्ठ मनोचिकित्सक आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565 कोड बाहर के श्रोता लगाएं और 2530135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412255575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में अवसाद, डिप्रेशन की समस्याएं और उनके समाधान से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे

कार्यक्रम का विषय है अवसाद डिप्रेशन की समस्याएं और उनके समाधान। श्रोताओं, यदि आप अवसाद डिप्रेशन की समस्याएं जैसे हार्मोनल परिवर्तन, दिन भर उदास, दुखी या खालीपन महसूस होना, तनाव व चिंता, स्वच्छता का मानसिक प्रभाव, खुद को बेकार, लाचार या दोषी मानना, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना या चिड़चिड़ापन होना, बार बार मन में नकारात्मक या आत्महत्या के विचार आना जैसी समस्याओं के बारे में जानकारी चाहते हैं तो पूछिए सवाल डॉक्टर मेघना गुप्ता, वरिष्ठ मनोचिकित्सक, आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। श्रोताओ, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा गुरुवार यानी आज 6 अगस्त 2026 और समय दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई और सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला नगमा।

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्म संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति संजय सारस्वत की है।
1: हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सारस्वत। श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, तो हमें इस कार्यक्रम में फोन करें। इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सवेरे 10:30 से, और इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे केंद्र से होता है रविवार से शुक्रवार तक सवेरे 11:00 से 11:30 तक। अगर आप अपने फोन रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो हमें फोन अवश्य कीजिए। हमारा फोन नंबर है 2530135। मथुरा से बाहर के श्रोता हमें 0565 कोड लगाकर फोन करें। फोन कॉल्स आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो।
1: हाँ भैया नमस्ते।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर?
1: योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: स्वागत है योगेश भाई कार्यक्रम में।
1: शुक्रिया।
0: कैसे हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया है भैया, मौसम में काफी गर्मी और उमस है,
0: अच्छा,
1: लगभग सभी जगह है ऐसा लग रहा है भैया। जितने जगह बात हो रहा है तो
0: जी
1: सब जगह इसी टाइप की स्थिति पता चल रही है।
0: हाँ, बारिश हो के थोड़े दिन रुक जाती है, फिर गर्मी
1: जी जी
0: होती है। जी, यहाँ भी यही हाल है सर, लगातार
1: जी
0: बरसात नहीं हो पा रही।
1: हाँ जी हाँ
0: और सब ठीक चल रहा है घर परिवार में?
1: जी सब ठीक है।
0: आज क्या फरमाइश रहेगी कार्यक्रम में?
1: फिल्म सिर्फ तुमसे सुनवा देंगे, पहली पहली बार मोहब्बत की है। धन्यवाद।
0: बिल्कुल सुनवाएंगे सर आपकी फरमाइश का गाना। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार सर,
0: नमस्कार,
1: मैं ब्रिज सोता में गांव से भजनलाल बोल रहा हूँ सर।
0: भजन लाल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बहुत
1: और
0: बहुत
1: सर कुशल है? चलो
0: बस कृपा है प्रभु की, आपकी दुआएं हैं।
1: हम ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपका साथ बढ़िया रहे, हमें भी बढ़िया बढ़िया गाने सुनने को मिलते रहे सर।
0: आप स्वस्थ तो हैं?
1: हाँ मैं ठीक हूँ सर।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। आज क्या फरमाइश है?
1: अरे हम लोग कोई पुराना गाना सुनवा दीजिए सर।
0: कौन सा पुराना?
1: अरे आज हम आपकी पसंद का ही सुनेंगे।
0: अच्छा
1: हाँ हमने आपकी पसंद का कभी गाना सुना नहीं है, वैसे तो बहुत सुने पर आज फरमाश गाने में आपकी सुनेंगे सर।
0: चलिए, आज आपको अपनी पसंद का गाना सुनवाते हैं।
1: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर।
1: नमस्कार सर।
0: राधे राधे।

0: گستاخی ما گستاخی ما.
1: हेलो।
2: हाँ सर जी, नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: जबलपुर एमपी से आपका श्रोता अशोक सिंह बात कर रहा हूँ सर।
1: अशोक जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: जी जी, आपको भी सपरिवार बहुत सारी शुभकामनाएं।
2: और सर कैसे हैं आप?
1: हम अच्छे हैं सर, आप बताइए क्या हाल चाल है आपका, परिवार का, आपके?
2: सब ठीक है। मैं भी पूछता हूँ आपको, सावन में क्या क्या अच्छा लगता है?
1: सावन में तो भगवान शिव की आराधना अच्छी लगती है, बरसात अच्छी लगती है, मौसम सुहावना होता है तो आनंद है
2: जी। तो यही सब अच्छा लगता है, हरा भरा सब जगह नजर आता है, झूले भी है वो मजा आता है
1: जी।
2: बचपन की यादें आती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने
2: जी। तो गाना सुनवा दीजिए, दो झूठ छतरी न खोल उड़ जाए।
1: सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपको भी दिल से धन्यवाद, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो।
1: नमस्कार सर, मैं चिरमिरी क्रासिया काली जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है इंद्रभान जी कार्यक्रम में।
1: ठीक है सर, आप भी इसमें, मैं भी अच्छा ड्यूटी परेड में हूँ सर। मौसम बादल किया हुआ, पानी गिरा सर और
0: अच्छा
1: इसके बाद बंद हो गया है। इसके बाद उमस गर्मी है, पानी गिरने के कगार में जब भी गिरे ठंडा ठंडा हवा चल रहा है सर।
0: जी
1: और मैं दिशा मृत्यु मनोज साहब को अपने पसंद की गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है दिल तो पागल है
0: जी
1: और दिल के बोल है कोई लड़की है जब वो हंसती है। गायक उदित नारायण और लता मंगेशकर। सबसे पहले गीत आपको, पूरे निर्देशक साहब को, पूरे भारत राष्ट्र श्रोता को, आकाशवाणी मथुरा में जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सभी घोषक भाई में स्टाफ कर्मचारियों को, पूरे भारत राष्ट्र श्रोता को ड्यूटी कर।
0: ठीक है इंद्रवान जी, आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं हम।
1: जी
0: बहुत
1: सर,
0: बहुत धन्यवाद आपका।
1: जी सर, फोन साइन किया सर, धन्यवाद।

आज का कार्यक्रम आपके बीच लेकर आए संजय सारस्वत। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम मेरी पसंद। जी हाँ, आइए सुनते हैं कार्यक्रम में फिल्म संगीत।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर को फिल्म मंजिल में, गीत योगेश का, संगीत राहुल देव वर्मन का। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर में इस गुरुवार यानी कि आज 6 अगस्त को दिन में 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय अवसाद यानी कि डिप्रेशन, इसकी समस्याएं और इनके समाधान। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए इस विषय पर विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर मेघना गुप्ता, वरिष्ठ मनोचिकित्सक, आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके या मोबाइल नंबर 9412225575, जी हाँ 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में अवसाद यानी कि डिप्रेशन की समस्याएं और उनके समाधान से संबंधित इस विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है अवसाद डिप्रेशन, समस्याएं और इनके समाधान। श्रोताओं, यदि आप अवसाद डिप्रेशन की समस्याएं

से हार्मोनल परिवर्तन, दिन भर उदास, दुखी या खालीपन महसूस होना, तनाव, चिंता, स्वच्छता का मानसिक प्रभाव, खुद को बेकार, लाचार या दोषी मानना, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना या चिड़चिड़ापन होना, बार बार मन में नकारात्मक या आत्महत्या के विचार आना जैसी समस्याओं के बारे में जानकारी चाहते हैं तो पूछिए सवाल डॉक्टर मेघना गुप्ता, वरिष्ठ मनोचिकित्सक, आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। श्रोताओं, ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन आज गुरुवार 6 अगस्त को दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई। और आइए सुनते हैं ये अगला गीत जिसे लिया हमने फिल्म क्रिएचर से। आवाज इस गीत में अरिजीत सिंह की, गीत टोनी कक्कर का, संगीत

अरिजीत सिंह को अभी आपने सुना फिल्म क्रिएचर 3D में। गीत संगीत टोनी कक्कड़ का था। और आइए सुने आर्यन बख्शी का गीत संगीत शिव हरी का। स्वर से सजाया इस गीत को अनुपमा देशपांडे, सुरेश वाडकर और साथियों ने फिल्म चांदनी के लिए।

अनुपमा देशपांडे, सुरेश वाटेकर और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म चांदनी में। आई सुने कार्यक्रम का ये अगला गीत, जिसे लिया फिल्म कसमे वादे से। आवाज़ इस देश में गीत में राहुल देव वर्मन की।

0: इसीलिए तो कह गए हैं, जति सती कर्म ही गति, आए मिले जो संग पिशाच का, सदा मिले बुरी मति बुरी मति।
1: But where is Bhanumati?
0: Bhanumati? Are Bhanumati?

0: राहुल देवर्मन और साथियों को अभी आप सुन रहे थे फिल्म कसमे वादे में FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले सपन आनंद के स्वर में, संगीत राहुल देवर्मन का, फिल्म सत्ते पे सत्ता। जी हाँ, इस फिल्म से ये नगमा।
1: ओहो, अरे कोई सांस तो छेड़ो। झुका के सर को पूछो, मैडम हाउ डू यू डू।
2: नहीं नहीं नहीं भाभी, ऐसे नहीं, एक्टिंग करके बताओ।

0: ऐसा क्या?
1: अब तुम करके दिखा, कैसे बोलोगे?
2: How do you do?
1: How do you do?
2: I love you.
1: ओहो, I love you इतनी जल्दी नहीं रे बाबा।

0: I like you.
1: अब तुम्हारे भेजे में बात आई, अब आगे बढ़े।
2: ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो, अरे तू भी चुप हो जा। खामुखा बीच में बजाता रहता है। अच्छा भाभी, अगर वो नहीं शर्माई तो?
1: अरे पागल बुद्धू, वो अगर नहीं शर्माई तो कोई और शर्माएगी।
3: ऐसा क्या?
1: हाँ।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले सपन और आनंद को। गीत गुलशन बावरा का था, संगीत राहुल देव वर्मन का। अभी आपने लिया आनंद इस गीत का और लेते हैं अगले गीत का आनंद। आवाज इस गीत में आशा भोसले, सुरेश वाडेकर की। गीत गुलजार का, संगीत विशाल का।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर में आज दिन में 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है अवसाद यानी कि डिप्रेशन, समस्याएं और उनके समाधान। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर मेघना गुप्ता, वरिष्ठ मनोचिकित्सक आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके या मोबाइल नंबर 9412225575, जी हाँ 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में अवसाद यानी कि डिप्रेशन की समस्याएं और उनके समाधान से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय अवसाद यानी कि डिप्रेशन, इसकी समस्याएं और उनके समाधान। श्रोताओं, यदि आप अवसाद

0: डिप्रेशन की समस्याएं जैसे हार्मोनल परिवर्तन, दिन भर उदास, दुखी या खालीपन महसूस होना, तनाव व चिंता, स्वच्छता का मानसिक प्रभाव, खुद को बेकार, लाचार या दोषी मानना, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना या चिड़चिड़ापन होना, बार बार मन में नकारात्मक या आत्महत्या के विचार आना, जैसी समस्याओं के बारे में जानकारी चाहते हैं तो पूछिए सवाल डॉक्टर मेघना गुप्ता, वरिष्ठ मनोचिकित्सक, आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। श्रोताओं ध्यान रहे, कार्यक्रम का समय दिन में 12 बजे से यानी कि आज सूचना समाप्त हुई। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम। सिम्स हेलो डॉक्टर, इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सिम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मथुरा। आज का विषय है अवसाद, डिप्रेशन, समस्याएं और उनके समाधान। आज विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मेघना गुप्ता, वरिष्ठ सलाहकार, आकाश सिम्स इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस सिम्स हॉस्पिटल मथुरा, इस कार्यक्रम के प्रायोजक सिम्स हॉस्पिटल मथुरा।
1: सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ, आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपने मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर वन पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर शिरादा वैली मथुरा।
2: श्रोताओं नमस्कार, एक बार पुनः आपके अपने कार्यक्रम जिसका नाम है आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम स्वास्थ्य से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे पहलू जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, हमारी पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं, उन पर आपकी चर्चा करवाते हैं। आज के उसमें जो जानकारी हम देते रहे, आज का विषय है अवसाद यानी डिप्रेशन, उसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या लक्षण हमारे जीवन में आते हैं, उनको कैसे पहचानेंगे और उनका निदान क्या है, समस्या का समाधान क्या है, बहुत ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए डॉक्टर मेघना गुप्ता जी हमारे साथ हैं। आप वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं, आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा में बैठती हैं। डॉक्टर साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार।
3: नमस्कार जी।
2: तो अवसाद, अब कोई ऐसी डिप्रेशन ऐसी बात नहीं रह गई है जो लोग नहीं जानते हो, सब समझते हैं, लेकिन फिर भी जानते हुए समझते हुए सब कुछ होते हुए भी हम कभी न कभी जीवन के संदर्भों में परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमको स्वयं भी पता नहीं होता, जो व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है या डिप्रेशन में चला जाता है उसको कई बार खुद भी नहीं पता लगता कि है वो डिप्रेशन में। तो ये बड़ी गंभीर चिंता का विषय, बड़े वैसे मुद्दे, तो बताइए क्या कुछ हम इससे निपटें, कैसे इसको जान पाएं।
3: डिप्रेशन के जी जो लक्षण है वो समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लोग उस चीज़ की तरफ उतना ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि बीपी, शुगर जो है वो ऐसी बीमारियां हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। डिप्रेशन जो है उसको काफ़ी हद तक लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है जी कि अगर हमारा मन अच्छा नहीं रहेगा, अगर हम डिप्रेस्ड रहेंगे, तो उससे हमारा जो पूरा शरीर है, हमारी पूरी बॉडी है, उस पर प्रभाव पड़ता है। हर प्रकार की समस्या होने का जो एक रिस्क है वो बढ़ जाता है। यदि इंसान का मन अच्छा नहीं रहता है तो उसको बीपी, शुगर, बाकी शरीर की समस्याएं होने के जो चांस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो डिप्रेशन के जो मेन लक्षण रहते हैं जी, वो होता है कि ज़्यादातर मन जो है वो उदास रहता है, किसी काम करने का इंसान का मन नहीं करता, रोने का मन जो है वो करता रहता है इंसान का, नींद और भूख की समस्याएं बढ़ जाती हैं। डिप्रेशन जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है, तो एक प्रकार के डिप्रेशन में हमारी जो नींद है और भूख है दोनों कम हो जाती हैं, और एक दूसरे प्रकार के डिप्रेशन में जिसको हम एंडोजीनस डिप्रेशन, जिसको हम

0: दूसरे प्रकार का जो डिप्रेशन है उसमें जो भूख और नींद है दोनों बढ़ जाती
1: बढ़
0: हैं,
1: जाती है
0: तो
1: जी।
0: आदमी का जो है वो वेट गेन हो जाता है, उसको एटिपिकल डिप्रेशन बोला जाता है। जो कम होता है वो दोनों चीज़ें टिपिकल डिप्रेशन में देखी जाती हैं। तो उसके अलावा इंसान को नकारात्मक विचार आने लगते हैं, उसको ऐसा लगता है कि आगे चल के मेरे साथ लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, मैं कुछ भी करूँगा तो उसमें मुझे सफलता प्राप्त नहीं होगी, उसे लगने लगता है कि मैं मर जाऊं तो बेहतर है, आत्महत्या के ख्याल आने लगते हैं, काफी बार लोग आत्महत्या करने का प्रयास भी करते हैं। तो ये सारी समस्याएं जो हैं, अगर किसी
1: और
0: को
1: कई बार जीवन में हर परिस्थिति के लिए स्वयं को दोषी मानने लगता है आदमी, कि अरे
0: बिल्कुल
1: शायद
0: जी,
1: ये घर में कुछ
0: बिल्कुल
1: भी हो रहा है, हम चार
0: बिल्कुल
1: लोग रह रहे हैं, छोटे बहन भाई भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, माता पिता हैं और हमारे रिलेटिव्स हैं,
0: हाँ जी,
1: कुछ भी
0: तो
1: हुआ और ऐसा लगा यार ये कहीं ऐसी मेरी वजह से तो नहीं
0: हाँ
1: हो
0: जी,
1: गया।
0: तो उनको हम गिल्ट फीलिंग्स बोल देते हैं
1: जी जी
0: कि इंसान को ऐसा लगता है कि आस पड़ोस में या आसपास कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो उसमें मेरा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। तो
1: जी
0: हर प्रकार के नकारात्मक विचार जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हमारा जो दृष्टिकोण है वो कम्प्लीटली नकारात्मक हो जाता है।
1: तो श्रोता शायद हमसे अब जुड़ने लगे हैं, एक श्रोता है। हेलो
2: हेलो सर, नमस्कार सर। नरेंद्र
1: नमस्ते भैया, नाम बता दीजिए अपना।
2: कुमार गर्ग,
1: नरेंद्र कुमार गर्ग।
2: नरेंद्र कुमार
1: हाँ नरेंद्र कुमार, बताइए भाई नरेंद्र कहाँ से बोल रहे हैं?
2: सर, मैं इलाज से बोल रहा हूँ,
1: अच्छा
2: अलीगढ़
1: ठीक
2: से, अलीगढ़
1: है
2: से।
1: ठीक है ठीक है, आज हम अवसाद पे बात करें, डिप्रेशन पे, बताइए। डॉक्टर साहब बैठी हुई हैं, बात करिए।
2: हेलो
1: हाँ बोल, आपकी आवाज आ रही है, डॉक्टर साहब से बात करिए।
2: सर, मैं आंखों से एक ब्लाइंड पर्सन हूँ,
1: हाँ
2: डिप्रेशन मेरे को काफी रहता है, एक रोजगारी वजह से भी रहता है, हम कुछ कमा नहीं पाते हैं इसलिए भी डिप्रेशन रहता है।
1: ओके ओके, आपने पढ़ाई भी किया कुछ ब्रेल लिपि से?
2: नहीं सर,
1: अच्छा, मैडम उम्र एक बार और बता दीजिए थोड़ा सा।
2: उम्र सर 37।
1: 37 है, ब्लाइंड
0: हाँ जी, हाँ
1: है
0: जी,
1: जी।
0: देखिए जी, आपकी जो परिस्थितियां हैं उसकी वजह से थोड़ी बहुत उदासी तो जी रहनी स्वाभाविक है, बट उसमें ये ज़रूर है जी कि अगर आपको उदासी बहुत ज़्यादा रहती है तो आप उसके लिए दवाई भी उपलब्ध है, तो आप दवाई के लिए भी किसी डॉक्टर को, साइकेट्रिस्ट को स्पेसिफिकली आप मिल सकते हैं, मनोचिकित्सक को अपने आसपास, और दूसरा जी आप काउंसलिंग के लिए भी जा सकते हैं, तो साइकोथेरेपी हम उसको बोल देते हैं, तो काउंसलिंग भी इसमें आपकी जो है वो मदद कर सकती है, और दवाइयाँ तो जी हैं ही उदासी के लिए, साथ में काउंसलिंग ये मदद मिलेगी जी आपको कि वो आपको गाइड कर पाएंगे किसी ऐसी चीज़ के लिए जो काम आप अपनी अवस्था में भी कर सकते हो। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जी, जैसे लिफाफा बनाना, पन्नी बनाना, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप अभी भी कर सकते हैं, जिन चीज़ों में हमें ज़्यादा विजुअल ज़रूरत नहीं है वैसी चीज़ें, तो वैसी गाइडेंस आप अगर डॉक्टर से मिलें, उनसे अपनी सारी समस्याएं आप शेयर करें कि आपके और क्या क्या लक्षण आ रहे हैं आपको, और कोई आपको समस्या तो नहीं है शारीरिक, तो उस सब के हिसाब से आपकी जो है दवाई भी शुरू हो सकती है, और आपको आगे फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं उस हिसाब से भी गाइडेंस मिल सकती है जी। बहुत से एनजीओज ऐसे रहते हैं जो आपकी मदद भी कर पाएंगे, साइकैट्री मतलब मनोचिकित्सा के एस्पेक्ट से भी, और आपको कोई ऐसा काम दिलाने की उसके भी कि आप काम भी कर पाएं, आप कुछ कमाई भी कर पाएं, तो आप अपने आसपास किसी ऐसे इंसान को डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं जी।
1: ठीक है नरेंद्र भाई जी।
2: प्रॉब्लम मिल जाएगा, यहाँ पे छोटा शहर है, यहाँ पे ऐसा कोई एनजीओ वगैरह कोई भी नहीं है ना।
1: हाँ तो थोड़ा सा आप देखिए, आपके साथ जैसा मैडम ने परिस्थिति बताई डॉक्टर साहब ने आपको, तो इगलास के आसपास जैसा भी है, जो भी सामाजिक संदर्भ है, कुछ तो आपको अपने लिए जरिया, मतलब
0: कुछ
1: व्यस्त रहने के,
0: ऑनलाइन भी है जी, ऑनलाइन
1: ऑनलाइन
0: सब
1: हाँ
0: कुछ उपलब्ध
1: कुछ
0: है।
1: आसपास आपके, क्योंकि आजकल चीजें ऑनलाइन हर चीज जुड़ी हुई है, अब आप ये नहीं कह सकते मैं रिमोट में हूँ तो।
0: मनोचिकित्सा में जी ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अवेलेबल होती है, बहुत से डॉक्टर ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देते हैं, दवाई की भी काउंसलिंग की भी, दोनों चीज़ों की,
1: जी,
0: तो आप उन चीज़ों को आप ऑनलाइन भी आप इस्तेमाल कर
1: और
0: सकते हैं।
1: जब कभी नरेंद्र जी आपको मथुरा की तरफ आना हो तो आप फिर डॉक्टर साहब से एक बार मिल सकते हैं सिम्स में आकर के। इसमें डॉक्टर साहब, अब जैसे यूथ की बात है कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते रोजगार मिलना लेट हो गया, हम एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियाँ हमारे उसमें नहीं होती है। तो अब जैसे ये तो 37 ईयर के, लेकिन जो 25-26 साल से 30 के बीच में जा रहे हैं, तो यूथ में भी आजकल डिप्रेशन काफ़ी एक कॉमन कर गया
0: बिल्कुल
1: है। और फिर
0: जी,
1: यहाँ से चीज़ें जब ज़्यादा निराशा होती है तो फिर हम ड्रग्स की तरफ भी चले जाते हैं,
0: बिल्कुल जी,
1: तो
0: बिल्कुल।
1: वहाँ समस्या
0: उसमें ना
1: बहुत
0: जी दो चीज़ें रहेंगी, एक तो कई

0: परिस्थितियों में उदास होना स्वाभाविक है।
1: हाँ
0: आप इतनी पढ़ाई करें, मान लीजिए आपने डॉक्टरी कर ली, उसके बाद आपको जॉब नहीं मिल रही, तो उदासी होना उस स्थिति में स्वाभाविक है। तो उससे यदि हम नहीं उसको फाइट कर पा रहे हैं, तब हमें दवाई की, साइकोथेरेपी, काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी ही
1: जी जी
0: पड़ेगी।
1: जी
0: और अगर हम उसको अपने ही प्रयास से, अगर हम उस सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे हैं कि हम पॉजिटिव रहें, हम और
1: हेलो।
0: जॉब्स ढूंढने।
1: जी, एक श्रोता हमसे जुड़े। हेलो,
2: जी सर, नमस्ते।
1: नमस्ते।
2: नमस्कार
1: नमस्ते, नाम बताइए।
2: जी सर, मैं वृंदावन से निशा भार्गव बोल रही हूँ।
1: अच्छा निशा जी, इस बार तो काफी दिनों बाद आपका फोन आया है। आप ठीक
2: जी
1: हैं?
2: डॉक्टर, जी बिल्कुल स्वस्थ हूँ मैं।
1: जी, डॉक्टर साहब से बात करिए आप।
2: जी नमस्ते डॉक्टर साहब।
0: नमस्ते जी।
2: डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों में, युवाओं में और बुजुर्गों में, तीनों ही आयु वर्ग में डिप्रेशन के मामले बढ़ रहे हैं। तो
0: हाँ जी,
2: मैं ये आपसे जानकारी चाहती हूँ कि आपके अनुभव में इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, और परिवार के लोग किन शुरुआती संकेतों से इसकी पहचान कर लें ताकि समय रहते मदद मिल सके और चिकित्सा हो सके, स्थिति गंभीर ना हो।
1: जी, इन्होंने तीनों पीढ़ियों को शामिल कर
0: हाँ जी,
1: लिया है।
0: जो कारण रहेगा जी, वो हम उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि हम अपने लाइफ में किस सिचुएशन में हैं। बच्चों में जी जो कारण बढ़ रहे हैं, वो आज बुलिंग बहुत बड़ा कारण है, कि जो आसपास के बाकी बच्चे हैं वो मजाक बनाते हैं। बहुत बार टीचर्स इतने अच्छे से उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते, वो नज़रअंदाज कर देते हैं चीज़ों को। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि बुलिंग का अगर कोई भी हमारे पास इंसिडेंट आए, तो हम उसको बहुत सीरियसली लें। दूसरा जी, अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है आजकल, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल अब्यूज़, जो बच्चों के साथ भी हमें देखने को मिल रही है। उस वजह से उदासी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरा, बच्चों में और थोड़ा सा जैसे 9वीं 10वीं के बच्चों में आप देखें, तो उसमें कंपटीशन आ जाता है, पढ़ाई को लेके बहुत बच्चे आजकल स्ट्रेस्ड रहते हैं, वो कारण आ जाता है। उसके बाद कॉलेज गोइंग में जी आजकल रिलेशनशिप्स एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जिसकी वजह से बच्चों को स्ट्रेस हो जाता है, वो एक समय पे उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। शादी के बाद जी पारिवारिक समस्याएं, हस्बैंड के साथ इश्यूज, इन लॉज के साथ इश्यूज, अगर आपका पार्टनर किसी प्रकार का नशे का सेवन करता है, उस चीज़ को लेके इंसान उदास रहने लगता है। बुढ़ापे में चल के जी बहुत सारी, एक तो बीमारियां लगने की वजह से इंसान को उदासी होती है, दूसरा हमारे देखने और सुनने की क्षमता कम होती जाती है, विजुअल और हियरिंग लॉस होता जाता है, जिसकी वजह से उदासी आती है, जिसको लोग बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। तो ये सारे अलग अलग लाइफ के स्टेजेस में मेन कारण रहेंगे। अब इनके लक्षण क्या रहेंगे जी, लक्षण डिप्रेशन के जो हैं, वो बच्चों में आपको चिड़चिड़ापन भी देखने को मिल सकता है, कि चिड़चिड़ापन जो है वो उदासी का एक लक्षण बन जाता है बहुत बार। सेम मेल्स में, मर्दों में उदासी के जो लक्षण है वो थोड़े से फीमेल से डिफरेंट रहेंगे। फीमेल्स में आपको हो सकता है ज़्यादा रोने वाली चीज़ें मिलें, कि महिला जो है वो ज़्यादा रो रही है। मेल्स में वो चीज़, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इन चीज़ों में प्रकट होती है। नींद और भूख की समस्याएं जी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि नींद और भूख कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और बाकी नकारात्मक विचार हो गए, किसी काम में मन नहीं लगना, ये सारी चीज़ें हो गई।
1: जी,
0: तो
1: एक डॉक्टर साहब, घरों में आजकल जैसे ये तीन पीढ़ियों की इन्होंने बात की, बच्चे हैं, यूथ है, बुजुर्ग भी हैं, इससे भी आगे पीछे की पीढ़ियां पहले रहती थी, तो हम मिलकर के बहुत सारी समस्याओं के समाधान हमारे घर में ही हो जाते थे, आज वो संभव नहीं हो पा रहा। तो जो जो पारिवारिक जो हमारा स्ट्रक्चर भारतीय परिस्थितियों में थोड़ा सा इस इधर उधर हुआ है, वो भी क्या एक इसका कारण बन रहा है कि बच्चे पालने की समस्या तो यूथ के ऊपर आ गई, नौकरी कर ही रहे हैं, परिवार भी चलाना है, जो चीज़ें शेयरिंग पहले हो जाती थी, जिम्मेदारियां, आज वो एक ही व्यक्ति सुबह 5 बजे से
0: बिल्कुल जी,
1: लेकर रात को 11 बजे तक दौड़
0: ये
1: रहा है।
0: सारी चीज़ें हैं ही जी। पर फिर वही चीज़ है, जैसे अभी पिछला कॉल आया कि वो छोटे शहर में है तो उनके पास सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। आदमी को अगर रोजगार कमाना है तो
1: तो वो
0: उसको
1: बड़े
0: शायद
1: शहर,
0: बड़े शहरों में जाना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटे शहरों में उपलब्ध नहीं है। अभी भी जो साइकेट्रिस्ट की मात्रा है वो छोटे शहरों में नहीं है, रूरल एरियाज में आपके पास मेंटल हेल्थ का कोई एक्सेस ही नहीं है, एक्सेस नहीं है, जागरूकता भी नहीं है। तो सारी चीज़ें हैं जी, कि जैसे जैसे लाइफ की रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी, वैसे वैसे जो समस्याएं हैं वो भी पैदा होंगी जी।
1: बिल्कुल सही बात है। मतलब हम रोजगार के लिए बड़े शहर जा रहे हैं, और छोटे शहर में चीज़ें हैं नहीं, बड़े शहर की समस्याएं अलग तरह की हैं, छोटे

0: की अलग तरह की है तो समस्या
1: हेलो,
0: हो जाए। हेलो, हाँ जी, एक श्रोता जुड़े, बताइए भैया, नाम बताइए।
1: मैं बंटी बोल रहा हूँ जैसिंहपुरा से। मेरी
0: बंटी जयसिंहपुरा से, बताओ भैया, उम्र बता दो।
1: उम्र है 40 साल की है। समस्या
0: 40 साल, क्या समस्या है आपकी, बताओ।
1: ये सर, मैं ना गुस्सा थोड़ा थोड़ी थोड़ी बात पे खिलखिलापन गुस्सा आता है जी।
0: आपको क्या करते हैं,
1: मैं मुकुट बनाता हूँ
0: मुकुट
1: सामान के लिए
0: बनाते हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं ना,
1: जी।
0: फिर तो नहीं आना चाहिए, फिर भी डॉक्टर साहब से
1: कोई
0: बात
1: नशे
0: कर।
1: का सेवन करते हैं जी आप? नहीं
0: गुटखा,
1: नहीं नहीं
0: पान, तंबाकू, शराब, भांग?
1: नहीं नहीं नहीं कुछ नहीं खाता मैं, सुबह तक नहीं खाता
0: ठीक है ठीक है। तो कोई उदासी रहती हो, रोने को मन
1: जी।
0: करता हो, काम ना करने को मन करता हो,
1: हाँ हाँ
0: तो जी वही है कि आपको दिखाना ही पड़ेगा जी उसी हिसाब
1: अच्छा
0: से, क्योंकि आपको उदासी की समस्या है जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन आ रहा है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि बहुत
1: जी
0: बार जो मेल्स में है वहाँ पे ये नहीं होता कि रोने को ही मन करेगा या इंसान रोएगा ही। मेल्स में डिप्रेशन का लक्षण जो है वो थोड़ा बदल के गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी जैसा भी हो जाता है। तो उसके समाधान जी दो ही हैं, या दवाइयों से या काउंसलिंग से। काउंसलिंग जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव ऑप्शन होता है, तो इसलिए ज़्यादा मरीज जो है वो दवाई चूज़ करते हैं। दवाई के विषय में जी मैं ये वहम क्लियर कर देना चाहूँगी कि दवाई की कोई आदत नहीं पड़ती है, ना वो दवाई सोने की दवाई होती है, ठीक है, तो ना उससे कोई आदत लगती है इंसान को। दवाई जो है वो अगर आप डॉक्टर के हिसाब से लें तो आपकी दवाई 6 से 9 महीने में बंद भी हो जाती जी। है। अब इसमें जैसे ये कहने की एक अच्छा काम कर रहे हैं तो इसका मतलब इनके पास रोजगार भी है, उम्र भी इनकी वो नहीं है, इनकी बातचीत से मुझे ऐसा लग रहा है शायद परिवार में भी कोई समस्या नहीं, तो अचानक फिर कुछ बीमारियां ऐसी हो सकती हैं, इस तरह का एक सवाल भी पूछा है। ये नांदेड़ से प्रकाश जैन है, 55 वर्ष उम्र है इनकी, ऐप पे हमारा कार्यक्रम सुन रही है महाराष्ट्र से। कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे डिप्रेशन हो सकता है, इससे बचने की दवा क्या है, तो मतलब कुछ बीमारियां भी डिप्रेशन की तरफ ले जाती
1: वही
0: हैं।
1: जी, पहले जब मैं आपको बता रही थी डिप्रेशन के कि किस प्रकार के डिप्रेशन होते हैं, तो डिप्रेशन जो है जी दो प्रकार का रहता है, एंडोजीनस और एक्सोजीनस। एंडोजीनस माने जिसका कारण हमारे शरीर में ही है, जिसका कोई एक्सटर्नल कारण नहीं है, कोई बाहरी कारण नहीं है उसका, जैसे कि स्ट्रेस, जॉब स्ट्रेस, रिलेशनशिप इश्यूज, फैमिली में कोई दिक्कत। अगर ऐसे किसी कारण की वजह से डिप्रेशन होता है तो उसको एक्सोजीनस डिप्रेशन बोला जाता है, कि कारण की वजह से हमें उदासी आई। और एंडोजीनस डिप्रेशन जिसमें कोई कारण नहीं रहता है, उसमें थोड़ा बहुत जेनेटिक भी हो सकता है जी, कि परिवारों में चल रहा है, माता पिता में, दादा दादी, नाना नानी, किसी में कोई ना कोई ऐसी समस्या रही हो मन की। वो जरूरी नहीं है कि उनको भी डिप्रेशन की ही रही हो। तो अगर उनको किसी भी मन की समस्या से वो पीड़ित रहे हैं तो बच्चों में चांस ज्यादा रहता है जी। ठीक है, तो
0: मतलब शारीरिक भी हो सकता है और परिस्थिति जन्य भी हो सकता
1: बिल्कुल जी
0: है।
1: बिल्कुल।
0: बात वही है कि हमें थोड़ा सा अवेयर रहना है, देखना
1: अवेयर तो
0: है
1: जी
0: कि
1: बहुत ज्यादा
0: मेरे
1: रहना
0: व्यवहार में कोई
1: चाहिए,
0: परिवर्तन तो नहीं हो
1: बिल्कुल
0: रहा,
1: बिल्कुल
0: खुद को ही हमें देखना, बार बार जज करना पड़ेगा कि किन्हीं चीज़ों से अचानक, जिन चीज़ों से मैं अच्छे से हैंडल करता था, आज अगर उनसे परेशानी हो रही
1: और
0: है
1: जो चीजें
0: तो।
1: इंसान को जी पहले अच्छी लगती थी वो आदमी करना बंद कर दे, यदि वो डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा लक्षण है। मान लीजिए पहले कोई थोड़ी बहुत गार्डनिंग वगैरह करता था, अपने गार्डन में काम वाम करते हैं, बाद में उनका मन ही नहीं करता कि मैं बिस्तर से उठूं, तो ये एक
0: हाँ
1: डिप्रेशन का बहुत बड़ा लक्षण है जी।
0: जी, जैसे उसमें ये भी है कि बहुत सो के भी थकान सी बनी हुई है,
1: बिल्कुल
0: उदासी
1: जी
0: बनी हुई
1: बिल्कुल
0: है,
1: बिल्कुल।
0: खाने पीने को मन ही नहीं कर रहा है, लोगों से मिलने को मन नहीं कर
1: इसको जी
0: रहा।
1: हम नॉन रिफ्रेशिंग स्लीप बोल देते हैं, कि आप
0: हाँ
1: नींद आप पूरी ले रहे हैं 8-10 घंटे की, फिर भी आपको लग रहा है कि थकान है, मैं फ्रेश
0: हाँ
1: नहीं हूं,
0: कोई कोई भी
1: तो
0: चीज़ आपको जीवन में अपील ही नहीं कर रही।
1: बिल्कुल जी
0: हाँ
1: बिल्कुल।
0: हाँ हाँ एक अशोक है, जसवंत है, आनंद लोक कॉलोनी मथुरा से लिख रहे हैं, किसी समस्या को लेकर लगातार सोचना या बार बार दूसरों से शेयर करना भी क्या डिप्रेशन हो सकता है क्या?
1: नहीं ये ना जी, देखिए हर चीज का एक बाउंड्री लाइन है, कि कितना जो है वो इंसान के लिए नॉर्मल है और कब वो नॉर्मल का लेवल एक्सीड कर गया। नदी में पानी ज्यादा होने से बाढ़ नहीं आती, वो एक लेवल एक्सीड करने के बाद हम बोलते हैं।
0: जी। एक श्रोता और जुड़ रहे हैं हमसे। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्कार
1: नमस्कार ओपी सिंह जी,
0: जी, प्रणाम कर रहा हूँ, नाम बताइए।
1: मैं राकेश लोधी बात कर रहा हूँ गोवर्धन चौड़ाई से।
0: अच्छा राकेश लोधी जी, बताइए, उम्र बता दीजिए थोड़ी सी।
1: मेरी माता जी है, मुझे तो नहीं कष्ट है, मेरी माता जी है, 58 साल उनकी आयु है,
0: 58,
1: नहीं 57 साल,
0: 57 साल, ठीक है।
1: 57 साल आयु है उनकी, और अब ज्यादातर डिप्रेशन में रहती है, नींद नहीं आती है उन्हें।

0: हाँ, ज्यादातर नेगेटिव बात करती है। मैं उन्हें बहुत मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ उनको मोटिवेट विचार देने का, भक्ति का भी विचार देता हूँ। मैंने कहा हम लोग ब्रज में है, इस प्रकार की बहुत सारी बातें करता हूँ, लेकिन नेगेटिव बात करती है। जब देखो जब तब नेगेटिव बात करती है, बड़ी परेशानी आती है
1: तो
0: रास्ता में।
1: माता जी घरेलू रही या कहीं सर्विस भी
0: हाँ,
1: करती थी?
0: घरेलू सिर्फ घर में ही रहती है।
1: चलिए ठीक है डॉक्टर साहब।
2: देखिए जी, ओल्ड एज में सबसे ज़रूरी तो ये रहता है जी कि उनकी सारी जांचें भी कराई जाएं, ये भी देखा जाए कि और कोई परेशानी तो नहीं है। और दूसरा जी, दवाई अगर सिर्फ पॉजिटिव सोचने से या काम में लगने से सारी समस्याएं हल हो जाती जी, तो डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं थी, तो दवाइयाँ शायद बनती ही नहीं इतने जो इतने सालों में। एग्जैक्टली जी, वो प्रोग्रेशन ही नहीं होना था।
1: सही
2: अगर
1: बात।
2: योगा, मेडिटेशन, हेल्दी लिविंग से सब कुछ सॉल्व हो जाता तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं
1: कई
2: थी
1: बार
2: जी।
1: चीजें हमारे बस के बाहर चली गई
2: बिल्कुल
1: तो फिर
2: बिल्कुल।
1: वहां साइंस
2: एंड
1: या
2: दूसरा
1: जो
2: जी,
1: भी।
2: मन जो है ना, वो 100% हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा जो मन है, 80% जो है वो हमारा अवचेतन मन है, जिसमें हमारा एक्सेस ही नहीं है। तो वो हिस्सा जो है आपके मन का, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। उसमें यदि कोई समस्या है, वो दवाई या थेरेपी के द्वारा ही सही
1: निकल
2: हो
1: के
2: पाएगी
1: आएगी,
2: जी।
1: वो तो अंदर दबा पड़ा है, अब
2: बिल्कुल
1: वो अपना
2: बिल्कुल
1: प्रभाव देगा।
2: बिल्कुल।
1: कंप्यूटर में जैसे बहुत सारी प्रोग्रामिंग होती है, जब चलाएंगे तो बाहर निकल के आएगी,
2: तो
1: तो
2: उस स्थिति
1: आपको
2: में जी दवाई ही है जो कंट्रोल करेगी। जो मैंने देखा है इतने समय में, वो यही है कि लोग दवाई एक्सेप्ट करने में, स्वीकारने में बहुत समय लगा देते हैं कि हमें इस चीज़ के लिए दवाई नहीं चाहिए, और उतने ही समय में जो बीमारी है आपकी वो बढ़ जाती है। कोई ये नहीं कहता कि मेरा बुखार है मैं इसको खुद से सही कर लूँ, या बुखार है मैं पानी की पट्टियों के साथ कर लूँ। हम जाते हैं, हम डॉक्टर को दिखाते हैं, हम डेंगू मलेरिया के टेस्ट कराते हैं, कोई समस्या होती है हम उसकी दवाई लेते हैं।
1: और ठीक भी होते
2: तो
1: हैं।
2: जो हमारे स्वभाव की परेशानियां हैं, उसको हम खुद से कंट्रोल करने की कोशिश अगर ना करें तो बेहतर है। अगर वो एक लेवल से ऊपर जा रही हैं तो
1: जी
2: उनका
1: जी
2: इलाज ही कराना
1: और
2: चाहिए।
1: राकेश जी आपके तो बिल्कुल बगल में ही हॉस्पिटल है, आप
0: हेलो सर
1: जाइए। एक दूसरे श्रोता हमसे जुड़ गए इस बीच में। हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्ते भैया।
0: बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी बोल रहा हूँ सर।
1: अच्छा, अब्बासी जी कैसे हैं?
0: मैं बढ़िया हूँ, आप बताएं आपके मिजाज कैसे
1: बढ़िया है, आपसे बात कर रहे हैं, एक अच्छे टॉपिक पे बात कर रहे हैं। और
0: हैं।
1: आपकी कोई समस्या है तो डॉक्टर साहब से, हमारे साथ मेघना गुप्ता जी बैठी हुई हैं,
0: जी,
1: तो
0: डॉक्टर
1: बात।
0: नमस्कार।
2: नमस्ते जी, नमस्ते।
0: डॉक्टर साहब एक बात बताइए, कोई भी बात को, मतलब जैसे कि कोई बात होती है सारा दिन में और उसको बार बार आदमी रिपीट करता है, तो क्या ये भी डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं?
2: नहीं, डिप्रेशन का नहीं जी, बट और भी काफी मानसिक बीमारियां होती हैं जिसका ये लक्षण हो सकता है।
0: हाँ, मतलब जैसे कभी पूरा टाइम घर में रहते हैं, कभी कभी
2: हाँ
0: छुट्टी
2: जी,
0: पे, तो
2: हाँ जी,
0: मिसिस को कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है 1.5 महीने से कोई अगर बात होती है ना, तो सुबह से लेकर शाम तक उसी बात को रिपीट करती रहती हैं, और रात को नींद नहीं आती, बैठी बैठी पता नहीं क्या क्या कहती रहती हैं।
2: नहीं, ये डेफिनेटली जी आपको दिखाना चाहिए किसी मनोचिकित्सक को। समस्या तो है ही उसमें, पर वो आपसे और भी सवाल पूछेंगे जी, और काफी चीजों को लेके क्लैरिटी उसमें चाहिए होगी कि बारी बारी वो कुछ चेक तो नहीं करती, कोई लॉक तो नहीं चेक
0: बार
2: करती,
0: बार मतलब
2: गैस तो
0: घर
2: नहीं
0: से,
2: चेक
0: मतलब
2: करती।
0: घर से निकल निकल के जाती है कि मेरा दिल घबरा रहा है, बाहर जा रही हूं मैं,
2: नहीं जी, तो
1: तो
2: डेफिनेटली दिक्कत
1: घबराहट
2: तो
1: भी
2: है ही है जी।
1: एक
2: बिल्कुल
1: डिप्रेशन
2: बिल्कुल।
1: है इसका।
2: मतलब अलग प्रकार की समस्या है, डिप्रेशन एक
1: जी,
2: समस्या है जी, वैसे बहुत सारी समस्याएं हैं
1: और
2: साइकैट्री में।
1: अब्बासी जी थोड़ा देखिए कि क्या नाम है, कि इस बीच में अपने आसपास क्या परिस्थितियां रही, कुछ अचानक बदलाव तो नहीं हुए? और
0: नहीं,
1: एक
0: कुछ
1: एक
0: मैंने जैसे और डॉक्टरों से डिस्कस किया है तो वो कभी कभी बोलते हैं कि शायद साइको का है थोड़ा सा।
1: हाँ, तो फिर दिखाइए
2: हाँ नहीं, साइकैट्री की समस्या डेफिनेटली लग रही है जी, जो आप बता
1: जी
2: रहे हैं उससे साइकैट्री की
0: जी
2: समस्या लग रही
1: उम्र
2: है।
1: कितनी रहे होगी
0: हाँ,
1: उम्र?
0: उम्र करीब ऐसे है जी 55 के आसपास
1: 55। चलिए तो फिर तो बनता है, आप एक बार राय लें, और
0: जी।
1: एक एक राय से अगर काम नहीं चलता तो हम ये बार बार कहते हैं कि दूसरी राय जरूर लीजिएगा,
2: हाँ बिल्कुल,
1: एक राय
2: जरूर है
1: लेके मत
2: आपका
1: बैठिएगा।
2: राइट है।
0: एक्चुअली चक्कर ये है डॉक्टर साहब, मैं तो मतलब म्यूजिक से बहुत प्रेम करता हूँ, संगीत का प्रेमी हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप रेडियो सुना करिए, मथुरा आकाशवाणी सुना कीजिए, आपका बहुत मन बनेगा।
1: ये
0: मगर वो
1: अच्छी बात है अब्बासी जी, लेकिन डॉक्टर साहब ने जैसे कहा ना कि सिर्फ अच्छी बातों से, म्यूजिक से भी काम नहीं चलता, कई बार दवा
2: बिल्कुल
1: जरूरी होती
2: बिल्कुल नहीं चलता जी,
1: है।
2: बिल्कुल नहीं चलता है। तो
1: दवा जरूरी हो
2: हाँ, और दूसरा जी,
0: जाती
2: सबके शौक सेम नहीं होते।
0: है।
2: किसी को संगीत का शौक है जी, किसी को
0: हाँ,
2: डांस
0: उनको
2: का है
0: एलर्जी
2: ना,
0: होती है
2: किसी
0: डॉक्टर
2: को
0: साहब, उनको
2: पढ़ने का।
0: एलर्जी होती है मेरे
2: हाँ,
0: रेडियो सुनने
2: तो वही वही, उनको आप उस चीज के लिए प्रेशराइज ना करें और उनका इलाज कराएं जी।
3: जी जी जी
1: और
3: ठीक है
1: कभी
3: डॉक्टर,
1: मथुरा आए तो मिलिएगा डॉक्टर साहब से, है
3: जी
1: ना?
3: बिल्कुल।

0: आऊंगा आकाशवाणी मथुरा, देखने की बड़ी तमन्ना है।
1: आ जाइए आ जाइए कभी।
0: ठीक है सर, नमस्कार।
1: जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। इसमें अब डॉक्टर साहब, जैसे जिंदगी चल रही है, ठीक चल रही है, अचानक से जैसे आपने कहा कि कुछ शारीरिक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई अचानक चीज़ें जो शरीर के अंदर है वो निकल के आई, तो जो चेंज है कई बार तो बहुत स्लो होता है और समझ में भी आता है, लेकिन कई बार चाहे परिस्थिति जन्य या कुछ भी, या बहुत ऊपर नीचे हो गया उसमें, और व्यक्ति का अचानक से व्यवहार पूरा ही बदल जाता है। ऐसा लगता है कि अरे कल तो ऐसा नहीं था ये, या ऐसा व्यक्ति तो नहीं था उसमें, तो
2: बिल्कुल जी। इस पर मैं वो भी कहना चाहूँगी कि जैसे डिप्रेशन हमारा एक बीमारी है जो साइकेट्रिस्ट देखते हैं, उसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बच्चों में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD बोल देते हैं, जिनको बच्चों को मंद बुद्धि होती है, जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोल देते हैं, तो बहुत सारी परेशानियां लोगों को चीज़ें दिखाई सुनाई देती हैं जो नहीं होती हैं, स्किजोफ्रेनिया की बीमारी, तो बहुत अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं जो साइकेट्रिस्ट देखते हैं, तो इंसान को काफ़ी दिक्कतें हैं जो आ सकती हैं।
1: और हार्मोनल भी हो सकता है, कुछ चीज़ें हार्मोनल चेंज होती हैं उसमें, इस बीच एक श्रोता जुड़े। हेलो
3: हेलो सर जी, नमस्कार।
1: नमस्ते भैया, नाम बताइए।
3: मैं जितेंद्र दोसार से बोल रहा हूँ, ग्राम मऊ तहसील खैर जिला हरिगढ़ से।
1: हाँ बताइए भैया।
3: डॉक्टर साहब आपको नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
3: मेरे छोटे छोटे दो सवाल हैं।
1: पूछिए।
3: पहला तो मेरा ये है, जैसे टेंशन और डिप्रेशन हो गया,
2: हाँ जी,
3: इनको एक समान बोला जाए या अलग अलग कहा जाएगा?
2: अलग अलग है जी।
1: तनाव अलग है, डिप्रेशन अलग है जी।
3: और दूसरा, जो इनका खान पीना कैसा होना चाहिए, या कोई तालाब होना क्या है इसका, ऐसा कुछ लोग ऐसे नजरअंदाज करते हैं, अलग तरीके से देखते हैं कि इसको तो रोग है यार, मानसिक तनाव में समझते हैं लोग उनको, उनको अलग भाव से देखते हैं, इससे क्या कहते हैं?
2: हाँ हाँ, खुराक का जी ये है कि जो आपकी डाइट है वो तो सबकी हेल्दी ही होनी चाहिए, उसमें तला जो तला है, पैक्ड फूड है, बाहर का खाना है, वो किसी को भी नहीं खाना चाहिए, स्पेशली आज के समय में, तो किसी भी प्रकार का घी तेल है वो कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, मीठी चीज़ें जो हैं वो कम से कम खानी चाहिए, हरी सब्जियाँ, दाल, ये सब चीज़ें इंसान को ज़्यादा लेनी चाहिए, तो डाइट मोर और लेस सबके लिए ही हेल्दी होनी चाहिए। और तनाव, स्ट्रेस और डिप्रेशन अवसाद में अंतर है। डिप्रेशन जो है जी एक डायग्नोसिस है, और तनाव जो है, स्ट्रेस, वो एक ऐसी चीज़ है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महसूस भी करते हैं और उसका हम इस्तेमाल भी करते हैं, वो एक डायग्नोसिस नहीं है, एक बीमारी नहीं है। अगर कोई भी परिस्थिति ठीक नहीं है तो इंसान को तनाव होगा, जो स्वाभाविक भी है, नॉर्मल भी है। अगर तनाव ना हो तो शायद दिक्कत होगी, हम कुछ करेंगे ही नहीं। हाँ। तो तनाव आपको मोटिवेट भी करता है,
1: जैसे पढ़ने के लिए हम जब थोड़ा सा पेन लेते हैं, तनाव लेते हैं तो पढ़ते हैं।
2: बिल्कुल जी, अगर तनाव लेंगे ही नहीं तो हम किताब ही नहीं उठाएंगे, तो थोड़ा बहुत तनाव जरूरी भी है। अगर वो ज्यादा बढ़ जाए कि वो आपकी जो लाइफ है उसको इम्पैक्ट कर रहा है, आप बाकी काम नहीं कर पा रहे हैं, आप सिर्फ बैठे अपने स्ट्रेस के बारे में ही सोची जा रहे हैं, तब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए कि उसके सेकेंडरी आपको, उसके बाद आपको और क्या क्या लक्षण आ रहे हैं, और उसका इलाज आपको कराना चाहिए।
1: हार्मोनल उस पर थोड़ा सा बताइए इसमें कि जैसे ओल्ड एज होती जाती है तो वहाँ हार्मोनल चेंज होता है, जब हम बच्चे से किशोरा हुए उसमें जाते हैं तो वहाँ अलग होता है, यूथ होते हैं तो
2: हार्मोन्स का जी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहता है। जब हम स्टार्टिंग में हमारी ग्रोथ होती है 12 से 17 साल की उम्र के बीच में, तब एक डिफरेंट तरह की समस्याएं आती हैं। लड़कों में जो है अग्रेशन, गुस्सा, ये सब चीज़ें बढ़ती हैं, जो नशा करने का इंसान का एक रहता है कि नशे की तरफ तो नहीं इंसान जाएगा, वो एक चीज़ आती है। आसपास के बच्चों में पीयर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इंसान को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहती है, वो श्योर नहीं रहते अपनी लुक्स को लेके, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। बुलिंग का एक फैक्टर जी वो भी आता है, तो तब उन सब समस्याओं की वजह से भी मन की जो दिक्कतें हैं वो हो सकती हैं। सिर्फ डिप्रेशन नहीं जी, और भी समस्याएं, जिसमें एडजस्टमेंट डिसऑर्डर आता है, घबराहट की समस्याएं आती हैं जिनको हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर बोल देते हैं, और बहुत सी ऐसी मन की बीमारियां हैं जी जो शुरू ही इस एज रेंज में होती हैं, 15 साल से 25 साल की उम्र तक। स्किजोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जो इसी उम्र में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, इस एज में उसका स्टार्टिंग रहता है। OCD एक ऐसी बीमारी है जो इस उम्र में शुरू होती है, और दूसरा जी सेकंड चेंज आता है ओल्ड एज में, महिलाओं में जब उनके महीने बंद होते हैं, मीनोपॉज होता है, तब बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से उदासी भी आ सकती है, मन की और समस्याएं भी हो सकती हैं, तो उसकी तरफ हमें विशेष

0: रूप से ध्यान देना चाहिए।
1: जी। अब समय थोड़ा समाप्ति की तरफ ही है, चलते चलते चीज़ें तो अभी बहुत हैं, श्रोता हमारे काफ़ी जुड़े, लेकिन और क्या कहना चाहेंगी। एक समस्या तो बहुत बड़ी है, इसमें क्या हम परिवार में जब रहते हैं तो एक दूसरे को ऑब्जर्व करें, किसी को थोड़ा सा नेगलेक्ट नहीं करें। अगर कोई उस तरफ जा रहा है तो वहाँ एक परिवार उसमें इकट्ठा होकर खड़ा हो जाता है, तो
0: बिल्कुल
1: हम
0: जी,
1: उसको
0: विशेष
1: वापस ला
0: रूप में जी
1: सकते हैं।
0: यही कि हम लक्षण का ध्यान रखें। अगर किसी के भी स्वभाव में कोई भी बदलाव आ रहा है तो वो किसी ना किसी मानसिक समस्या के कारण ही है, तो उनको आप साइकैट्रिस्ट को दिखाएं। और ये समस्या जो है, मन की समस्याएं और स्वभाव की समस्याएं, ये साइकैट्रिस्ट मनोचिकित्सक ही देखते हैं। ये और किसी डॉक्टर के पास यदि आप जाएंगे तो वो डायग्नोज नहीं हो पाएगा और आपका इलाज उचित नहीं चल पाएगा। दूसरा, दवाइयों से आप घबराएं नहीं, दवाइयों की कोई आदत नहीं पड़ती है, ऐसी कोई नींद की दवाइयाँ नहीं रहती हैं, दवाइयाँ जो हैं वो बंद हो जाती हैं बड़े आराम से मरीजों की, जिस हिसाब से डॉक्टर कह रहा है। अगर आप डॉक्टर की सुनते हैं, आप खुद से ऊपर नीचे करने की कोशिश करेंगे तो समस्याएं आएंगी। यदि आप एड मेडिकल एडवाइस फॉलो करके करते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरा, इसको एक कलंक के तौर पे मत लेके चलिए कि मुझे पता नहीं मन की दिक्कत हो गई, लोग मुझे क्या
1: तुम्हें क्या,
0: बोलेंगे।
1: मैं पागल हो गया
0: हाँ,
1: इस
0: ये बहुत
1: तरह
0: कॉमनली देखने को मिलता है जी, कि इस
1: ना।
0: चिंता की वजह से लोग आते ही नहीं है, इलाज नहीं लेते हैं। तो ये सारे जो सोच है इसको हमें कम करना चाहिए, और जहां हमें मदद की जरूरत है हमें मदद मांगनी चाहिए, तभी हम ठीक होंगे जी, वरना दिक्कतें बढ़ती जाएंगी।
1: और फिर मदद मांगना कोई बुरी बात भी नहीं है, इंसान के
0: बिल्कुल
1: तौर
0: जी,
1: पे अगर हम
0: बिल्कुल
1: समाज में परिवार में रह रहे हैं, और हो सकता है वो किसी के साथ भी हो सकता है, डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि भाई उम्र की बात हो सकती है, परिस्थिति की बात हो सकती है, आंतरिक हमारे शारीरिक उसकी बदलाव की बात हो सकती है, तो कोई परेशानी नहीं है। इसको आप बिल्कुल ऐसा ना लें कि हम कभी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे और मन की समस्या का इलाज कराएंगे तो हम पागल सिद्ध हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारा विज्ञान और डॉक्टरी पैसा इसीलिए लगा हुआ है कि कुछ होता है तो फिर उसका इलाज भी है,
0: बिल्कुल
1: उसमें
0: बिल्कुल
1: उसमें
0: जी,
1: आप जाएं दिखाएं और आराम से उसका आनंद भी लें। अभी इतना ही डॉक्टर साहब, आज आप हमारे साथ जुड़ी, कुछ श्रोताओं के प्रश्न लिए, उनकी समस्याओं का समाधान किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार।
2: सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ, आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपने मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर वन पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर शिराधा वैली मथुरा। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ, आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपने मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर वन पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर शिराधा वैली मथुरा।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर। आज की विशेषज्ञ थी डॉक्टर मेघना गुप्ता, वरिष्ठ सलाहकार, आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे ओपी सिंह। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। कार्यक्रम ब्रज लोकगीत में आज के कलाकार हैं ओम प्रकाश गोप। आइए सुनते हैं इनसे ब्रज लोकगीत।

बिहार की का जो बिहार की का बिहार।

बिहार को जो चली गई तो गौना तो से बोले गो, बिहार को जो चली गई तो गौना तो से बोले गो, ले हट रेटी चूहनी पूते घर घर झाकत डोले गो।

जोर

गोरी तेरे बोल विशैले। भैया अभैया आपने सुनो ओम प्रकाश गोपैते जे ब्रज लोकगीत और भैया लियो आनंद या लोकगीत को। आज के कलाकार ओम प्रकाश गोप।

जीवन भर खिंचती रही अनपढ़ जन की खाम। अब तो घर घर में पढ़वे की

वो पहचाने निरख बन को जाए और पढ़ो लिखो पर वो पहचाने निरख बन को जाए पहले समझे आप सबन को फिर समझावे लांगुरिया पहले समझे आप सबन को फिर समझावे

अब तो घर घर में पढ़वे की अलख जगावे लांगुरिया। अब ये आपने सुनो ओम प्रकाश गुप्ते जी लोकगीत।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
0: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
6: तो पैसे गवाओगे।
7: RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
10: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
11: आराम से मैडम।
10: क्या
11: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
12: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज के कलाकार थे ओम प्रकाश गोप। आपने सुने इनके स्वर में चंद ब्रज लोकगीत। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

थोड़ी देर में आप सुनेंगे देश दुनिया की खबरें हिंदी समाचारों में, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। लोकसभा की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद परमाणु हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
1: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और

0: नागासाकी शहर पर क्रमश 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
1: इसके बाद श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इन्हीं मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही 11:00 बजे शुरू हुई। इस दौरान मंत्रियों ने सदन के पटल पर कई दस्तावेज रखे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सदस्य अपने विचार स्वतंत्र रूप से रख सकता है, लेकिन ये व्यवस्थित और सार्थक ढंग से होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। मौसम विभाग ने बताया है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य सभी 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश होने की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट तथा राज्य के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण चमोली और बागेश्वर जिलों में आज 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों का जल स्तर घटा है। हालांकि तेज बारिश के कारण भुवनेश्वर के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य में फिर से तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास का काम जारी है। प्रशासन ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ से तबाही के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता, पुनर्वास और मुआवजे सहित हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का कल रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे बलिया जिले की रसला विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धरणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। आशीष ने पुरुषों के समूह ए में शानदार प्रदर्शन करते हुए 69.87 मीटर थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। महिलाओं के डिस्कस थ्रो में अमानत ने 52.58 मीटर का सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए समूह ए में 6ठा स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 1:15 पर मैंने सुनेगी अपना कार्यक्रम वनिता लोक।

कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी दीप्ति, जिसमें आज चर्चा का विषय रहेगा माँ का दूध सर्वोत्तम आहार। साथ ही हिरोशिमा दिवस पर चर्चा होगी। रजनी खंडेलवाल से आप सुनेंगे वार्ता श्रावण मास के तीज त्योहार और परंपराएं। साथ ही लेंगे आनंद कार्यक्रम में फिल्म संगीत का। दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी हमारी द्वि सभा में संध्या 5:30 पर, जिसमें आज बातचीत होगी सुरेंद्रनाथ बनर्जी पुण्यतिथि को लेकर और हिरोशिमा दिवस पर। साथ ही आप सुनेंगे भावना सारस्वत से युवा वार्ता क्रम में वार्ता। आज का विषय देश को महाशक्ति बना सकती है युवा पीढ़ी। जी हाँ, इस विषय पर ये वार्ता लेंगे आनंद कार्यक्रम में फिल्म संगीत का। संध्या 6:15 पर बस साहित्य कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे देश हमारो क्रम में तीर्थ स्थल ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर ये वार्ता। वार्ताकार होंगे कैलाश कुमार कौशिक। संध्या वंदन, जी हाँ, संध्या 6:30 पर भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन सुना जा सकेगा। और 6:50 पर किसान भाई और बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम किसान वाणी। शाम सुहानी, जी हाँ, व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी सुनेंगे आप संध्या 7:31 पर। करेंगे व्हाट्सएप, हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9412225575। सुनेंगे अपनी फरमाइश का फिल्मी नगमा। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे संसद समीक्षा, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 8:20 पर आप सुनेंगे विधानमंडल समीक्षा, जिसे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। फिल्म संगीत का आनंद लेंगे श्रोता एक बार फिर से रात्रि 8:30 पर और रात्रि 9:15 पर सुहाने तराने कार्यक्रम के अंतर्गत। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कंट्री वाइड और रात्रि 9:45 पर इनसाइड। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। तो ये था विवरण हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का।

0: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या?
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: लीजिए सुनिए संवेद स्वर में देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे सव्य स्वर में देशगान।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ। भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: मैंने सुनेंगे अपना कार्यक्रम वनिता लोक। कार्यक्रम लेके आ रही है आपके बीच दीप्ति।

बहनों, जीवन में खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है उम्मीदें कम रखें और कोशिशें हमेशा बेहतर करें। हर नया दिन आपको नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और नई खुशियां दे। इन्हीं उम्मीदों के साथ स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के वनिता लोक कार्यक्रम में। आप सभी को सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बहनों, आज हम बात करते हैं अपने वनिता लोक कार्यक्रम में रिश्तों की। तो बहनों, जब हम सभी इस दुनिया में आते हैं तो कुछ रिश्ते हमें बने बनाए मिलते हैं, कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं। इन सभी रिश्तों में देखा जाए तो सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है माँ और बच्चे का। बहनों, सृष्टि का आधार अगर हम स्त्री को कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे परिवार, हमारे समाज का निर्माण एक स्त्री के बिना असंभव है। गर्भधारण के पश्चात ही मातृत्व की भावना का संबंध माँ और शिशु के बीच बढ़ता ही जाता है। ये संबंध 9 महीने तक माँ और शिशु के बीच अनेक प्रकार की भावनाओं को बढ़ाता है। ये वो खुशहाल समय होता है जो हर महिला अपने जीवन में महसूस करना चाहती है। इसीलिए कहते हैं कि माँ और बच्चे के जैसा अनूठा और गहरा संबंध कोई नहीं होता। ये रिश्ता और भी अधिक गहरा होता है जब सर्वोत्तम आहार यानी माँ का दूध सर्वप्रथम शिशु ग्रहण करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जन्म के 1 घंटे के भीतर ही यदि शिशु को माँ का दूध पिलाया जाए तो हजारों नवजातों को मरने से बचाया जा सकता है। बच्चे को पहली बार दिया गया दूध बहुत ही आवश्यक होता है। शिशु को पहले 6 महीने तक माँ का दूध दिया जाना बेहद जरूरी होता है। स्तनपान कराना शिशु के होने के बाद होने वाली एक स्वाभाविक क्रिया है। मैनू माँ के दूध में सभी पोषक तत्व बिल्कुल सही अनुपात में होते हैं। इसका कोई और विकल्प हो ही नहीं सकता। माँ का दूध शिशु को कुपोषण और अतिसार जैसी बीमारियों से भी बचाता है। माँ के दूध को पिलाने से शिशु मृत्यु दर में कमी आती है और माँ का दूध सुपाच्य होता है, जिससे ये शिशु के पेट संबंधी गड़बड़ी से बचाता है और शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी सहायक होता है। मैनू माँ के दूध को पिलाने से बच्चों में अनेक प्रकार की बीमारियां जैसे दमा, कान संबंधी बीमारियां नियंत्रित रहती हैं और माँ के दूध से जीवन के बाद के चरणों में पेट और श्वसन तंत्र के रोग जैसे रक्त कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप यानी बीपी का खतरा कम हो जाता है और साथ ही बच्चे की बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती है। और इसके अलावा माँ और शिशु के बीच भावनात्मक रिश्ता भी प्रगाढ़ होता है। इसीलिए नवजात शिशु को जीवन के लिए, उसके बेहतर विकास के लिए माँ का दूध संपूर्ण और सर्वोत्तम आहार हो। इसका कोई और विकल्प नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि माँ का दूध जन्म के 6 महीने तक शिशु के लिए अमृत समान है। बहनों, किसी ने क्या खूब कहा है कि खामोशी में भी हर दर्द को पहचान लेती है वो माँ होती है। जब कागज पर लिखा मैंने माँ का नाम, कलम अदब से बोल उठी, हो गए चारों धाम।

बहनों, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। इस पूरे महीने में पूजा पाठ, व्रत, भजन कीर्तन और धार्मिक उत्सवों का विशेष महत्व है। और इस महीने में अनेक प्रकार के त्योहार भी होते हैं, जैसे कि हरियाली तीज है, जो कि विवाहित और अविवाहित महिलाएं व्रत रखती हैं, मेहंदी लगाती हैं, झूला झूलती हैं और भगवान शिव पार्वती की पूजा करती हैं अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए भी। और इसके साथ ही नागपंचमी का त्यौहार, जिसमें नाग देवता की पूजा की जाती है और उनकी कृपा और प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया जाता है। और सावन के सोमवार के व्रत की तो बात ही क्या है। भगवान शिव का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और व्रत रखा जाता है और साथ ही इस महीने के अंत में रक्षाबंधन, जिसका कि भाई और बहन बेसब्री से इंतजार करते हैं। बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनके सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इसके साथ ही और भी परंपराएं सावन के महीने में, जैसे कि शिव जी को जल चढ़ाना, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भांग से अभिषेक करके उनकी पूजा करना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना और शिव चालीसा का पाठ करना, कांवड़ यात्रा पर पवित्र जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करना, सात्विक भोजन करना और कई लोग लहसुन प्याज का सेवन भी इस महीने छोड़ देते हैं। मंदिरों में भजन कीर्तन और धार्मिक आयोजन, मेहंदी लगाती हुई महिलाएं हरे हरे वस्त्र, हरी हरी चूड़ियां पहनती हैं, जो हरियाली सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। तो बहनों, इसी विषय पर और अधिक जानकारी लेते हैं रजनी खंडेलवाल से, जो हमें बता रही हैं श्रावण मास के तीज त्योहार और परंपराएं।

श्रावण मास बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यह महीना पूरे उत्सव के रूप में हम मनाते हैं। इस मास में हमें आनंद की बहुत ही अनुभूति होती है। श्रावण का महीना मई जून की तपती गर्मी के पश्चात जुलाई और अगस्त के महीने में आता है। वर्षा ऋतु में पड़ने वाले इस माह का बहुत ही महत्व है। इस माह में धीमी धीमी बारिश होती है, जिस कारण सभी पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और पक्षी भी चहचहाने लगते हैं, तो इस सुंदर दृश्य को देखकर बहुत मन प्रफुल्लित हो जाता है। श्रावण मास में इसके साथ साथ भोले बाबा की पूजा का भी विशेष महत्व है। यह मास भोले बाबा को भी समर्पित है। तो दूसरी ओर ब्रज में सभी मंदिरों में सुंदर हिंडोले में राधा कृष्ण को भी झूला झुलाया जाता है। सभी मंदिरों में झूले पड़ते हैं, साथ ही प्रकृति का वास्तविक अनुभव मंदिरों के अंदर कराने के लिए विभिन्न रंग की घटाओं मंदिरों के अंदर कराने के लिए विभिन्न रंग की घटाओं को सजाया जाता है। इसी माह में एक तरफ विभिन्न त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे हरियाली अमावस्या, हरियाली तीज, नागपंचमी, रक्षाबंधन पूरे ब्रजमंडल में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हरियाली तीज हमारे यहाँ विशेष महत्व होता है इसका। ब्रज में हरियाली तीज बड़े ही उत्साह के साथ मनाई जाती है। यहाँ सभी स्त्रियाँ हरियाली तीज की तैयारी 4-5 दिन पहले से ही करने लगती हैं, बाजार में खरीदारी करने लगती हैं। इस दिन सभी बहनें हरे रंग की साड़ी, हरी चूड़ियाँ, हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर तथा पूरा 16 श्रृंगार करती हैं। इस प्रकार हरियाली तीज मनाई जाती है। पूरे ब्रजमंडल में बड़ी धूमधाम से यह त्यौहार मनाई जाती हैं। इस माह में महिलाएं अपने अपने मायके भी जाती हैं तथा घर बाग बगीचों से में झूला झूला

जाकर अपनी बहनों और सखियों के साथ झूला झूलती हैं। इसी प्रकार हमारी राधा रानी भी झूला झूलती हैं और हम इस छवि को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और राधा रानी को बधाई देते हुए गाते हैं।

तो इस प्रकार हम राधा रानी को बधाई देते हुए यह बधाई गीत गाते हैं। इसी प्रकार श्रावण के महीने में वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, बलदेव में विशेष डोले सजाए जाते हैं। कुछ मंदिरों में पूरे सावन में तो कुछ महीनों मंदिरों में हरियाली तीज से रक्षाबंधन तक हिंडोले में ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार राधा रानी मंदिर बरसाना में भी हरियाली तीज के दिन सुबह सोने चांदी के हिंडोले के दर्शन होते हैं, तो उस दिन शाम को मंदिर के नीचे छतरी सफ़ेद छतरी में खुले में दर्शन होते हैं। फिर प्रतिदिन शाम को रक्षाबंधन तक सोने चांदी के हिंडोले में दर्शन कराए जाते हैं। इसी प्रकार जैसे नंदगांव में नंद मंदिर में भी कृष्ण जन्माष्टमी तक हिंडोले के दर्शन होते हैं। सभी मंदिरों में इस तरह से हिंडोले सजाए जाते हैं। इसी प्रकार वृंदावन के सभी मंदिरों में सोने चांदी के तथा लता पता के फूलों के हिंडोले सजाए जाते हैं। इसमें फलों के भी बंगले बनते हैं और दर्शन कराए जाते हैं। हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर में वर्ष में केवल एक दिन ही हरियाली तीज के दिन ही सोने चांदी के भव्य हिंडोले के दर्शन होते हैं। प्रभु के इन दर्शन को पाकर सभी भक्त निहाल हो जाते हैं। इसी प्रकार जैसे मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर है, उसमें भी ठाकुर जी को पूरे श्रावण महीने में सोने चांदी के हिंडोले में विराजमान कराया जाता है तथा माह के दौरान कई दिनों तक विभिन्न रंगों की घटाएं जैसे काली घटा, पीली घटा, सफ़ेद घटा, गुलाबी घटा और सभी रंगों की घटाएं प्राकृतिक अनुभव मंदिर के अंदर कराया जाता है। और इसी प्रकार ठाकुर जी को भी झूला झुलाया जाता है।

बिहारी। तो इस प्रकार सभी मंदिरों में और हमारे श्री ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर में झूला झुलाया जाता है। इसी प्रकार एक वृंदावन में शाहजी मंदिर है, वहाँ पर भी बसंती कमरा सावन महीने में ही खुलता है, सावन माह और रक्षा

0: रक्षाबंधन से 2 दिन पूर्व ही भक्तों के लिए यह कमरा खोला जाता है और यहाँ पर पीले रंग के दर्शन होते हैं और बसंती कमरे भी सजाए जाते हैं। श्रावण मास ब्रज के सभी शिव मंदिरों में प्रत्येक सोमवार को विभिन्न प्रकार के बंगले सजाए जाते हैं। सभी शिव मंदिरों में जैसे गोपेश्वर महादेव, भूतेश्वर, रंगेश्वर, गलतेश्वर, चकलेश्वर, कामेश्वर, महादेव पर पूरे श्रावण मास में भक्तजन शिव पूजा करते हैं। भक्तजन श्रावण के व्रत भी रहते हैं और सभी शिव भोलेनाथ की पूजा करते हैं। श्रावण माह में मौसम बहुत ही सुंदर होता है। नन्ही नन्ही फुहार पड़ती हैं। इन फुहारों में झूला झूलने का आनंद ही दुगना हो जाता है। इसी माह में कई तरह के घेवर, जैसे मलाई घेवर, सादा घेवर, पनीर, फैनी खाने का भी बहुत ही आनंद है। तो इस प्रकार हम सभी मिलकर श्रावण मास का महीना मनाते हैं और यह मास पूरा त्योहारों से भरा हुआ होता है।
1: बहनों, सावन महीने के तीज त्योहार और परंपराएं, इस विषय पर हमें बहुत अच्छी जानकारी दी रजनी खंडेलवाल ने। साथ ही उन्होंने हमें बताया ब्रज के मंदिरों की विशेषताएं भी। तो बहनों, सावन का महीना तो है ही भक्ति का, प्रकृति का, प्रेम का और परिवार के साथ आध्यात्मिक जुड़ाव का ये पावन अवसर है। बहनों, सावन का महीना हमेशा यादगार ही होता है। कोई किसी तरह याद करता है तो कोई किसी तरह। तो आइए हम भी याद करते हैं सावन के महीने को इस गीत के साथ।

तो बहनों, आज 6 अगस्त का दिन है और आज के दिन को हम हिरोशिमा दिवस के रूप में याद करते हैं। उस त्रासदी को, उस दिन अमेरिका द्वारा जापान पर एक बम गिराया गया, और गिराया गया बम लिटिल बॉय, जो कि यूरेनियम निर्मित था। इसकी वजह से 13 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र प्रभावित हुआ, और इस बम की वजह से लाखों की संख्या में लोग मारे गए। ये सब सैनिक नहीं थे, इनमें से अधिकांश साधारण नागरिक, बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां थीं। इसके बाद भी अनेक वर्षों तक अनगिनत लोग विकिरण के प्रभाव से मरते रहे। हिरोशिमा को 6 अगस्त सन 1945 तक जापान के एक औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना की 5वीं डिवीजन का यहाँ मुख्यालय था। हिरोशिमा पर हुए बम हमले से भारी जनहानि हुई और लाखों लोगों का जीवन लंबे समय तक प्रभावित रहा। हम सभी को विश्व शांति का संदेश देकर परमाणु हथियारों के दुष्परिणाम के बारे में जागरूकता फैलाकर परमाणु निरस्त्रीकरण की आवश्यकता पर बल देना चाहिए। हिरोशिमा दिवस हमें यह सिखाता है कि शांति, मानवता और संवाद ही दुनिया को सुरक्षित और बेहतर बना सकते हैं।

तो बहनों वनिता लोक कार्यक्रम में अब समय है घरेलू टिप्स का। तो बहनों वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई समृद्धि का केंद्र माना गया है। जैसे अनाज, चावल, दाल, नमक, तेल और मसालों के डिब्बे कभी खाली नहीं होने चाहिए। इन्हें भरा रखना घर में बरकत, स्थिरता और धन वृद्धि का प्रतीक माना जाता है, जबकि खाली बर्तन आर्थिक तंगी का संकेत देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात जरूर समझ आई होगी। और कार्यक्रम में चलते चलते उम्मीद करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ दीप्ति शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

बहनें सुन रही थीं कार्यक्रम वनिता लोक। कार्यक्रम लेके आई आपके बीच दीप्ति शर्मा। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

0: देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो।
1: ए जॉय फर्नांडिस बेबी।
2: फिल्म संगीत में इस गीत को लिया फिल्म पुकार से। आवाज इस गीत में अमिताभ बच्चन, राहुल देव बर्मन की,

फिल्म पुकार में अभी आपने सुना राहुल देवर्मन और अमिताभ बच्चन को इस गीत में, और आइए सुनते हैं ये गीत शंकर महादेवन कविता कृष्ण मूर्ति के स्वर में, गीत मजरू सुल्तानपुरी का, संगीत ए आर रहमान का, जिसे लिया हमने फिल्म पुकार से।

अभी आप सुन रहे थे शंकर महादेवन कविता कृष्णमूर्ति और साथियों को फिल्म पुकार में। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का, संगीत एआर रहमान का था। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार और हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
1: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमश 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
0: बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित हो गई है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 के लिए स्थगित की गई। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाया। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पर्वतीय और सीमावर्ती पर्यटन अवसंरचना से जुड़े प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि केंद्र ने राज्यों को प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायालयों में स्वीकृत पदों और रिक्तियों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है।
2: जब काउंसिल की बैठक चल रही हो, कोई भी इस प्रकार की अव्यवस्था, शोरगुल या किसी अन्य तरीके से इस अव्यवस्थित तरीके से बोलते समय किसी अन्य सदस्य के बीच में बाधा नहीं डालेगा।
0: विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 13वें दिन में प्रवेश कर गया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच मानसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। एक रिपोर्ट।
3: झारखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन भाजपा और एनडीए विधायकों ने जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की। वहीं मंत्री चंद्रा लिंडा ने कहा कि इस मामले में सत्ता या विपक्ष नहीं बल्कि परीक्षा माफिया असली दोषी है। इस बीच मामले की जाँच कर रही सीआईडी ने रांची और लखनऊ से 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें टीडीपीएल कंपनी का अकाउंटेंट भी शामिल है। मामले में अब तक कुल 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। विवाद को सुलझाने के लिए सरकार की 4 मंत्रियों वाली उच्च स्तरीय कमेटी आज छात्रों के साथ वार्ता कर सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से केंद्र सरकार के उस हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें कहा गया है कि नीट स्नातक परीक्षा को पेपर आधारित परीक्षा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं में डॉक्टर्स एसोसिएशन भी शामिल है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वो नीट स्नातक परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित करने पर विचार कर रही है, या तो एक चरण में या फिर संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य और उन्नत के समान 2 चरणों में। सरकार ने कहा कि उसने पेपर लीक और प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के संचालन में व्यापक सुधार किया है। पीठ ने कहा है कि वो सभी पहलुओं पर विचार करेगी और सभी पक्षों से अपने जवाब और सुझाव दाखिल करने के लिए कहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बंबई उच्च न्यायालय ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में आज दोषी ठहराया है।

0: न्यायालय की गोवा बेंच की जस्टिस नीला गोखले और अमित जमसंदकर की खंडपीठ ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी पाया है। इनमें विश्वास या अधिकार के पद का दुरुपयोग कर दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और किसी महिला को निर्वस्त्र करने की नीयत से हमला करने से संबंधित धाराएं शामिल हैं। गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अधिकतम सजा देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे एक कड़ा संदेश जाएगा कि ना का मतलब ना होता है। फैसले के बाद तेजपाल ने कहा कि वो उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि पोत सुरक्षा का माहौल तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर खतरे, ड्रोन हमले, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, डिजिटल नेटवर्क, सूचना प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को होने वाले जोखिमों ने समुद्री सुरक्षा को नया आयाम दिया है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पोत सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि बंदरगाह की सुरक्षा एक साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।
1: There is actionable recommendation to strengthen India's port security framework and make the proposed Bureau of Port Security a robust, responsive and future-ready institution. Let us work together for a safe maritime India, a strong maritime India and a Viksit Bharat. Kyunki desh ki suraksha sarvopari hai aur hum desh ke liye ji raha hoon. और देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, दैट शुड बी द कमिटमेंट।
0: भाजपा सांसद तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग की माफी को भारतीय संसद की जीत बताया है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय कानून का पालन करना होगा।
2: ये जो जीत है ये भारत के कानून की जीत है, ये जीत भारत के संविधान की, ये जीत भारत के पार्लियामेंट की है और 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ताकत दिखाता है कि भारत में जिसको भी व्यापार करना है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रादेशिक सेना पर बात की गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने केरलम बाढ़, ओडिशा चक्रवात और हाल ही में असम में आई बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य तथा जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में प्रादेशिक सेना की भूमिका की सराहना की। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं।
3: अब तक 470,000 से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके हैं। हर दिन हजारों की तादाद में यात्री, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे वगैरह शामिल हैं, इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल यात्रा सिर्फ बालतल के रास्ते से ही जारी है क्योंकि पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम चल रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा बलों, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, प्रशासन और आम शहरियों की सराहना की है। याद रहे, ये यात्रा 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। से इश्फाक शाह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल तक मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर सड़क संपर्क टूट गया है, वहीं प्रमुख नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है।
4: प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल रात से जारी बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़कें बाधित हुई हैं। कुछ मैदानी क्षेत्रों में जलभराव

0: आव की स्थिति भी देखी गई है। राज्य के प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा है और कई गाढ़ गदेरे भी उफान पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को पूरी तरह सतर्कता बरतने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में नदी नालों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि
1: बरसात के लिए आज देहरादून, बागेश्वर और चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बरसात लगातार चल रही है, कई जनपदों में हो रही है और नदियों के जलस्तर की बात करें तो वर्तमान में अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, वाणगंगा, यमुना और शारदा का स्तर बढ़ रहा है।
0: इस बीच चारधाम यात्रा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जारी है और प्रशासन यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: उधर ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 द्वार खुले हुए हैं।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में बाढ़ का पानी कम हो रहा है। अभी जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 स्लुइस गेट खुले हुए हैं। पानी का स्तर घटने के बावजूद बाढ़ से प्रभावित लोगों की मुश्किलें बनी हुई है और सामान्य जीवन को बहाल करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इस बीच कल रात से हो रही लगातार भारी बारिश ने राजधानी भुवनेश्वर में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर की कई सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है जिससे घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा है। हालांकि दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा में बारिश कम होने की उम्मीद है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ के बाद स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने कहा है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्नाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संस्कृत के श्लोक को साझा करते हुए कहा कि जिसमें सभी प्रकार के श्रेष्ठ वनस्पतियों तथा औषधियां पैदा होती हैं वो पृथ्वी माता विस्तृत और स्थिर हो। विद्या, शौर्य, सत्य, स्नेह आदि सद्गुणों से पालित पोषित कल्याणकारी और सुख साधनों को देने वाली मातृभूमि की हम सदैव सेवा करेंगे। भारतीय हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले AHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। टीम में 2 खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर रखा गया है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धारणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर 78,790 पर, जबकि निफ्टी 10 अंक गिरकर 24,635 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए और राज्यसभा की बैठक दोपहर 3:15 तक के लिए स्थगित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मौकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा की और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरणीधरन और डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: नंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोता मित्रों को मेरा यानी अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है मां महामाया चौक।

लोक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से कुशल देव पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने बड़ा खूबसूरत लिखा है, आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, शरीर ईश्वर की दी हुई सबसे अनमोल संपत्ति है, इसकी रक्षा धन से भी अधिक जरूरी है, क्योंकि बिगड़ी सेहत के आगे दौलत भी हार मान लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम चरौदा बार नवापारा अभारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर। अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। केंद्रपाड़ा ओडिशा से हमारे चिरपरिचित श्रोता देशदीप दास जी का संदेश हमें मिला है। और उसके साथ साथ संदेश भेजने वाले हैं कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आगे चलते हैं, अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे जी का। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी का। श्रोताओं, आप सबके संदेशों के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आज की चर्चा में। तो एक बहुत ही रोचक हमारी चर्चा होने वाली है, आइए करते हैं शुरुआत। श्रोताओं, एक प्रश्न कभी किसी ने मुझसे पूछा था कि बताइए अजीत जी, आखिरी बार आपने बिना काम के किस दोस्त से कब मुलाकात की? तो मैंने हंसते हुए उत्तर दिया था कि इतना कठिन सवाल ना पूछिए, बड़ी व्यस्त जिंदगी है, बिना काम के भला किसी से मिलने का समय कहाँ। जी हाँ श्रोताओं, यही तो समस्या है। लेकिन एक बात और है, लोग अक्सर कहते हैं हम तो हमेशा जुड़े रहते हैं। जी हाँ, लोगों का कहना भी ठीक है कि वो हमेशा जुड़े रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अब लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, वास्तविक जिंदगी में शायद नहीं के बराबर। तो श्रोताओं, आइए चलते हैं एक घर पर और देखते हैं एक दृश्य। दृश्य कुछ इस प्रकार से है, आप कल्पना करें, पिताजी मोबाइल पर अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी शॉपिंग ऐप देख रही हैं, बेटा गेम खेल रहा है, बेटी रील बना रही है, और बेचारे बुजुर्ग दादाजी सबको देख रहे हैं कि कोई कम से कम उनसे दो मिनट बात तो कर ले। श्रोताओं, ये काल्पनिक दृश्य था, लेकिन क्या आपने खास बात पर गौर किया कि माता पिता, बेटा बेटी और दादाजी सब एक साथ एक ही घर में हैं, लेकिन उनके बीच में संवाद नहीं हो रहा है। अब लोग कहते हैं कि भाई समय ही नहीं मिलता। तो श्रोताओं, एक सवाल मैं अपने आप से पूछना चाहूंगा और आपसे भी कि 3 घंटे सोशल मीडिया के लिए हमें समय कैसे मिल जाता है? अब क्रिकेट का मैच तो पूरा पूरा देख ही लेते हैं, लेकिन आपस में 10 मिनट भी बात करने का हमारे पास समय नहीं है। और शायद यही कारण है कि आज समाज में तनाव भी है और बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है श्रोताओं कि क्या किया जा सकता है। तो चलिए श्रोताओं, आज से ही एक प्रयोग करते हैं। आप पूछेंगे भला वो क्या? तो श्रोताओं, वो प्रयोग कुछ इस प्रकार से होगा कि चलिए आज ही समय निकालकर मोबाइल को आधे घंटे के लिए बंद कर देते हैं या साइलेंट कर देते हैं। आप पूछेंगे फिर क्या करें? तो मैं कहूंगा कि तो शुरुआत करते हैं अपने ही घर से, अपने माता पिता, दादा दादी या बच्चों के साथ बैठकर थोड़ा समय निकालते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कम से कम आधे घंटे से शुरुआत तो हो ही सकती है। फिर फोन को ऑन करते हैं। आप कहेंगे श्रोताओं, अभी आपने कहा फोन ऑफ करो और अब कहते हैं कि ऑन करते हैं, ये भला कैसी बात है? यही तो बात है श्रोताओं, फोन ऑन करके किसी ऐसे मित्र या रिश्तेदार या प्रियजन को फोन मिलाते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। ध्यान रहे, इस समय आपको उनसे बात करनी है जिनसे लंबे समय से बात ही नहीं हुई। आप अपने घर के बुजुर्गों से भी बात कर सकते हैं जिनके शायद कई बार आपको या मुझे समय नहीं मिलता। खासतौर से श्रोताओं, मैं अपने विद्यार्थी श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि अपने बड़ों से बातचीत का समय जरूर निकालिए, उनके अनुभवों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। विश्वास करें श्रोताओं, जब आप फोन करेंगे तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी ना और आपको जो खुशी मिलेगी, उसकी तुलना किसी और बात से हो ही नहीं सकती। तो आइए 5 आसान उपाय जानते हैं कि कैसे हम मोबाइल का सदुपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, रोज कम से कम 20 मिनट परिवार के साथ। दूसरी बात, भोजन के समय मोबाइल को दूर रखें। अक्सर होता यह है कि खाना भी खा रहे होते हैं और साथ में मोबाइल भी चल रहा होता है। नहीं, ऐसा ना करें, मोबाइल को खाने के समय बिल्कुल दूर रखें। तीसरी बात यह हो सकती है कि सप्ताह में एक दिन किसी रिश्तेदार या मित्र से मिलें या उससे बातचीत करें। और चौथी बात है, महीने में एक बार पूरे परिवार के साथ छोटी सी सैर या भोजन करने का कार्यक्रम बनाइए। याद रखिए, रिश्ते अपने आप नहीं चलते, उन्हें समय देना पड़ता है। जैसे हम रोज मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं ना, उसी तरह। जी, उसी प्रकार रिश्तों की बैटरी को भी प्यार,

0: समय और अपनेपन से चार्ज करना पड़ता है। तो एक काम करें, आज ही अपने किसी को समय दीजिए। डिजिटल दुनिया में रहते हुए भी मानवीय रिश्तों को जिंदा रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तो श्रोताओं, हमें आशा है कि आपको हमारी बातचीत जरूर पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ करने को। आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी सी कविता लिखें। विषय एक बार फिर से सुन लें, आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी कविता लिखें। भेज दीजिए अपना लघु लेख या कविता हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और जी, आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं। श्रोताओं, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब में जाइए, टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपको वहां सर्च के लिए विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तकों को डाउनलोड कीजिए। एक और जरूरी सूचना आपको दे दें श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां भी अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं। जी, और इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। श्रोताओं, अब समय है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों का, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू। कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में असम के उल्लास पर्व बिहू के बारे में रोचक जानकारी दी गई है और इसे मनाए जाने के तरीकों और इसकी प्राचीन पृष्ठभूमि के बारे भी बताया गया है।
1: May I come in, Mr. Henry?
2: Yes, sure. अंदर आइए, आपका स्वागत है।
1: आपने बुलाया था सर?
2: जी, मैंने आपको बुलाया था। I have a good news for you. आपने असम के डांस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए लंदन की ब्रिटिश अकादमी को जो ग्रांट की रिक्वेस्ट भेजी थी वह मंजूर हो गई है। ये रहे पेपर्स।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।
2: ऑल द बेस्ट, असम जाने की तैयारी कीजिए।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
3: एंजेला का परिवार दिल्ली से था, लेकिन अब बहुत समय पहले से वो सभी लंदन में ही बस गए थे। एंजेला डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्मात्री थीं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर वहाँ की संस्कृतियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना उनका काम था।
1: सबसे ज्यादा खुशी उनकी बेटी कोमल को हुई, क्योंकि वो भी अपनी माँ के साथ भारत जा रही थी। कोमल इंग्लैंड में ही पैदा हुई थी, वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी धारा प्रवाह बोल लेती है। और आखिर आ ही गया वो दिन असम जाने का। लंदन से दिल्ली होते हुए वे गुवाहाटी पहुंचे। शाम को डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए निर्धारित कैमरा टीम भी आ चुकी थी। एंजेला ने उन्हें आलेख पढ़कर सुनाया और शूटिंग से संबंधित आवश्यक निर्देश भी दिए।
3: दूसरे दिन वो गुवाहाटी शहर के आसपास कुछ ग्रामीण इलाकों में भी घूमने गए। बाजार हाट फुल्लम गामोसा और भिन्न भिन्न प्रकार के पकवानों से पटे हुए थे।
1: फुल्लम गामोसा एक प्रकार का हाथ का बुना हुआ सूती गमछा है, जिसकी किनारी लाल रंग की होती है। असमिया लोग इसे पारंपरिक रूप से सम्मान और आदर के प्रतीक के रूप में बड़ों को भेंट करते हैं।
3: आज कोमल बहुत उत्साहित है। बिहू का त्योहार जो है, ब्रिटिश दूतावास के सौजन्य से एंजेला को आज असम की जानी मानी सांस्कृतिक आयोजन समिति की ओर से विशेष निमंत्रण भेजा गया है। आज के विशेष बिहू कार्यक्रम के दौरान वो विशेष अतिथि भी होंगी और डॉक्यूमेंट्री की निर्मात्री भी। उत्सव चल रहा था।
4: नमस्कार, मैं हूं मृगेन बरुआ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और खास स्वागत है हमारी खास अतिथि एंजेला।

0: शीला जी और उनकी बेटी कोमल का। तो सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं बिहू पर्व का एक खास नाटक।
1: आज महाराज ने कुछ खास आदिवासी समूहों को बुलाया है।
2: सुना है वो बहुत अच्छा नृत्य करते हैं।
1: भाई जो

0: का नृत्य करते हैं?
1: भाई जो भी हो, हमारे महाराज हैं बड़े कला प्रेमी।
2: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: चलो देखते हैं क्या क्या होता है।
2: जी जी चलो चलो देखते हैं।
0: चलो चलो चलो चलो, आओ, आओ। चलो चलो जल्दी चलो।
3: अहोम के महाराज की जय हो।
4: जय हो जय हो।
3: जैसा कि महाराज ने इच्छा व्यक्त की थी, आज हमारे बीच दिमासा कछारी आदिवासियों का समूह पधारा है अपने पारंपरिक कृषि नृत्य बीशु के साथ।
5: नृत्य प्रस्तुत किया जाए।

0: अद्भुत, अति सुंदर। हम इस नृत्य प्रस्तुति के साक्षी होकर धन्य हुए। महामंत्री
1: जी, आज्ञा महाराज।
0: मेरी आज्ञा से प्रजा में ये संदेश भेज दिया जाए कि आज के बाद से फसलों की कटनी के बाद प्रकृति माता को आभार प्रकट करने के लिए समस्त अहोम राज्य में विशु नृत्य विधिवत किया जाएगा।
2: महाराज की।

0: तो साथियों, कैसा लगा आपको ये नाटक? अब दीजिए अपने साथी मृगेन को आज्ञा, लेकिन जाने से पहले एक दूसरे से मिलना जुलना मत भूलिएगा। आपके लिए हमने खास तौर से रखा है बिहू मिलन कार्यक्रम।
1: बिहू मिलन समारोह चल रहा था और साथ ही साथ एंजेला की टीम शूटिंग में भी लगी हुई थी। अब बारी थी रेडियो साक्षात्कार की। आइए सुनते हैं एंजेला, कोमल और मृगेन का ये वार्तालाप।
2: मृगेन जी, आज का बिहू उत्सव बहुत ही सुंदर था। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। नाटक में आपने अहोम राज्य के बारे में बताया, इस पर थोड़ी जानकारी और दीजिए ना।
0: जी एंजेला जी, अहोम राज्य का काल 1200 सामान्य संवत से 1700 सामान्य संवत तक रहा।
2: अच्छा।
0: माना जाता है कि यही अहोम नाम आगे चलकर असोम कहलाया और कालांतर में असम हो गया। प्राचीन शास्त्रों में असम का उल्लेख प्राग ज्योतिषपुर नाम से किया गया है।
2: मृगेन जी, इस त्योहार का नाम बिहू क्यों पड़ा?
0: बहुत अच्छा सवाल। देखिए, शुरू में इस आदिवासी नृत्य को बिशु नृत्य कहते थे। बाद में यही बिशु नाम बिहू के नाम से जाना जाने लगा।
2: सर, मैंने सुना है कि बिहू साल में 3 बार मनाते हैं।
0: सही सुना है कोमल बिटिया। बिहू खेती से संबंधित त्योहार है।
2: ओह।
0: ये असमिया नए साल में वसंत ऋतु के आगमन से शुरू होता है और साल में 3 बार मनाया जाता है। इन्हें सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वो धान रोपते हैं और फिर जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। यानी ये त्योहार फसल लगने से लेकर वसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है।
2: अरे वाह। सर, मैंने सुना है कि इन तीनों अवसरों पर त्योहार के अलग अलग नाम हैं।
0: बिल्कुल ठीक कोमल। ये हैं रोंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू या बैसाख बिहू भी कहते हैं।
2: ओह।
0: ये वसंत की शुरुआत और नव वर्ष का जश्न है, जिसमें नृत्य और संगीत शामिल होते हैं। दूसरा बिहू है कोंगाली बिहू। ये एक अधिक गंभीर अवसर है, जहां भरपूर फसल के लिए खेतों में दिया जलाकर प्रार्थना की जाती है।
2: अच्छा।
0: तीसरा बिहू भोगाली बिहू कहलाता है, जिसमें खान पान और उत्सव होते हैं।
2: मृगेन जी, आपने तो कोमल के सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से दिया। अब मेरा भी एक सवाल है।
3: जी।
2: मैं जानना चाहती हूँ कि बिहू शब्द कहाँ से आया, इसका क्या अर्थ है?
0: एंजेला जी, बिहू शब्द की उत्पत्ति विशु से हुई है।
2: जी।
0: जिसका अर्थ है फसल के मौसम में ईश्वर से

0: आशीर्वाद और समृद्धि मांगना।
1: बहुत सुंदर मृगेन जी, इतनी रोचक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आज एंजेला और कोमल लंदन वापस जा रहे हैं। कोमल को अपनी माँ के काम पर गर्व है। उसने ठान लिया है कि वो भी मीडिया कार्यक्रम निर्मात्री बनेगी। जहाज जब बादलों को चीरता हुआ आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचा तो कोमल ने आंखें बंद कर ली और खो गई बिहू की सुखद स्मृति में। उसके मस्तिष्क में अब भी थी बिहू के सुंदर गीतों की गूंज।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की संरक्षा में ही हमारी सुरक्षा और खुशहाल जीवन का आधार है।
2: खुशी। खुशी जब पैदा हुई तो उसने अपने सारे घर में खुशियां बिखेर दी।

वो बचपन में इतना हंसती और इतना खुश रहती कि घर वालों ने उसका नाम ही खुशी रख दिया। उसको खेलने के लिए खिलौनों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके खिलौने थे चिड़ियों की चहचहाट, नदियों की कलकल कर बहने की आवाज। उसका खिलौना मानो पूरी प्रकृति थी।

गया है, कितने सुंदर फूल हैं और पेड़ भी तो देखो कितने अच्छे हैं। देखो कितनी सारी तितलियां उड़ रही हैं, मुझे तो इन्हें

0: जैसे जैसे खुशी बड़ी हो रही थी और समय निकल रहा था, खुशी की खुशी कहीं खो सी गई थी। आइए हम सब मिलकर खुशी की खुशी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आखिर कहां गई खुशी की खुशी?
1: खुशी के पापा पता ही नहीं क्या हो गया है हमारी खुशी बिटिया को। पता नहीं किसकी नजर लग गई है, आजकल बहुत परेशान सी रहती है।
2: कमजोर भी हो गई है,
1: कुछ खाती पीती भी तो नहीं है, कमजोर तो लगेगी ही।
2: ठीक कह रही हो तुम, पहले तो खुशी हरदम चहचहाती रहती थी, लेकिन अब तो, कल मैं बाजार से उसके लिए गुड़िया भी लाया था, मिठाई भी लाया था, लेकिन वो अब किसी भी सामान से खुश नहीं है।
1: समझ ही नहीं आता है क्या हो गया है इसे।
2: सही कहती हो तुम, जरूर किसी की नजर लगी है मेरी खुशी को।

0: अरे हमारी बिटिया कहाँ है? अरे खुशी बिटिया कहाँ है भाई?
1: अरे भैया
2: नमस्ते नमस्ते मोहन।
0: अरे भाई हमारी खुशी बिटिया दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई?
3: खुशी बेटे
1: खुशी इधर आओ।
4: नमस्ते मामा जी।
0: अरे जीते रहो बेटे जीते रहो, शाबाश।
3: बेटा मामा जी आए हैं, देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं।
0: हाँ बेटा मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आया।
3: हाँ।
0: देखोगी एक मिनट, कहाँ गया मेरा डब्बा? ये रहा। देखो बेटा ये तुम्हारी मनपसंद रेलगाड़ी है, आई पसंद। और देखो ये भालू, ये डमरू बजाता है, देखो देखो कैसे बजाता है। अरे ये तो भूल ही गया था, इतनी प्यारी सी गुड़िया है, परी की तरह लगती है ना। हाँ। नो शाबाश। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम तो बिल्कुल खुश नहीं हो। अरे जीजी आखिर हो क्या गया ऐसे? पहले तो ये ऐसी नहीं थी।
1: पता नहीं भैया, हम तो खुद ही बहुत परेशान हैं इसको लेकर। पता नहीं इसे क्या होता जा रहा है, हमेशा गुमसुम रहती है, परेशान रहती है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है।
0: जीजा जी पिछली बार जब मैं आया तो काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया ऐसे, इतनी कमजोर हो गई है।
3: मोहन जी हम खुद कुछ नहीं समझ पा रहे हैं।
0: तो आप क्यों नहीं किसी डॉक्टर को दिखाते इसे?
3: दिखाया था
0: तो फिर?
3: वो कहते हैं कि नॉर्मल है।
0: हैं? कमाल है, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। खैर कोई बात नहीं, इसके बारे में भी सोचेंगे। कोई बात नहीं बेटा। बेटा खुशी बेटा देखो तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने, तुम एक काम करो इसे इसे ले लो और अपने कमरे में जाओ।
4: नहीं चाहिए मुझे खिलौने विलौने, मगर मैं जा रही हूं।
0: अरे मगर बेटा ये खिलौने तो ले जाओ। अरे खुशी बेटा ओफो, चली गई बिना खिलौने लिए।
5: आंटी आंटी नमस्ते।
1: नमस्ते बेटा।
5: अंकल नमस्ते।
3: नमस्ते बेटा।
1: खुशी खुशी देखो ताशु आई है तुमसे मिलने।
4: क्या है मामा?
1: देखो ना ताशु आई है।
5: खुशी खेलोगे मेरे साथ?
4: नहीं ताशु आज मेरा खेलने का मन बिल्कुल भी नहीं है।
5: क्या हो गया, तुम तो मेरे साथ खेलती भी नहीं हो।
4: नहीं ताशु मेरा खेलने का मन नहीं है।
5: खेल लो प्लीज।
4: प्लीज ताशु मुझे नहीं खेलना है।
5: प्लीज
4: नहीं।
5: ठीक है फिर मैं मोनू के साथ खेल लूंगी।
4: ठीक है जाओ।

0: कुछ दिनों के बाद खुशी के पिता का तबादला हो जाता है और वो शहर छोड़कर वहां से दूसरे शहर चले जाते हैं जहां शांति थी। अगले दिन खुशी की आंखें नए शहर में खुलती हैं। सुबह सुबह जैसे ही खुशी के कानों में कोयल की आवाज आती है वो खुश हो जाती है। कोयल की आवाज सुनने भर से ही खुशी का चेहरा खिल उठता है।
1: वाह चिड़िया, कितनी अच्छी है, तितलियां भी, ये भी बहुत अच्छी हैं, फूल फूल फिर से, वाह, तोते, तितलियां रंग बिरंगी, लाल पीली हरी, वाह कितना अच्छा है नजारा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मम्मी मम्मी,
2: क्या बात है, क्या हुआ खुशी?
1: मैं तो बाहर जा रही हूँ। अरे वहाँ देखो चिड़िया, तोते, कितनी सुंदर है।
2: अरे सुन तो,
1: नहीं मैं तो जा रही हूँ।
2: अरे रुक तो सही, कहाँ जा रही है? पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है।
3: एक बार देखे तुमने,
2: हाँ।
3: यहाँ हम जब से आए हैं खुशी की खुशी वापस आ गई है, तो वो बहुत खुश रहती है।
2: सही कहते हो आप।
3: हे ईश्वर, हे भगवान, तुमने हमारी खुशी वापस लौटा दी।
0: अब खुशी के मम्मी पापा को समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि खुशी की खुशी कहाँ चली गई थी। जहाँ वो पहले रहते थे वहाँ पर हर रोज पेड़ों की कटाई हो रही थी, नई कंपनियां लग रही थी, प्रकृति की खूबसूरती जाने कहाँ चली गई थी। सो खुशी की खुशी भी चली गई थी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खुशी बनी रहे तो खूब पेड़ लगाइए, वातावरण में खुशी रहेगी तो आपकी खुशी भी बनी रहेगी।
4: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं, हमारी पहली सभा यहीं संपन्न होती है। संध्या 4 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: वो वादे, वो इरादे, वो कस्में, वो गुजारिश, वो कविता, वो गीत, वो नहर, वो आकाश, वो पहाड़, वो समुद्र, वो खिलखिलाते चेहरे, वो फूल, वो पत्तियां और वो मिट्टी जिसके ऊपर आप और हम खड़े हैं, वो मिट्टी जो हमें अनाज देती है, वो मिट्टी जो रहने के लिए घर, काम करने की ऊर्जा, एक पहचान देती है। उस मिट्टी का तिलक कर अगर हम सर उठा के खड़े हों तो कोई भी पहचान लेगा कि हम भारतीय हैं। और इसी मिट्टी में जहां हम अनाज उगाते हैं, हरी भरी वादियों में उसके लुत्फ उठाते हैं, यहां पर देश की रक्षा करने के लिए फौलाद भी जन्म लेते हैं। और ऐसे ही जांबाज इंडियन आर्मी के अफसर ब्रिगेडियर सुशील तमर हमारे साथ, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित, आज संदेश टू सोल्जर्स में हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। देशवासियों के साथ, हमारे इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस के साथ, मैं ब्रिगेडियर सुशील तमर जी का स्वागत कर रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: थैंक यू, और आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग।
0: सबसे पहले तो पूरे देश की तरफ से मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि यू आर सर्विंग इन द इंडियन आर्मी बट यू डिड फाइंड द अपॉर्चुनिटी। आपने जो भी रेगुलर नेसेसरी परमिशंस थी वो ली और अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
1: नहीं, मेरे लिए खुद भी एक बहुत खुशनसीबी का मौका है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आपसे मुखातिब हो सकूं, आपके श्रोताओं से बात कर सकूं। इट्स रियली एन ऑनर।
0: मुझे ये बताइए कि क्या हमारे इंडियन आर्मी के अंदर जो जांबाज अफसर होते हैं, जिन्होंने बहुत एक काबिल तरीके से एक ऑपरेशन या बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं, वो इसी तरह मीठी जुबान बोलते हैं? मतलब कभी कभी वो कड़क साउंड नहीं करते, वो इट्स समवॉट लाइक अ कैमोफ्लेज।
1: नहीं, मेरे ख्याल से ये संगति का असर है। आपका लहजा खुद इतना सुहाना है कि शायद हमारे लहजे में भी आपकी मिठास आ गई है।
0: ओके, तो दुश्मन को मीठा मीठा कह के थोड़ा सा उसको सॉफ्ट डाउन करो एंड देन टारगेट है, इज दैट द आईडिया?
1: या, दैट्स इट।
0: तो अपने सुनने वाले को बता दूं कि ब्रिगेडियर सुशील तंवर एक अलुमनाई है मिलिट्री स्कूल अजमेर के, नेशनल डिफेंस अकेडमी पुणे खड़गवासला के और इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून के। आप प्रेस्टीजियस मिलिट्री कोर्सेज करने के लिए डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और अंतर्राष्ट्रीय इंटेलिजेंस डायरेक्टर्स कोर्स IIDC जो किंग्स कॉलेज लंदन में होता है वो करने भी जा चुके हैं। और ये महारत हासिल करके आपने, ये कहूँ कि वो द कोवेटेड यूनिफॉर्म ऑफ द इंडियन आर्मी पहनी।
1: बिल्कुल, मेरे लिए बहुत खुशनसीबी का मौका है। मैं तो एक्चुअली बचपन से ही हम मिलिट्री स्कूल अजमेर में पढ़ा हूँ जैसे आपने बताया, और हमारे स्कूल का ये मकसद था कि छात्रों को डिफेंस सर्विसेज में ऑफिसर्स के लिए ट्रेन किया जाए
0: जी।
1: उसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी चले गए, सो बचपन से ही यूनिफॉर्म हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी एंड दैट इज़ वाई वी फील ब्लेस्ड कि मौका मिला देश की सेवा करने का, वर्दी पहनने का।

0: और इसके साथ साथ अपने देशवासियों को बता दें कि आज जो हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं ब्रिगेडियर सुशील तंवर, आपने 17 साल जो योगदान दिया भारतीय आर्मी को अभी तक, उसमें काउंटर टेररिज्म एनवायरमेंट जो जम्मू एंड कश्मीर में था, वहां पे इलीट 15 कोर की इंटेलिजेंस यूनिट को कमांड किया है। यंग ऑफिसर होने के नाते इन्होंने बहुत सारे जोखिम झेले। ऑपरेशन रक्षक में आप एक बैटल कैजुअल्टी के शिकार हुए, लेकिन शरीर शिकार हुआ, हौसला नहीं हारा और आगे बढ़ते गए। नॉर्दर्न कमांड की कमीशन कार्ड और साथ ही साथ इन्हें COAS कमेंडेशन कार्ड 2 बारी मिल चुका है। इनके बारे में और हम बात करेंगे, लेकिन विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी, ये सफर शुरू कहां हुआ आपका? When did you want to come to the Indian Armed Forces?
1: जैसा मैंने पहले बताया कि हम मिलिट्री स्कूल अजमेर में पढ़े हुए हैं
0: जी।
1: 10 साल की उम्र में स्कूल में एडमिशन हो गया था।
0: ओके।
1: तो मेरे ख्याल से शायद मैं 5वीं 6वीं क्लास में रहा होऊंगा जब मैंने सोचना शुरू किया कि मुझे भी फौज में जाना है, सेना में जाना है। और एक बार हम स्कूल में आ गए तो हमारा रूटीन, लोग कहते हैं कि मैंने 17 साल फौज में दिए, 20 साल दिए, 25 साल दिए, लेकिन हम स्कूल वाले, हम जो फौज में आ गए, हम कहते हैं कि हम तो बचपन से ही पीटी परेड करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आई थिंक इट वॉज राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड दैट आई रियली वॉन्टेड टू ज्वाइन।
0: तो बचपन से ही आप एक डिसिप्लिन माहौल में रहे होंगे?
1: हाँ, डिसिप्लिन था, काफ़ी डिसिप्लिन था जो हमारे जीवन में था। सुबह टाइम पर उठना, पीटी करना, क्लासेस टाइम पे जाना, शाम को गेम्स, स्टडी पीरियड। और वैसे पुराने जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनका एक अलग डिसिप्लिन और एक रूटीन था, खासकर हमारे मिलिट्री स्कूल्स। 5 मिलिट्री स्कूल हैं पूरे देश में, तो मैं अजमेर में पढ़ा हुआ हूँ। तो हमारे स्कूल में बचपन से ही ये शिक्षा दी जाती थी कि डिसिप्लिन में रहें और फौज की तैयारी करें, और हम आ गए फौज में।
0: ओके। पर साथ साथ में और भी बहुत सारे सवाल पूछता रहूंगा लाइफ की फिलॉसफी से जुड़े। आपको लगता है कि तब का डिसिप्लिन, बड़े होने के बाद जो डिसिप्लिन है, यू हैव नो रिग्रेट्स कि डिसिप्लिन से ही जो जिंदगी है ना, वो थोड़ी सी और निखरती है, लुक्स मोर कलरफुल?
1: हाँ, मे नॉट बी कलरफुल, बट सर्टेनली डिसिप्लिन ब्रिंग्स एन ऑर्डर। मुझे लगता है कि डिसिप्लिन रहने से आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक निखर जाती है।
0: ओके।
1: उसमें एक तरीका आता है, एक सलीका आता है, आपका आपके आसपास वाले लोगों पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, ऐसा मुझे लगता है। और सेना में तो डिसिप्लिन ही ज़िंदगी है।
0: yes.
1: तो इसीलिए अगर हम ना भी चाहें तो भी हमें डिसिप्लिन में तो रहना ही पड़ेगा।
0: पर आप डिसिप्लिन में रहेंगे, दैट्स द रीज़न कि इंडियन आर्मी इज़ वन ऑफ द टॉप आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड।
1: सर्टेनली एंड हम लोग UN जाते हैं, बाहर जाते हैं, दूसरी कंट्रीज के साथ हमारी एक्सरसाइज होती हैं।
0: Absolutely.
1: और वैसे तो वर्ल्ड ओवर आर्मीज आर नोन फॉर डिसिप्लिन, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी सेनाओं में इतना अनुशासन नहीं है, लेकिन भारतीय सेना की बात ही कुछ और है।
0: सो क्योंकि हम प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे मिले जुले सवाल भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे सिविलियन हमें सुन रहे हैं, हमें पूरा देश इस समय सुन रहा है, क्योंकि आकाशवाणी के लगभग सारे स्टेशन इस समय ट्यून्ड हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से। बहुत सारे हमारे NRIs जो हैं वो इस प्रोग्राम को बहुत सुनते हैं। हमारा व्हाट्सएप का जो मशीन है वो मैं खोल लेता हूँ, एंड ऑफ कोर्स अभी अभी मेरे पास मैसेज आया कि ऑस्ट्रेलिया से कोई हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे, और उनका नाम है जोया। खैर, उन्होंने कुछ सुझाव दिए, वो तो मैं बाद में पढ़ता हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए कि ऐसी क्या ख़ास बात है इंडियन आर्मी में आज की डेट में, इतने मॉडर्नाइजेशन पीरियड में हम लोग जा रहे हैं, हम एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हैं, ये कहना सही होगा?
1: बिल्कुल सही है, हम ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हैं और दुनिया बदल रही है, साथ में सेना बदल रही है। द वॉर्स आर चेंजिंग, द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बैट इज चेंजिंग, तो काफ़ी बदलाव आ रहा है।
0: जब आपने पहली बार आपने वर्दी पहनी, उसके बाद आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई?
1: हाँ, जब हम 97 में कमीशन हुए थे तो हमारी यूनिट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थी। okay. मणिपुर में, तो कुछ साल मैंने वहाँ गुजारे, लेकिन उसके बाद जैसे आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, ज़्यादातर वक्त मैंने जम्मू कश्मीर में गुजारा, लेकिन शुरुआती 2-3 साल मैंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में गुजारे थे।
0: तब का नॉर्थ ईस्ट इंडिया और अब का बहुत फ़र्क आ गया होगा?
1: फ़र्क तो हर जगह आया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया मुझे जाने का इतना मौका नहीं मिला।
0: okay.
1: बीच बीच में जाता रहा, बट एज ए ट्रैवलर, एज ए टूरिस्ट, नॉट एक्चुअली।

0: सर्व नहीं किया मैंने वहाँ पे इतना ज़्यादा,
1: ओके
0: लेकिन लोग जो हमारे साथी हैं वो बताते हैं कि सब कुछ बदल चुका है, तरक्की हुई है, लोगों के नज़रिया बदला है, सड़कें बदली हैं,
1: जी
0: डेवलपमेंट हुई है, तो आपके मीडल ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हुए हैं, तो ज़िंदगी जो है बिल्कुल ही बदल गई है और साथ ही ज़िंदगी जीने के तरीके भी बदल गए हैं।
1: सो टेल अस समथिंग मोर अबाउट योर पोस्टिंग इन जम्मू एंड कश्मीर. उस समय बड़ा डिफिकल्ट पीरियड था जब आप वहाँ आपकी पोस्टिंग.
0: जी, मैंने जम्मू कश्मीर में 15 साल से ज़्यादा गुजारे हैं, और पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, रजौरी, आपने बात की 15 कोर की इंटेलिजेंस यूनिट की,
1: जी
0: 12 मुला में मैं रहा, तो
1: ओके
0: तकरीबन जम्मू एंड कश्मीर से मेरा एक बहुत ही क्लोज़ रिलेशन है वहाँ के लोगों के साथ,
1: ओके
0: बहुत मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं क्योंकि मैंने इतना वक्त गुजारा है, और मैं कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा जो फर्स्ट होम इज़ जम्मू एंड कश्मीर।
1: वाह, ये सुन के तो बहुत अच्छा लगा. मतलब फौलाद भी कह रहा है कि जम्मू कश्मीर की बात ही कुछ और है.
0: बात ही कुछ हो रहा है वहाँ के लोगों के साथ,
1: जी
0: हमने बहुत काम किया उनके साथ, हमारे जाती ताल्लुकात हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर सोल्जरिंग के सारे पहलू वो सामने आते हैं, चैलेंजिंग है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं, और लोगों के साथ एक मिलने जुलने का सिलसिला है, तो अगर हम कहते हैं कि पी स्टेशन में कोई दिल्ली में है, कोई मथुरा में है, कोई पूना में है, इसके बनस्पत कोई जम्मू एंड कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहने से उसको सोल्जरिंग का जो रियल वैल्यू है वो सामने आती है, सो इट्स टफ बट इट इज़ ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइंग।
1: आप हमारे सिविलियंस को इस वार्ता के, आपके और मेरे बीच जो वार्ता चल रही है उसके माध्यम से आप ये बताना चाहें कि चाह रहे हैं कि जब हमारी इंडियन आर्मी वहाँ, जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे जवान हैं, हमारे अफसर हैं, इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप यूनिफॉर्म पहने और आपने गन पकड़ी है एंड यू आर अ ड्रेडेड यू नो मैन इन अ यूनिफॉर्म. आप लोगों से मिक्सअप भी होते हैं. जागरूकता एक बहुत बड़ी चीज़ है, अवेयरनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है, स्पेशली यूथ के लिए.
0: बिल्कुल, और आपने एक ड्रेडेड वर्ड का इस्तेमाल
1: जी
0: किया जो कि थोड़ा सा नकारात्मक होता है उसके मायने,
1: ओके
0: लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर के लोगों के हिसाब से देखते हैं तो वी आर नॉट सीन एज ड्रेडेड, आई थिंक वी आर सीन मोर एज प्रोटेक्टर,
1: नो, इट्स
0: और
1: ड्रेडेड
0: हमारा
1: फॉर दी
0: यस या
1: पीपल
0: ड्रेडेड, इट
1: हु
0: इज़
1: यू
0: ड्रेडेड फॉर
1: फाइट
0: पीपल,
1: अगेंस्ट.
0: या वी आर फाइटिंग अगेंस्ट, सो
1: या
0: दैट वे यस, बट अदरवाइज़ आजकल जिस तरीके का माहौल है
1: जी
0: कई तबकों में सेना को एक ड्रेडेड आइडेंटिटी भी दी जाती है, लेकिन आई थिंक वी आर वेरी टफ विद पीपल हुम वी आर फाइटिंग अगेंस्ट, बट वेरी फ्रेंडली टू एवरीवन हु इज़ ऑन आवर साइड।
1: तो आप इतना टाइम थे जम्मू कश्मीर में, वहाँ की लैंग्वेज वगैरह कुछ सीखी?
0: हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो ज़रूरी है,
1: ओके
0: लोगों के साथ अगर हमारे को रिश्ते जोड़ने हैं तो फिर वहाँ की भाषा भी सीखनी पड़ेगी।
1: राइट. कुछ बताइए ना वहाँ पे, अब जब आपकी पहले पोस्टिंग हुई, या कोई कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट जो आपको याद आता हो एंड यू सेइंग फाइनली मैं अब आर्मी के साथ हूँ और मैं ऑपरेशंस में हूँ.
0: देखिए, वहाँ तो Day 1 से ऑपरेशंस चलते हैं,
1: ओके
0: मुझे अभी मैं बिल्कुल स्पेसिफिक डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा किसी ऑपरेशन के,
1: ओके
0: लेकिन जैसे आपने बताया मुझे वहाँ पर गोली भी लगी एक एनकाउंटर में
1: ओके
0: जो सूरनकोट में हुआ था,
1: ओ आई सी. आप
0: इसके
1: कुछ
0: अलावा
1: इलेबोरेट करना चाहेंगे?
0: नहीं,
1: ओके
0: एक जगह थी जहाँ पर हमें सर्च ऑपरेशन करना
1: ओके
0: था,
1: डन.
0: और वहाँ पर जैसा कि किसी भी ऑपरेशन में हो सकता है आतंकवादियों से सामना हो गया और मुझे गोली लग गई,
1: ओके
0: बट नॉट इट वाज नॉट वेरी सीरियस इंजरी,
1: ओके
0: और ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था, और इसमें बाद में हमें आइडेंटिफाई किया हमने कि कौन था इसके पीछे,
1: ओके
0: लेकिन इस तरीके के वाकये मेरे साथ हुए हैं, मैं बच गया, लेकिन हमारे बहुत बहादुर जवानों और ऑफिसर्स ने अपनी जान की बाजी लगाई है, अपनी जान का बलिदान दिया है, मेरे बहुत साथी, मैं जिस बैच से बिलोंग करता हूँ उस बैच में वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट 30 ऑफ अवर बैचमेट्स फॉर वेरियस रीजंस,
1: ओह आई सी.
0: सो द कॉस्ट इज क्वाइट हाई,
1: यस
0: बट दैट इज़ अ कॉस्ट दैट नीड्स टू बी पेड,
1: फॉर द नेशन.
0: या फॉर द नेशन एंड फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री।
1: एक नशा है ना आप लोगों को कि नहीं यार, वर्दी पहनी है, अब बस अब सिर्फ देश ही दिखता और कोई नहीं दिखता.
0: नशा है, जुनून है, एंड आई थिंक दिस इज

0: फर्स्ट लव।
1: मैंने नशा इसलिए बोला क्योंकि आपने एक सॉन्ग सेलेक्ट किया हुआ है, उसके बोल ही कुछ ऐसे हैं।
0: हाँ, पहला नशा
1: जी,
0: और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना।
1: एनी स्पेसिफिक रीज़न?
0: हाँ, इसका रीज़न दो तीन रीज़न है। पहला रीज़न उसका ये है कि ये मूवी जो जीता वही सिकंदर, मैंने यही दिल्ली में रिड्स थिएटर होता था, कश्मीरी गेट के बाहर, तो मेरे भाई के साथ मैंने ये मूवी देखी थी। मैं आई थिंक 11th या 12th में था और वो मुझे याद है, वो गाना पूरा, इट इज इम्प्रिंट ऑन माय माइंड। और फिर एक ऐसा वक्त आया जब मैंने इस गाने को अपनी कॉलर ट्यून भी लगाया था, तो सब लोग सोचते थे ये क्या है पहला नशा। तो आई यूज टू से, मैंने भी आपको कहा है कि आर्मी इज आवर फर्स्ट लव।
1: सर, बात तो आर्मी के आगे भी होगी। इस गाने को सुनते हैं, फिर पूछता हूँ किसके लिए आपने गाया था। संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, और हमारे साथ ब्रिगेडियर सुशील तंवर मौजूद हैं स्टूडियो में।

0: तो हम अपने सुनने वालों को बता दें कि आप सुन रहे हैं ये खास प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, और हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो अभी इंडियन आर्मी को सर्व कर रहे हैं, ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित और इंडियन आर्मी की शान। और अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, माध्यम व्हाट्सएप का ही है। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, आप उसमें व्हाट्सएप भेजकर अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स, मैं जानता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस की जो सेलिब्रेशंस हैं, जो तैयारियां वो शुरू हो चुकी हैं, तो आप अपने भाव यहाँ पे प्रकट कर सकते हैं। नंबर है 9868107070, 9868107070, यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी से मैं अभी जानना चाहूँगा कि आपने बात की जम्मू कश्मीर की, तो बहुत लंबा अरसा आपने वहाँ पे बिताया है। यू मस्ट हैव सीन द समर्स एंड द विंटर, सारे वेदर आपने वहाँ पे देखे होंगे, तो कुछ शायरी वारी भी तो निकली होगी कभी ना कभी, कुछ मन तो किया होगा ना कुछ गुनगुनाने का, जैसे आपने ये गीत हमें सुनवाया, कुछ और भी आपने कुछ लिखा, कुछ भाव प्रकट किए वैसे?
1: हाँ, जम्मू कश्मीर में मैंने वक्त गुजारा, वहाँ के लोगों के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात बनाए
0: जी,
1: और दो किताबें मैंने लिखी हैं।
0: ओके।
1: एक किताब है मुखबिर, विच इज़ ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज।
0: मुखबिर ओके।
1: मुखबिर मतलब इन्फॉर्मर होता है, और ये 17 कहानियाँ हैं इसमें।
0: ओके।
1: सब जम्मू कश्मीर की कहानियाँ हैं।
0: अच्छा।
1: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस की कहानियाँ हैं।
0: ओके।
1: वहाँ के लोगों की कहानियाँ हैं।
0: ओके।
1: और दूसरी किताब मेरी अभी आई है, अमन के फरिश्ते। ये कहानी है, दिस इज़ नॉवल, ये जम्मू कश्मीर में जम्मू प्रांत के पुंछ जिले में सूरनकोट एक जगह है।
0: ओके।
1: वहाँ पर एक यंग मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर, उसकी कहानी है, और ये किताब अभी 5 महीने पहले ही आई है। दोनों किताबें राजपाल एंड सन्स ने पब्लिश की हैं, और इन दोनों किताबों में मैंने जो भी जम्मू कश्मीर में देखा, मेरे साथियों ने जो देखा, सो इट इज़ जस्ट ए कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस। ऑफ कोर्स इट इज़ फिक्शन एंड रियलिटी कम्बाइंड।
0: मैं आपसे मुखबिर के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, आपने कहा कि उस वहाँ पे तरह तरह की कहानियाँ हैं, तो ये कहानियाँ जब आप वहाँ सर्व कर रहे थे, आपने तब लिखी या तब मन में बनाया और फिर बाद में?
1: ये कहानियाँ मेरे दिमाग में आती रही, जो मैं देखता रहा
0: जी,
1: जो मेरे साथी देखते रहे। हालांकि किताब ये 3-4 साल पहले आई है
0: जी,
1: कुछ कहानियाँ मैंने तब लिखी जब मैं वहाँ से वापस आ गया
0: जी,
1: और कुछ कहानियाँ मैंने वहाँ पर रहते हुए लिखी, तो मिला जुला संगम है ये। लेकिन जहाँ तक फीडबैक का सवाल है, काफ़ी लोगों ने मुझे ये कहा है, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि इन किताबों को पढ़ के, इन कहानियों को पढ़ के उन्हें जम्मू कश्मीर के बारे में एक नया नज़रिया मिला।
0: ओके।
1: और मेरे लिए एज ए राइटर इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती।
0: कुछ कुछ कहानियों का कुछ अंश यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहेंगे?
1: हाँ, इसमें 17 कहानियां हैं, जैसे ये कहानी मुखबिर जो पहली कहानी है, मुखबिर जिसके टाइटल जिसका ऊपर है किताब का, वो कहानियां एक बारामूला के पास गुलाम हसन नाम का इंसान रहता है।
0: ओके।
1: जो कि फौज के लिए मुखबिरी करता है।
0: ओके। दीज आर ऑल हाइपोथेटिकल नेम्स राइट?
1: या सम ऑफ दीज नेम्स आर रियल,
0: रियल आल्सो,
1: बट मोस्टली इट इज हाइपोथेटिकल। मैंने क्या किया इसमें, जो मेरे साथ रहे लोग
0: जी,
1: जो मेरे साथ ही रहे, जिन्होंने हमारे साथ काम किया, जो मेरे साथ जुड़े रहे, हमने कहीं ना कहीं जो किरदार थे एज माय ट्रिब्यूट, हमने उनके नाम रख दिए। सो मे नॉट बी रियल, बट समवेयर दे डू एग्जिस्ट।
0: स्पाई नेम्स कह लो?
1: हाँ, स्पाई नेम्स कह लीजिए, कई असली नाम हैं, जैसे मेरे कोई साथी हैं उनके नाम पर, जो मेन किरदार है उनके नाम पर।
0: मेरा भी एक नाम है।
1: आपके नाम पर भी लग देंगे अगली किताब?
0: मेरा नाम रखा हुआ है।
1: अच्छा, क्या रखा हुआ आपका नाम?
0: फाल्कन वन।
1: अच्छा, आपके व्हाट्सएप प्रोफाइल में भी फैल्कन वन आया था, जब आपने मुझे पहली बार कॉल किया था तो मैंने कहा ये फैल्कन वन कहीं किसी खतरनाक किसी इंसान का फोन आ रहा है, लेकिन फिर जब मैंने आपसे बात की और आपकी आवाज़ सुनी तो मुझे फिर पता लगा कि अच्छा, आप तो ऑल इंडिया रेडियो से बोल रहे हैं, लेकिन जो स्क्रीन पे नाम आया था फैल्कन, वो सच में काफ़ी खतरनाक था।
0: मेरे एक दोस्त भी हैं, आज ही बने, उनका नाम है टैनी।
1: हाँ, वो उनसे आप मिलते रहिए, आपको उम्मीद है मज़ा आएगा।
0: मेरे सामने बैठे हैं टैनी।
1: हाँ, मुझे फौज में लोग, फौज में एक रिवायत है
0: आपके भी निकनेम्स की, व्हाट्सएप की।

0: एमएच के साथ आया था, टैनी स्पीकिंग।
1: हाँ, तो हमारी फौज में एक रिवायत है
0: जी
1: निकनेम्स की,
0: जी
1: मडवाल को मैडी बोल देते हैं, संवाल को सैम बोल देते हैं, तो यशराज है तो यश बोल देंगे। तो यू नो वी हैव ए विद लव एंड विद अफेक्शन वी गिव निकनेम्स।
0: ओके,
1: शायद हर पेशे में होता होगा लेकिन फौज में कुछ ज़्यादा है और ज़्यादा अपनापन है। तो मुझे फौज में लोग टैनी कहते हैं, सीनियर जूनियर सब, कोई सर भी बोलता है तो टैनी सर बोलता है। तो दैट इज हाउ
0: एंड यू एंजॉय इट, वी एंजॉय दीज नेम्स,
1: या बिकॉज़ दे आर सेड आउट ऑफ अफेक्शन, और कुछ फिर आदत बन जाती है,
0: आदत बन जाती है, एक अपनापन भी होता होगा।
1: एक अपनापन तो है, काफी अपनापन है।
0: तो ये जो फिल्म्स में हम देखते हैं जैसे टाइगर कॉलिंग बारासिंगा, बारासिंगा टू टाइगर, ये सारी चीजें चलती रहती हैं हमारे।
1: हाँ, क्योंकि जब आप रेडियो पर खासकर बात करते हैं
0: जी,
1: तो कुछ कोड वर्ड्स होते हैं।
0: ओके,
1: तो टाइगर, लैम्ब, लायन, इस तरीके के होते हैं जो सेट होते हैं, और इसके बाद कुछ इंडिविजुअल नेम्स होते हैं।
0: ओके,
1: सो दीज आर कॉल साइंस बेसिकली।
0: कॉल साइंस, यस।
1: तो यस, दिस इज ट्रू, बट फिल्मों में थोड़ा ज्यादा ग्लैमरस कर देते हैं।
0: ग्लैमरस कर देते हैं जी हाँ। मुझे याद है कि यहाँ पे हमने ग्रुप कैप्टन मुनीश यादव को आमंत्रित किया था संदेश टू सोल्जर्स में, द पायलट हु फायर्ड एट द टाइगर हिल फ्लाइंग द मिराज 2000 अलॉन्ग विद ग्रुप कैप्टन रघुनाथ नाम्बियर। तो वो आए थे तो हम बताया, वो जो 25 या 26 सेकंड की जो क्लिप है यूट्यूब में जहां एयरफोर्स ने टाइगर हिल पे अटैक किया था लेजर गाइडेड बॉम्ब, तो मैंने उनसे पूछा था आपका कॉल साइन क्या है, तो हंसने लगे, बोले इट वाज टॉम कैट।
1: हाँ, एयरफोर्स में बड़े स्टाइलिश नेम्स होते हैं
0: जी, जी।
1: उनके कॉल साइंस आर क्वाइट स्टाइलिश, दैट वे वी आर ए लिटिल ग्राउंडेड।
0: तो कमिंग बैक टू गुलाम अहमद,
1: हाँ, गुलाम हसन,
0: गुलाम हसन,
1: गुलाम हसन, तो ये गुलाम हसन की कहानी है
0: जी।
1: जो कि वहाँ पर एक मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम के साथ काम करता है
0: जी,
1: और किस तरीके से वो अपने आप को साबित करता है, ये वो कहानी है। उस इलाके में एक टेररिस्ट ग्रुप इन्फिल्ट्रेट करके आ जाता है,
0: okay.
1: और वहाँ पर जो टीम कमांडर है वो उसको टास्क देता है कैप्टन अभिमन्यु कि आप पता करें, और वो पूरी जी जान लगा देता है, और देयर इज अ स्लाइट ट्विस्ट इन द एंड अबाउट व्हाट हैपेंस टू गुलाम हसन। तो ये कहानी है, एक कहानी है मुजाहिद जो एक बहुत यंग लड़के इम्तियाज की कहानी है, ये सूरनकोट की कहानी है, और इसमें जो मेन किरदार है वो इम्तियाज है, और दूसरा कैप्टन समर है। कैप्टन समर इम्तियाज को ट्रेन करता है, उसको पाकिस्तान भेजता है लश्कर तोयबा के साथ काम करने के लिए, और फिर कैसे कहानी आगे बढ़ती है वो आप किताब पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा। बट इट इज़ ऑल्सो ए वेरी वेरी टेंडर एंड येट ए वेरी करेजियस स्टोरी। फिर एक कहानी है लव जिहाद,
0: उसमें
1: लव जिहाद एक कहानी है पाकिस्तानी टेररिस्ट की जो हिंदुस्तान आता है घुसपैठ करके जिहाद के लिए, लेकिन यहाँ पर उसको हंडवारा में एक लड़की के साथ इश्क हो जाता है, और उसी वक्त वहाँ पर एक मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर होते हैं कर्नल ऋषभ, उनको ये सब बात पता लगती है, तो वो किस तरीके से इन दोनों के रिश्ते को यूज़ करते हैं और किस तरीके से तीनों मिलकर फिर भारतीय सेना के लिए काम करते हैं, ये उस कहानी का मेन प्लॉट है। तो आप पढ़ें कहानियाँ, आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस।
0: लेडीज के हाथ में वो पावर होती है, दे कैन चेंज एनीबॉडी। कुछ तो होता है सर, मेरे पास बहुत सारे ना SMS आ रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी वो भी लेता हूँ। जोया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमें मैसेज कर चुकी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। तेलंगाना से MR मधुसूदन आपको 80th इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं दे रहे हैं और कह रहे हैं भारत माता की जय, और हमारी कंट्री जो 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रही है एडवांस में, वो आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं।
1: मेरी तरफ से भी सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं
0: जी। विजय कुमार विश्वनाथन जी तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से हमें एक मैसेज भेज रहे हैं। संदेश टू सोल्जर्स दोस्तों आप सुन रहे हैं, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ इस समय ब्रिगेडियर सुशील तंवर मौजूद हैं, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसके माध्यम से हमें जुड़ सकते हैं केवल SMS, केवल व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए। नंबर है 9868107070, 9868107070। और एक और मैसेज हमारे पास आया है, एंड दिस इज शमीम रजा, लोकेशन कहाँ से वो उन्होंने नहीं बताई, सो वील नॉट आज दैट। मिस्टर पाटिल ने हमें एक मैसेज भेजा है और उन्होंने आपके बचपन और शिक्षा के ऊपर जो बात पूछी है उसके बारे में आप बता ही चुके हैं। जय हिंद सर, सर मैं NDA की तैयारी कर रहा हूँ, मैं नियमित रूप से पढ़ नहीं

0: पाता। और एनडीए के लिए अगर कोई किताब आप मेंशन कुछ सजेस्ट करना चाहें तो प्लीज बताएं। सूर्य कुमार हैं ये, कुछ आप कहना चाहेंगे?
1: हाँ, जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आजकल जो 12th का सिलेबस होता है, रिटन एग्ज़ाम जो यूपीएससी कंडक्ट करती है,
0: जी
1: उसके लिए काफ़ी गाइड्स एंड काफ़ी गेस्ट पेपर्स आते हैं,
0: जी
1: तो मुझे तो अभी अंदाज़ा नहीं है। एक्चुअली मैंने तो एनडीए 25-30 साल पहले किया था,
0: एब्सोल्युटली
1: लेकिन आई विल चेक कि अभी आजकल लोग किस किताब को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा सफलता किसमें मिल रही है। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, अगर आप 11वीं और 12वीं का जो CBSE का सिलेबस है उसको अच्छी तरीके से करें, तो शायद आपको एनडीए का रिटन एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। और एनडीए में रिटन एग्ज़ाम सिर्फ पहला पड़ाव है, क्योंकि मेन उसमें SSB होता है। तो अगर एक बार आप रिटन की तैयारी कर लेते हैं और उसमें क्लियर कर जाते हैं, तो देन SSB इज़ एक्चुअली ए टफर नट टू क्रैक।
0: राइट देन। यहाँ पे यश सिंधे मुंबई से हमारे को मैसेज भेज रहे हैं। ब्रिगेडियर सुशील जी के जज्बे को सलाम, ऐसे वीरों को हर हिंदुस्तानी सलाम करता है। आपकी वजह से हम चैन से सो पाते हैं। भारत माँ के सच्चे और वीर संतान हैं आप। सुशील जी, आपकी सेवा और त्याग को नमन है। इस मुल्क की हिफाजत को मजबूत चट्टान की जरूरत है, वो आप हैं। इज ऑलरेडी बिकम अ फैन ऑफ यू सर।
1: और मैं ये सुनता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे क्या, पूरे
0: यस
1: हमारे जितने भी साथी हैं, हम सिर्फ इस भरोसे से, इस उम्मीद के साथ अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं ताकि ये देश महफूज रहे, ताकि ये देशवासी खुश रहें। और जब हमारे देश के लोग इस तरीके का जज्बात जाहिर करते हैं, तो फिर और भी अच्छा लगता है,
0: बहुत सारे
1: और
0: और
1: हमारा
0: मैसेज।
1: जो
0: जी जी
1: निश्चय है, वो दृढ़ संकल्प है, वो और मजबूत होता है।
0: दैट्स वंडरफुल। कुछ और मैसेजेस आ रहे हैं, मैं जल्दी से लेना चाहूँगा। आस्था शर्मा हिमाचल प्रदेश से, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी टू लिसन टू यू। और उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा है कि उन्होंने भी एनडीए के एग्ज़ाम दिए हैं और अभी भी तैयारी कर रहे हैं। फायरमैन भरत कुमार चमोली गढ़वाल से लिख रहे हैं कि हमारा सलूट जो है वो स्वीकार करें। एंड ऑफकोर्स हमारे जो ब्रेव सोल्जर्स हैं, उनके खुद के दादा पापा और 3 भाई आर्मी में सर्व कर चुके हैं, और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। तंवर जी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री गंगानगर जिला से डॉक्टर गणेश अरोड़ा हमारे को ये मैसेज भेज रहे हैं। हितेंद्र दास ने असम से हमें मैसेज भेजा है। सूरत से उल्हास पाटिल हमें मैसेज भेज रहे हैं। यू आर द रियल हीरो। वृंदावन से भी मैसेज आ गया रोहित रे का। एंड ऑफ कोर्स इंडियन आर्मी के बारे में बहुत सारी बातें, ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं एक जनाब जिनका नाम है शशि सिंह यादव। एंड ऑफ कोर्स एक और मैसेज हम लेना चाहेंगे यहाँ पे कि दिल से सलाम कर रहे हैं मोनीश इद्रिसी उत्तर प्रदेश से, बिलासपुर से आपको। सो यंगस्टर्स हैं बहुत सारे जो मैसेज भेज रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि लिसनिंग बहुत ज़्यादा है संदेश टू सोल्जर्स की। इससे पहले कि हम अगला म्यूजिकल ब्रेक लें, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमारी जो प्रेमी इंस्टीट्यूशन है वहाँ के इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं। कुछ आप बताइए कि जब आप नई जनरेशन के युवाओं को देखते हैं, व्हाट चेंजेस डू यू सी कंपेयर टू द यंगस्टर्स इन योर टाइम?
1: हाँ, मैं भारतीय सैन्य एकेडमी जो देहरादून में है, वहाँ पर इंस्ट्रक्टर रहा था,
0: जी
1: और बहुत गर्व महसूस होता है जब हम नई पीढ़ी को देखते हैं,
0: ओके
1: उनकी उनकी काबिलियत, उनका जुनून, और हाउ वेल इन्फॉर्म्ड दे आर। बहुत ये बातें होती हैं कि नई पीढ़ी में कमज़ोरी है, वो स्ट्रेस नहीं ले सकते,
0: ओके
1: उनके पास इतना तजुर्बा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि व्हेन यू आर विद यंग पीपल, यू योर सेल्फ फील यंगर। आपको लगता है कि इनकी एनर्जी जो है वो कमाल की है,
0: ओके
1: और जब आप एकेडमी में होते हैं तो आपको मौका होता है एज ए इंस्ट्रक्टर टू शेप देयर पर्सनैलिटी, एंड आई
0: ओके
1: थिंक दैट्स ए प्रिविलेज। और अभी भी जब हमारे जो कैडेट्स हैं, अब अफसर बन गए हैं सारे, जब मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है देख के कि हमने उनको, वी हैव सीन देयर इंटायर जर्नी, दे केम एज नोविसिस एंड नाउ दे आर कमांडिंग बटालियंस एंड डूइंग सो वेल। सो इट्स ऑलवेज ए प्लेजर टू इंटरेक्ट विद
0: तो
1: यंग।
0: आपका जो द प्रोसेस ऑफ डीलिंग और टीचिंग देम और ट्रेनिंग देम इज एज टफ एज योर गुरुज वर, और इट्स गॉन टफर, और यू अंडरस्टैंड नहीं यार इसको
1: देखिए, ये जो है डिबेट हमेशा रहती है।
0: रहती है।
1: हमें लगता है कि हमने ज़्यादा मुश्किल वक्त झेला है, और हमारे बाद वाली, अब मैं पीढ़ी तो नहीं बोलूंगा, ऐसा लगेगा कि मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ,
0: अरे
1: लेकिन
0: नहीं सर, यू लुक
1: लेकिन
0: एब्सोल्युटली फिट
1: या सो
0: फाइन यंग।
1: लेकिन वी आर ओनली सेम जनरेशन, बट आई थिंक दिस इज़, एवरी वन सेज कि वी हैव सीन टफर टाइम्स, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात सही है, शायद हमने ज़्यादा मुश्किलें झेली हैं।
0: ओके

0: आपने एक सॉन्ग सजेस्ट किया था कुछ आपकी ट्रेनिंग टाइम्स और कुछ आपके ग्रुप से रिलेटेड जो मैं चला चुका हूँ।
1: हाँ, ये कजरारे गाना है। जब हम IMA में पोस्टेड थे तो हम यंग ऑफिसर्स, वी वर इंस्ट्रक्टर्स, तो हम ये गाना इतना चलाते थे दिन रात। तब ये नया नया गाना आया था और ये गाना मैं सुनता हूँ तो मुझे वो दिन याद आ जाते हैं, मेरे दोस्त याद आ जाते हैं, एंड आई जस्ट लव दिस सॉन्ग।
0: थोड़ी और याद ताज़ा करते हैं आपकी, ये गाना हम भी चलाते हैं और कुछ ताज़ी, उस समय की ताज़ी बात कुछ याद आ रहा है तो आप शेयर करिए हमारे साथ। संदेश टू सोल्जर्स सुन रहे हैं, मेरा नाम है मनीष जौली और मेरे साथ खास मेहमान बैठे हैं ब्रिगेडियर।
2: मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर।

संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप। मेरा नाम है मुनीश जौली और मेरे साथ यहाँ ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी बैठे हैं, एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ और ढेर सारे श्रोता जो हैं जो हमें मैसेज भेज रहे हैं, उनके नाम मैं बहुत जल्दी लेना चाहूंगा। देहरादून की डिफेंस कॉलोनी से कैप्टन वी के एस कर की IPS हैं, रिटायर्ड हैं, उन्होंने हमें मैसेज भेजा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके इस मैसेज के लिए। कोटा राजस्थान से राम गोपाल शर्मा जी हमें यहाँ मैसेज भेज रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स मीरा तिवारी नोएडा से कह रही हैं कि आपके बारे में, ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी के बारे में सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद कोर ऑफ सिग्नल में थी जब कारगिल युद्ध चल रहा था। दैट्स वंडरफुल टू नो मैम। आशा है कि आज की जनरेशन इनकी कहानी सुन के इंस्पायर हो और देश की इज्जत रखें और नेशनल डेवलपमेंट में योगदान दें। हम भी यही आशा कर

हैं, लेकिन इसके बारे में हम सुशील जी से पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। वीर सैनिकों को नमन कर रहे हैं शंभवी पांडे। एंड ऑफ कोर्स वी आर मूविंग अहेड विद लॉट ऑफ अदर मैसेजेस, जहां पर हमारे को सूर्य कुमार एक मैसेज भेज रहे हैं, वो भी एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं। मोहम्मद अली ने विशाखापट्टनम से 80वें इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं लिखी हैं, और उन्होंने कहा कि मैं आपकी लिखी हुई किताब जरूर पढ़ूंगा, और उन्होंने कहा है इंशाल्लाह मैं भी अपने देश भारत के लिए सर्व करूंगा एक दिन। आगे बढ़ते बढ़ते कुछ मैसेजेस हमारे पास जो आ रहे हैं। ग्राम ढाणी कुतुबपुर तहसील जिला हासी हरियाणा से रामधारी अवाना ने हमको मैसेज भेजा है, और बहुत प्यारा सा मैसेज बनाकर आपके लिए भेजा है। एंड ऑफ कोर्स बाकी जो नाम मैं लेता रहूंगा धीरे धीरे बहुत जल्दी से, जैसे भवानी उन्नाव से सुनील कुशवाहा ने हमें मैसेज भेजा है।

0: आपकी लिखी हुई किताब जरूर पढ़ूंगा। और उन्होंने कहा है इंशाल्लाह मैं भी अपने देश भारत के लिए सर्व करूंगा एक दिन। आगे बढ़ते बढ़ते कुछ मैसेजेस हमारे पास जो आ रहे हैं, ग्राम ढाणी कुतुबपुर तहसील जिला हासी हरियाणा से रामधारी अवाना ने हमको मैसेज भेजा और बहुत प्यारा सा मैसेज बनाकर आपके लिए भेजा है। एंड ऑफ कोर्स बाकी जो नाम मैं लेता रहूंगा धीरे धीरे बहुत जल्दी से, जैसे भवानी उन्नाव से सुनील कुशवाहा ने हमें मैसेज भेजा है, भुवन जोशी हल्द्वानी से हमें मैसेज भेज रहे हैं और तिरंगा भी उन्होंने भेजा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके साथ जब हमने ये गाना सुना, खैर मैं फोकस कर रहा था मैसेजेस पे, वील गेट बैक टू इट लेटर, आप हमने बात की कजरारे की, तो वर यू ऑल्सो वेरी नॉटी जब आप एकेडमी में थे, कुछ आपने मिस्चिफ विस्चिफ नहीं की तब?
1: हाँ, मिस्चिफ तो हर इंसान करता है मेरे ख्याल से।
0: ओके,
1: हमने भी किए, सब ने किए।
0: ओके,
1: शायद लेकिन उतने नहीं किए जितने अब मैं सोचता हूँ, तो सोचता हूँ कि थोड़ा और करना चाहिए था।
0: ओके,
1: लेकिन आज आप लगता है सारे राज खुलवाने की ठान कर आए हैं।
0: अच्छा लगेगा ना, सिविलियन, देखिए सिविलियन को लगता है कि आर्मी के जवान हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो अफसर हैं, कभी मुस्कुराते नहीं हैं, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, वो कभी मीठा नहीं बोलते, आप तो मिश्री हैं। अनुराग पांडे एक रेडियो जॉकी हैं AIR मथुरा में, वो एक मैसेज भेज रहे हैं और ही इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग यू, तो हमारे सिविलियंस की थोड़ी सी वो बदल जाएगा ना, कि आपकी उस यू नो सॉलिड बॉडी के अंदर भी एक विनम्र सा दिल है।
1: हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि फौजी जो होते हैं वो बहुत नरम दिल होते हैं।
0: ओके,
1: इनसाइड द सॉफ्ट एक्सटीरियर, हार्ड एक्सटीरियर इज अ वेरी सॉफ्ट इंटीरियर, और जब आप लोगों से मिलते हैं तब उनको अंदाजा होता है, तो शरारतें तो लाजमी हैं।
0: पर आप लगते नहीं सर कि आपने शरारती की होगी।
1: नहीं, जैसे आप वाक्य की पूछ रहे थे
0: जी,
1: तो मुझे याद है हम यंग ऑफिसर थे।
0: okay.
1: तो वेरी ब्रीफली माऊ में हम यंग ऑफिसर्स कोर्स कर रहे थे।
0: okay.
1: उस टाइम टाइटैनिक मूवी आई थी।
0: okay.
1: ओपन एयर थिएटर है, बहुत मज़ेदार, वहाँ पर बहुत मस्ती होती है ओपन एयर थिएटर में माऊ के इन्फेंट्री स्कूल में। तो जब टाइटैनिक में वो शिप डूबने लगा, तो किसी ने बोला यार कुछ ये शिप डूब रहा है तो हम भी कुछ करते हैं, तो मैं चुपके से हम लेके गए थे एक पटाखों की लड़ी।
0: ओके,
1: तो बाकी तो कोई गया नहीं, मैं गया और जैसे ही मैंने लड़ी जलाई, उजाला हुआ, उधर शिप डूब रहा था और उधर सबको पता लग गया कि ये भाई साहब जो हैं, और उसमें से एक पटाखा हमारे एक DS थे जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, वो उनकी मैडम भी आई हुई थी देखने के लिए, और वो पटाखा सीधा उनकी झोली में जाके गिरा, शायद बड़ी कीमती साड़ी में छेद हो गया, तो पीछे से मुझे आए कि आप जरा बाहर आइए।
0: बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, सर के ऊपर गिरता तब तक ठीक था,
1: लेकिन उस टाइम लोग थोड़े ज्यादा जिंदा दिल थे ऐसा मुझे लगता
0: पर
1: है।
0: हुआ क्या उसके बाद?
1: कुछ नहीं, मुझे बताया गया कि ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा एक इमेज अच्छी थी, पर यह हुआ कि उसके बाद वो जो हमारे सर थे उन्होंने और बाकी सब इंस्ट्रक्टर्स ने मुझे क्रैकर बॉय कहना शुरू कर दिया।
0: okay.
1: तो क्रैकर बॉय कम एयर, बट अच्छा था, देयर वाज नो इल विल। तो ऐसे कई सारे किस्से हैं।
0: टैनी द क्रैकर बॉय,
1: यस,
0: ऐसे बुलाते होंगे आपको?
1: हाँ, मतलब अपने अपने अंदाज से बुलाते थे।
0: राइट, यहाँ पे एक जनाब और हैं दीपू, उन्होंने कहा सर आप अपनी किताब के नाम दोबारा ले लेंगे, बहुत सारे लोग परचेस करना चाह रहे हैं, दे वांट टू रीड द इंसिडेंट्स एंड द एक्सपीरियंसेस।
1: हाँ, तो पहली किताब है मुखबिर जो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, और दूसरी किताब है अमन के फरिश्ते, ये दोनों किताबें हिंदी में हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में हैं और राजपाल एंड सन्स ने प्रकाशित की हैं।
0: राइट, देन राजकुमार पाल UP जौनपुर से लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी बातें सुन के मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। हरियाणा पुलिस के एक कांस्टेबल हैं, वो आपको सलाम भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपकी बहादुरी और राष्ट्र सेवा को सलाम, मैं हरियाणा पुलिस में एक सिपाही हूं लेकिन हमारी सीमाएं आप जैसे वीरों की वजह से सुरक्षित हैं, ईश्वर आपको सदैव स्वस्थ मस्त और व्यस्त रखें, रामधारी अवाना। और ये किस जगह पे हैं वो सिक्योरिटी कारण से हम लोग नहीं बता सकते, बट साथ ही साथ कश्मीर से एक मैसेज आया है कठुआ डिस्ट्रिक्ट से, एंड केश राजपूत है वो एक मैसेज भेज रहे हैं। मेरे पास लगभग 12 मिनट बचे हैं सर, कैन वी डू सम टफ टॉकिंग?
1: या श्योर।
0: ओके, नाउ दिस इज द रियल टॉक सर, इसमें कोई भी स्क्रीनिंग नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत सारी बातें हुई, अवेयरनेस हुई, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि ऑफकोर्स वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ मॉडर्न एरा कॉम्बैट, लेकिन हमारी आर्मी में, हमारी आर्म्ड फोर्सेज में दिन पर दिन कोई ना कोई इनोवेशन, कोई क्रिएशन अलग सी तो हो ही रही हो।

0: हाँ, आप अखबार में पढ़ते हैं
1: जी
0: और पब्लिसाइज भी होती है कई चीज़ें,
1: ओके
0: और लड़ाई के मायने बदल रहे हैं, किस तरीके से जंग लड़ी जाती है वो मायने बदल रहे हैं,
1: ओके
0: नए नए इक्विपमेंट आ रहे हैं, ड्रोन, सैटेलाइट्स और बाकी प्रिसीजन वेपन्स आ रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, उनका आउटलुक भी चेंज हो रहा है।
1: ओके
0: इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर इज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, दी वैल्यू ऑफ नैरेटिव। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो चेंज हो रही हैं और होनी भी चाहिए।
1: मुझे ये बताइए, अभी जैसे ईरान, अमेरिका, इज़राइल को लेके जो भी वहाँ पे कॉम्बैट हो रहा है, या कहीं पर भी विश्व भर में यूक्रेन, रशिया को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो वहाँ पर भी हमारे कोई ना कोई इंटेलिजेंस, कोई कोई टैप तो रखते होंगे ना कि क्या क्या वेपन यूज़ हो रहा है, कौन सा वेपन कहाँ काम आ रहा है, कितना यूज़फुल है, नहीं है। एम आई राइट टू मैंशन लाइक दैट?
0: यस, बिकॉज
1: ओके
0: आर्मी इज ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ये नहीं
1: यस
0: कि सिर्फ हमारी सेना, बट वॉर्स कैसे लड़ी जा रही हैं उसकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी कैन रिफाइन आर टैक्टिक्स, वी कैन रिफाइन दी वे वी यूज़ अवर वेपन्स। तो दिस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। और सेना में लोगों को लगता है कि जब लड़ाई नहीं हो रही तो क्या कर रहे होंगे, जब हम लड़ाई नहीं हो रही थी तो हम लड़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं, और उस तैयारी में ये सब स्टडी करना भी शामिल है।
1: ओके सर, मैंने आपसे बोला था मैं सीधे सवाल सिविलियन के पूछूंगा आपसे। 24 घंटे हम लोग चौकन्ने हैं बॉर्डर पे, अपनी स्काईज को देख रहे हैं कि कोई वहां से कोई वर्सेटाइल ऑब्जेक्ट तो नहीं आ रहा।
0: हाँ, ऑब्वियसली आई मीन ना सिर्फ स्काई, टुडे थ्रेट इज फ्रॉम एवरीवेयर। एंड जहाँ तक आपने जंग की बात की, मैं ये भी बोलूँगा कि इट्स नॉट आर्मीज विच फाइट ए वॉर, इट इज़ द नेशंस विच फाइट ए वॉर।
1: जी
0: तो हम सब चौकन्ने हैं, हम सबको चौकन्ना रहना भी चाहिए।
1: तो आपकी इंटेलिजेंस 24 घंटे काम करती है। कुछ देर पहले आपने कहा कि हम हमारे भी कुछ लोग जो हैं सरहद पार जाते हैं, ऐसा नहीं कि उनके आते हैं, हमारे भी जाते हैं। बट लेट मी टेल यू दैट वी आर नॉट बॉर्डरिंग द वेस्ट, वी आर बॉर्डरिंग 360 डिग्री। हमें अपनी रखवाली करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि थ्रेट हमें एक ही कंट्री से, या हमें चौकन्ना नहीं होना बाकी जगह। तो हर जगह का पैटर्न अलग है इंटेलिजेंस का, क्योंकि भाषाएं अलग हैं, टेक्नोलॉजी किसी के पास सुपीरियर है, किसी के पास नहीं है।
0: देखिए, एडवर्सरीज डिफरेंट हैं, हालात डिफरेंट हैं, ज्योग्राफी डिफरेंट है, पॉपुलेशन डिफरेंट है, सो थ्रेट्स भी डिफरेंट हैं, कहीं ना कहीं वो कन्वर्ज भी होती हैं। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से, इंटेलिजेंस के लिहाज से, ये ज़रूरी है कि हम उन डिफरेंट पैटर्न्स को समझें। तो इसीलिए हर तरफ देखना पड़ता है।
1: इज इट ईजी टू प्रिपेयर द स्पाइज और पीपल इन द इंटेलिजेंस, हाउ डिफिकल्ट अ जॉब इट इज किसी भी कंट्री के लिए?
0: इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, ऑफ कोर्स इट इज़ चैलेंजिंग, इट इज़ डेंजरस, बट इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस।
1: एक टफ सवाल पूछ लूं सर,
0: पूछिए, आप
1: अगर
0: टफ ही
1: आपका
0: सवाल पूछ रहे हैं।
1: आपका मन करे तो जवाब दीजिएगा। जब हम कहते हैं हमें इंटेलिजेंस चाहिए, तो इट्स नॉट लिमिटेड टू आर ओन कंट्रीमैन, इट कैन एक्सपैंड टू वेरियस अदर नेशनैलिटीज ऑल्सो, इज दैट ट्रू सर?
0: हाँ, अगर आप देख ही रहे हैं रोज दुनिया में क्या हो रहा है,
1: जी
0: हर जगह कोई ना कोई एजेंट पकड़ा जा रहा है, सो यू यूज ऑल मीन्स एट योर डिस्पोजल।
1: राइट। एक रसगुल्ला खिलाने का मन कर रहा है। आपको कोई भी प्यार व्यार नहीं हुआ सर? यू वर नेवर रोमांटिक इन योर लाइफ?
0: देखिए, हर इंसान रोमांटिक होता है,
1: आप भी थे।
0: और थे नहीं हैं लेकिन किस मद्देनजर, किस मायने में है वो थोड़ा सा
1: नहीं, बट
0: कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट, बट
1: देश देश
0: यस।
1: से बहुत प्यार है, माय फर्स्ट लव। ठीक है सर, आपने गाना अपनी प्लेलिस्ट में हमें दिया है, बाहों में चले आ, इसका क्या रीजन है?
0: हाँ, ये पुराना गाना है, अनामिका पिक्चर का, मूवी का।
1: कोई ना कोई तो रीजन
0: और
1: होगा सर।
0: हाँ, एक मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी, उनको बहुत अच्छा लगता था ये
1: ओहो
0: गाना।
1: थी सर,
0: हाँ थी, और
1: ओहो
0: वो गाती भी थी ये गाना। और मैंने आपको बाकी गाने भी दिए हैं जो बाकी दोस्तों के हैं, लेकिन आप इसी गाने को पकड़ के बैठ गए हैं, लेकिन ये
1: हाँ,
0: गाना बहुत अच्छा है, तो
1: बहुत
0: इसको
1: सॉलिड नंबर
0: इसको प्लीज़ सुनवाइए।
1: सर। वो जो लव स्टोरी थी वो

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं, मेरा नाम है मुनीष जौली और एक और गाना है जिसकी ख्वाहिश यहाँ पे हमारे ब्रिगेडियर साहब ने रखी है और वो गाना बड़ा सॉलिड है, मिक्का सिंह का। व्हाट अबाउट दिस? आई मीन वी आर जस्ट गेटिंग क्लोज, यू नो, एट द ब्रिंक ऑफ द आर टू क्लोज दिस शो, बट व्हाट इज द सीक्रेट अबाउट दिस सॉन्ग सर? एकदम से मतलब पुरानी और फिर नया दिल में बजी गिटार।
1: नहीं, जब आपने मुझे बताया कि आप पसंदीदा गाने बनाएं
0: जी
1: बताएं, तो फिर एक मेरे अच्छे दोस्त हैं
0: जी
1: और हम दोनों मिलके गाना बहुत एंजॉय करते थे।
0: ओके।
1: तो बस सुनी की याद आ गई और उन्होंने बोला ये गाना अगर नहीं बजेगा तो फिर देख लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा।
0: सर आप परफेक्ट बंदे हो इंटेलिजेंस के लिए, सारी बातें बोल देते हो पर कुछ भी नहीं बोलते। मेरे एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त हैं, उन्होंने कहा था अगर नहीं बजेगा तो बाहों में चले आओ, चलाया था बहुत अच्छा लगता था। पहला नशा चलाया क्योंकि वो अच्छा था, कजरा रहे डांस करते थे बस, वो बताया आपने कुछ भी नहीं, यू नेवर रिवील्ड, बट आई थिंक इंडियन आर्मी ने सही बंदे को चूज किया सर इंटेलिजेंस के लिए।

0: तो समय ना हमारे पास बहुत कम है। क्या होता है ना, जब हम अपने फौजी भाइयों के साथ, फौजी अफसरों के साथ जो प्रोग्राम करते हैं ना, हमें लगता है कि एक घंटा बहुत कम है, अब बातें और होनी चाहिए। बट यू आर बीन हर्ड अक्रॉस द बॉर्डर, यू आर बीन हर्ड अक्रॉस द ग्लोब। बहुत सारे SMS, व्हाट्सएप मैसेजेस यहाँ पर हमारे पास आए हैं। सब लोग आपको बधाई दे रहे हैं, दे आर फीलिंग वेरी प्राउड। लेकिन अब यहाँ से आपका सफर कहाँ जाता है, वेयर डू यू टेक योरसेल्फ फ्रॉम हियर?
1: हम तो फौज में कुछ कह नहीं सकते कि अगला मुकाम, अगला पड़ाव क्या होगा। तो जहाँ भारतीय सरकार, भारतीय सेना में भेजेगी, वहाँ जाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि वापस जम्मू एंड कश्मीर की तरफ रुख करेंगे और वही करते रहेंगे जो अब तक करते रहे हैं, उसी शिद्दत, उसी जुनून के साथ।
0: तो वो एक कहावत ही ना, इफ देयर इज हेवन ऑन अर्थ इज देयर इन कश्मीर, कुछ अलग बनाता है आपको। आपको प्यार हो गया उस जगह से, आप गए थे भारत माँ की रक्षा करने, आप रक्षा भी कराए और वहाँ अपना दिल भी दिया है कश्मीर को।
1: नहीं, दिल, हाँ दिल की तो बात है, जम्मू कश्मीर मुझे पसंद है, लेकिन जहाँ पर भी मैंने राजस्थान में नौकरी की है, मैंने अब्रॉड नौकरी की है, UN के साथ नौकरी की है, वहाँ भी अच्छा लगा। तो इट इज़ नॉट द प्लेस एक्चुअली, इट इज़ द पीपल अराउंड यू एंड हमारा जो एक इकोसिस्टम है भारतीय सेना का, वो बहुत मज़ेदार है, आपको हमेशा मोटिवेटेड रखता है।
0: आपने बहुत सारे जॉइंट एक्सरसाइजेस भी किए हैं अलग नेशंस के, डिड विद द US?
1: हाँ, हमारे साथ जापान में मैंने गया हूँ, मैं UK गया हूँ, मैंने सूडान में नौकरी की है यूनाइटेड नेशंस के साथ, और जहाँ पर भी हम गए वहाँ पर भारतीय सेना को एक अलग तरीके से देखा जाता था, बड़े अच्छे तरीके से देखा जाता था, बहुत प्राउड फील होता था, बहुत गर्व महसूस होता था हमारे को दूसरे देश में जाके हिंदुस्तानी सेना का नाम रोशन करने में।

0: एक्चुअली ए ब्लेसिंग।
1: तो अभी चलते चलते, क्योंकि अब समय की पाबंदी है, प्रोड्यूसर साहब ने इशारा कर दिया बहुत जल्दी हमें ये प्रोग्राम क्लोज करना है, आपके फाइनल वर्ड्स, पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है।
0: ये जो भारतीय सेना एक पेशा नहीं है, इट्स ए वे ऑफ लाइफ, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि इस देश की सेवा करें। एंड हमारे सैनिक, वी आर ब्लेस्ड टू हैव वेरी ब्रेव वेरी करेजियस सोल्जर्स, और जो हिंदुस्तानी सेना और तीनों सेनाओं का मैं बात करूँगा, आर्मी नेवी एयरफोर्स की एंड ऑल यूनिफॉर्म फोर्सेस, आई थिंक वी जस्ट सर्व सेल्फलेसली, और हमें उम्मीद है कि इस देश और इस देश के नागरिक भी उसी शिद्दत के साथ देश की सेवा करेंगे जैसे हम करते हैं।
1: It's a sheer privilege to host you, sir.
0: It was extremely good, and the way people were reacting, I think it just motivates us even more. बहुत मजा आया।
1: There are so many जिनके मैं messages नहीं ले पाया, but Brigadier Sushil Tanwar ji, I think जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं और देश की तरफ से, ये मेरा salute कबूल कीजिए सर।
0: Thank you so much, Jai Hind.
1: और इसी तरह हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे संदेश टू सोल्जर्स में।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं और आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

एसपी बाला सुब्रमण्यम और रोजा को अभी आपने सुना। फिल्म थी रोजा, संगीत दिया था ए आर रहमान ने,

दिल और मेहंदी और साथियों को भी अपना सुना। फिल्म थी रंग दे बसंती, गीत प्रसून जोशी का था, धुन तैयार की थी AR रहमान ने।

आनंद बख्शी की शब्द रचना अभी आपने सुनी आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में। फिल्म थी अंधा कानून। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म संगीत इस समय श्रोता सुन रहे हैं FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

रॉक स्टार फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ें थी ए आर रहमान मोहित चौहान की, संगीत दिया था ए आर रहमान ने।

अशोक भोसले और किशोर कुमार के गाए ये वादा रहा फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं और अब युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को हमारा स्नेह भरा नमस्कार। मित्रों, इतिहास के पन्नों में 6 अगस्त 1945 का दिन काले अक्षरों से लिखा हुआ है। इस दिन सुबह 8:15 पर इंसानियत ने अपना सबसे भयानक चेहरा देखा। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया और उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर भी बम गिराया। एक पल में ही 70,000 से ज्यादा लोग राख हो गए। स्कूल जा रहे बच्चे, खेत में काम करते किसान, अस्पताल में मरीज, कोई नहीं बचा। और जो बच गए उन्हें हिबाकुशा कहा जाता है। उनके शरीर जल गए और आने वाली पीढ़ियों को भी रेडिएशन की बीमारियां झेलनी पड़ी। शहर की ईंट तबाह हो गई और जैसे धरती पर नरक उतर आया हो। ये जश्न का दिन नहीं, ये चेतावनी का दिन है उन लाखों मासूमों को याद करने का जो इस युद्ध की भेंट चढ़ गए। साथ ही हमें शांति का संकल्प भी दिलाता है कि दुनिया को याद दिलाना है कि युद्ध का हल युद्ध

शांति है। नो मोर हिरोशिमा, नो मोर नागासाकी, फिर कभी ऐसा ना हो, ये परमाणु निरस्तीकरण जरूर लागू होना चाहिए। आज का हिरोशिमा देखेंगे तो आज वही पीस मेमोरियल पार्क है और हर साल 6 अगस्त को 8:15 पर साइरन बजता है, 1 मिनट का मौन रखा जाता है और हजारों बच्चे हजारों कागज के सफेद क्रेन उड़ाते हैं जो कि शांति का प्रतीक है। एक बम ने शहर मिटा दिया, एक इरादा पूरी दुनिया बचा सकता है। हिरोशिमा हमें सिखाता है कि ताकत हथियार में नहीं, इंसानियत में है। 6 अगस्त हमें याद दिलाता है कि विज्ञान का इस्तेमाल विनाश के लिए नहीं, जीवन के लिए होना चाहिए। और आइए इस दिन शांति, प्रेम और भाईचारे की कसम खाएं और हमारा भारतवर्ष विश्व में शांति के लिए सबसे ज़्यादा प्रयासरत रहता है और उसकी भूमिका स्पष्ट है कि परमाणु हथियारों का उपयोग कदापि किसी दूसरे देश या नरसंहार के लिए कतई नहीं होना चाहिए और वो विश्व में अपने देश को इसी रूप में प्रस्तुत करता है।

0: सक्सेस की उड़ान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ की डायरेक्ट फ्लाइट्स दे कॉर्पोरेट और बिजनेस को कनेक्टिविटी की राइट चॉइस।
1: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वे ड्रीम्स टेक ऑफ।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: साथियों, अब युवाणी कार्यक्रम में सुनवाते हैं युवा वार्ता। देश को महाशक्ति बना सकती है युवा पीढ़ी। वार्ताकार हैं भावना सारस्वत।
2: कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। गोस्वामी तुलसीदास जी के इस कथन के अनुसार संसार कर्म क्षेत्र है, इसलिए तो कहा गया है सकल पदार्थ है जग माही, कर्म हीन नर पावत नाही। कर्म के बगैर संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः कर्म करना मनुष्य के लिए परम आवश्यक है। बिना ऊर्जा अथवा शक्ति के कर्म नहीं किया जा सकता। कोयला, तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस, विद्युत, अणु, ये सभी शक्ति के साधन हैं, किंतु इन सभी से श्रेष्ठ तथा इन सभी को चलित करने वाला शक्ति का साधन है मनुष्य। जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की आयु में व्यक्ति शक्ति संचय करता है। उसके बाद युवावस्था में व्यक्ति शक्ति पुंज के रूप में अपने जीवन में कुछ उपलब्धि प्राप्त करने की स्थिति में होता है। युवावस्था के बाद प्रौढ़ एवं वृद्ध अवस्था में मनुष्य की कर्मेंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। अतः यह सुनिश्चित है कि व्यक्ति अपने परिवार के लिए, समाज के लिए अथवा राष्ट्र के लिए कुछ योगदान करना चाहता है तो वह केवल अपनी युवावस्था में ही कर सकता है। इसलिए हम युवावस्था को जीवन का स्वर्णकाल भी कह सकते हैं। युवा व्यक्ति साहस, शक्ति, उमंग, उत्साह, पराक्रम, शौर्य तथा उद्यमशीलता का प्रतीक होता है। वह किसी भी जोखिम से नहीं घबराता। हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि युवा शक्ति ने हमारे देश को विश्व का सिरमौर बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। शिवाजी, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे यशस्वी युवाओं को देश कभी नहीं भुला सकेगा। खतरों से खेलना युवा

का शौक होता है। जब तक व्यक्ति खतरों से घबराता है तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकता और न अपने समाज अथवा देश के लिए कुछ भी कर सकता है। जिस देश के पास युवा शक्ति जितनी अधिक होगी वह देश उतनी ही अधिक उन्नति कर सकेगा। युवा एवं शक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अतः अपवाद स्वरूप कभी कभी प्रौण एवं वृद्ध व्यक्ति भी शक्ति के बल पर युवाओं जैसा कार्य करके देश तथा समाज की सेवा करते हैं। इसी प्रकार यदि किसी युवावस्था के व्यक्ति में शक्ति का अभाव है तो वह युवा कहलाने की योग्यता नहीं रखता। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक घटना युवाओं के लिए प्रेरणास्पद है। युवा स्वामी जी मां काली अर्थात शक्ति के उपासक थे तथा स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद की ख्याति उन दिनों तेजी से बढ़ रही थी। प्राय प्रतिदिन

विवेकानंद की ख्याति उन दिनों तेजी से बढ़ रही थी। प्रायः प्रतिदिन उनके सत्संग के लिए लोगों का तांता लगा रहता था। कोई उनके विदेश भ्रमण के रोचक संस्मरण सुनने को उत्सुक रहता तो कोई उनसे भक्ति व भगवान के संबंध में जानने की लालसा लेकर आया करता। एक दिन दुबला पतला युवक कोलकाता में स्वामी जी के पास आया। प्रणाम करने के बाद वह बोला, महाराज मैं आपसे गीता के विषय में जानने आया हूँ, गीता का सार समझाने की कृपा करें। स्वामी जी ने उसके पतले दुबले शरीर पर दृष्टि डालते हुए कहा, 6 माह तक प्रतिदिन 2 घंटे फुटबॉल खेलो, फिर आना तो गीता पढ़ाऊंगा। युवक ने स्वामी जी के शब्द सुने तो चकित होकर बोला, भला गीता और फुटबॉल का क्या संबंध? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा भगवत गीता वीरों और धर्म रक्षकों का शास्त्र है। यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा अधर्म व अन्याय के विरुद्ध संघर्ष के लिए अर्जुन को तत्पर करने वाले उपदेशों का संकलन है। गीता के उपदेशों का मर्म वही समझ सकता है जिसका शरीर भी बलिष्ठ हो। अतः सवेरे उठकर भगवान के स्मरण के बाद दौड़ा करो। नियमित व्यायाम से शरीर पुष्ट होगा। गीता पढ़ने के बाद यदि अन्याय से संघर्ष का मौका मिला तो गीता को जीवन में उतार सकोगे। स्वामी जी युवकों को सबसे पहले शरीर को पुष्ट बनाने की प्रेरणा दिया करते थे। वह कहते थे कि स्वस्थ व्यक्ति ही सत संकल्पों का पालन कर सकता है। युवा वर्ग बलिष्ठ रहे इसके लिए जरूरी है कि वह नैतिक तथा चारित्रिक गुणों से युक्त हो। इनके अभाव में ना तो वह स्वस्थ रह सकता है और न ही देश और समाज की कोई सेवा कर सकता है। किंतु दुख की बात है कि वर्तमान समय में भारतीय युवा वर्ग के एक भाग में कुछ बुराइयां घर करती जा रही हैं। इनमें सर्वप्रमुख है नशे की लत। तरह तरह की मादक पदार्थों का प्रयोग करके कुछ युवक शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव से अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति उपेक्षा का भाव अनेक युवकों में विकसित हो रहा है। फिल्मों आदि के प्रभाव से युवकों में हिंसा वृत्ति भी बढ़ रही है। ऐसी बुराइयों पर काबू पाना आवश्यक है। युवा वर्ग की कुछ वास्तविक समस्याएं भी हैं। बेरोजगारी एक भयंकर समस्या है। यह अनेक समस्याओं की जड़ है। बेरोजगार युवकों में निराशा की भावना भर जाती है और वे समाज विरोधी कार्यों की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। तोड़फोड़ की गतिविधियां या नशीली दवाओं के सेवन का बड़ा कारण युवा वर्ग की निराशा है। पुरानी पीढ़ी द्वारा युवा वर्ग के प्रति उदार दृष्टि का अभाव तथा युवकों को सदैव संदेह की दृष्टि से देखना भी अनेक समस्याएं पैदा करता है। इससे युवकों में कुंठा की भावना घर कर जाती है और वे विद्रोह कर देते हैं। वास्तव में युवा शक्ति को उचित अवसर तथा दिशा न मिलने से ही समस्याएं पैदा होती हैं। इस शक्ति का समुचित उपयोग किसी भी राष्ट्र को उन्नति के शिखर तक पहुंचा सकता है। अध्ययन काल में भी युवा वर्ग अनेक सामाजिक कार्य करता है। राष्ट्रीय सेवा योजना तथा अन्य ऐसी संस्थाओं के कार्यक्रमों के अंतर्गत युवक श्रमदान करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर रक्तदान भी करते हैं। राष्ट्रीय संकट काल में युवक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेशनल कैडेट कोर अर्थात NCC के प्रशिक्षण द्वारा युवक देश की रक्षा के लिए स्वयं को तैयार करते हैं और समय आने पर राष्ट्र हित में अपने प्राणों की बाजी लगाने से भी नहीं हिचकते। वास्तव में युवा वर्ग नया युग लाने वाला होता है। युवक जीवन में कुछ विशेष कार्य करने की इच्छा रखता है, इसलिए वह अनेक दिशाओं की खोज करता है। विज्ञान के क्षेत्र में भी युवा वर्ग पृथ्वी से ऊपर अनंत आकाश में तथा पृथ्वी के नीचे रसातल तक पहुंचने के लिए विभिन्न प्रकार के आविष्कार और अनुसंधान में रत रहता है। इस बात का यह प्रमाण है कि भारत का युवा वैज्ञानिक आज विश्व के विभिन्न देशों में विज्ञान, चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अच्छा काम करके देश का नाम रोशन कर रहा है। किंतु राष्ट्रहित में इस प्रतिभा पलायन को रोकना अति आवश्यक है। हमारे देश का युवा सामाजिक क्रांति लाकर देश में नवीन समाज की रचना के लिए प्रयासरत है। आज के युवा वर्ग के कार्यों से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि इसका रचनात्मक कार्यों के प्रति झुकाव निरंतर बढ़ रहा है। यही कारण है कि आज देश की छात्र अथवा युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति का श्रेय प्राप्त है। यदि देश के छात्र एवं युवक देश के प्रति समर्पण भाव से कार्य करें तो निश्चित रूप से भारत एक महाशक्ति के रूप में विकसित होगा। आज के युवा द्वारा देश की युवा शक्ति का आह्वान जिस सुंदर ढंग से किया गया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि देश की युवा पीढ़ी देश को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए बेताब है। अब भारत भूमि को हमें पहचान नई दे जाना है। मिटा के हर दिल से नफरत, हर दिल में प्यार जगाना है। रूढ़ियों की जंजीरें तोड़ो, अब तो चैन से जीने दो। भारत की हर बेटी को अब लक्ष्मीबाई बनने दो।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई

0: भाई मिलकर आज कसम ये लो, पांव रखे जो अपनी धरा पे, सब कुछ सबक सिखाना है, लेकर हाथ तिरंगा मुझको दुनिया में फहराना है, मिटा के हर दिल से नफरत, हर दिल में प्यार जगाना है। समाज के जागरूक वर्ग को आगे आकर युवा वर्ग को प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता है। युवकों को समस्या मुक्त करना बहुत आवश्यक है। आज प्रत्येक युवक अपने भविष्य को लेकर चिंतित दिखाई दे रहा है। युवकों में बेरोजगारी को दूर करके आशा का संचार करना होगा, उनकी कल्पनाओं और इच्छाओं का सम्मान करना होगा, उनकी शक्ति और उत्साह को रचनात्मक कार्यों में लगाना होगा। हमारे देश में युवा शक्ति को पहचानने और उसे दिशा देने की बहुत आवश्यकता है। युवा शक्ति के बल पर हमारा देश अतीत में एक यशस्वी तथा महान देश के रूप में विख्यात रहा है। विश्व पटल पर भारत को सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। धीरे धीरे समय के प्रभाव के साथ युवाओं की जीवन धारा बदलती गई। उनके जीवन में कर्म का स्थान भोगवाद एवं विलासिता ने ले लिया। अर्थवाद ने जीवन के मूल्यों को बदल दिया। अतः देश की स्थिति विश्व पटल पर कमजोर होती गई। किंतु ऐसा नहीं है कि इस स्थिति से उभरा ना जा सके। हमारे पास प्राकृतिक संपदा का अपार भंडार है, केवल युवा शक्ति को सजग होना है। जिस दिन युवा पीढ़ी देश की सेवा में प्राणपट से जुट जाने का संकल्प लेगी, उसी दिन से भारत के महाशक्ति बनने का सपना साकार होना प्रारंभ हो जाएगा। विगत 12 जनवरी को हमारे देश में युवा दिवस मनाया गया है। अतः युवा पीढ़ी को एकजुट होकर भारत को महाशक्ति बनाने के लिए संकल्पबद्ध हो जाना चाहिए।
1: देश को महाशक्ति बना सकती है युवा पीढ़ी। साथी सुन रहे थे अभी ये युवा वार्ता। वार्ताकार थी भावना सारस्वत।

0: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या
1: आराम से पहुँचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: साथियों, आज सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पुण्यतिथि है। 6 अगस्त 1925 को आधुनिक भारत के संस्थापकों में से एक सुरेंद्रनाथ बनर्जी का निधन हुआ था। ब्रिटिश राज के दौरान भारत के शुरुआती राजनीतिक नेताओं में से एक सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम सबसे अग्रगणी है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक बंगाली परिवार में जन्मे सुरेंद्रनाथ बनर्जी अपने पिता की उदार और खुले विचारों वाली सोच से बहुत प्रभावित थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु, राष्ट्र के शिक्षक के रूप में भी प्यार से जाना जाता था। बनर्जी भारत के पहले राजनीतिक संगठनों में से एक इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक भी थे। 1868 में बनर्जी भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए इंग्लैंड गए और यद्यपि उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, लेकिन उनकी सही उम्र को लेकर विवाद के कारण उन्हें सेवाओं में शामिल होने से रोक दिया गया। 1871 में उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्हें सिलहट जिले, जो कि अब बांग्लादेश में है, सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात

किया गया, परंतु अंग्रेजों के विरोध में इन्होंने अपना पद से त्यागपत्र दे दिया था। बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में बम्बई में हुई थी, विलय कर दिया, क्योंकि दोनों के दृष्टिकोण और लक्ष्य समान थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी पुणे में 1895 और अहमदाबाद 1902 में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे। बनर्जी ने 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ सबसे प्रमुख और मुखर नेताओं में से एक थे। उन्होंने न तो चरमपंथी विचारधारा को स्वीकार किया और न ही महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने सरोजिनी नायडू और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे अन्य नेताओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी थे। बनर्जी ने स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 का समर्थन किया, जिसकी अधिकांश भारतीयों ने निरर्थक होने के कारण आलोचना की थी। धीरे धीरे एक उदारवादी भारतीय राजनीतिक के रूप में बनर्जी की लोकप्रियता घटने लगी और ब्रिटिश लोग उन्हें सरेंडर नॉट बनर्जी कहकर पुकारते थे। ब्रिटिश सरकार ने उनके राजनीतिक समर्थन के लिए उन्हें 1921 में नाइट की उपाधि से भी सम्मानित किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक राष्ट्र निर्माण नामक एक महत्वपूर्ण कृति प्रकाशित की, जिसके लिए उन्हें याद किया जाता है, और 1921 से लेकर 1924 तक सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्थानीय शासन मंत्री का पद भी संभाला और उनका 6 अगस्त 1925 को पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में निधन हो गया। आज भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम बैरकपुर राष्ट्रगुरु सुरेंद्रनाथ कॉलेज, सुरेंद्रनाथ इवनिंग कॉलेज और सुरेंद्रनाथ कॉलेज फॉर वुमेन जैसे संस्थानों के माध्यम से मनाया जाता है। आज के उनके पुण्यतिथि के इस अवसर पर उनको शत शत नमन।

0: FM 102.9 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 6 बजने को है, कुछ ही पलों में समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके अंतर्गत देश के प्रचुर कृषि अवशेष, पशु गोबर, गन्ना अपशिष्ट, नगरपालिका जैविक अपशिष्ट और अन्य जैव संसाधनों को स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद में परिवर्तित कर ग्रामीण आय तथा राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
2: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
1: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस पर कुल 8,970 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। विधेयक में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। उधर लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग है और इन्हें एक ही नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने बताया कि 19

0: लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। श्री जोशी ने कहा कि योजना के अंतर्गत 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए कमाए हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपने कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख से अधिक रुपए का जुर्माना भी लगाया जो पीड़िता को दिया जाएगा। न्यायालय की खंडपीठ ने तेजपाल को पद पर रहते हुए दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न का दोषी पाया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला है। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्ष से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। तन्वी शर्मा ने कोरिया मास्टर्स महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर में तन्वी ने श्रेयांशी वलिशेट्टी को हराया। अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है हमारे यहाँ से आशेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आज संध्या 6:50 पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किसानवाणी कार्यक्रम होगा। प्रादेशिक समाचार होंगे संध्या 7:20 पर और रात 8:20 पर विधानमंडल समीक्षा होगी। और ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

संसद समीक्षा प्रसारित की जाएगी आज रात 8 बजे, रात 10 बजे प्रादेशिक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा और ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

देशकान का समय रहेगा आपसे कुछ देर बाद, संध्या 6:10 और रात 8:15। साहित्य कार्यक्रम में देश समारोह में श्रोता लेंगे तीर्थ स्थल ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में। वार्ताकार होंगे कैलाश कुमार कौशिक। समय रहेगा संध्या 6:15।

फिल्मी भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन का समय रहेगा आज सायं 6:30।

संध्या 7:31 पर श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा शाम सुहानी। एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा रात 8:30 पर। चिटपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने का समय रहेगा रात 9:15।

हिंदी समाचार प्रसारित किए जाएंगे आज रात 8:45 पर और रात्रि 11 बजे। अंग्रेजी समाचार होंगे रात 9 बजे और रात्रि 11:05 पर। हमारी दूसरी सभा का समापन होगा रात 11:10 पर। यह था आज का कार्यक्रम विवरण।

एफएमई तो 2.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं देशभक्ति परक रचना।

0: सोम ठाकुर की शब्द रचना भी आपने सुनी इंदिरा शर्मा के स्वर में।
1: सक्सेस की उड़ान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ की डायरेक्ट फ्लाइट्स दे कॉर्पोरेट और बिजनेस को कनेक्टिविटी की राइट चॉइस।
2: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वे ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
4: आराम से मैडम।
3: क्या
4: आराम से पहुँचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
5: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। ब्रज साहित्य कार्यक्रम में आज देव समारोह में दिलवाते हैं जानकारी तीर्थ स्थल ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में। वार्ताकार हैं कैलाश कुमार कौशिक।
6: हमारा देश तीर्थन को देश है। यहाँ पे हर एक प्रदेश में काऊ न काऊ देवी देवता के नाम पे तीर्थ स्थल हैं। धन्य ऐसे देश को। ऐसे ही मध्य प्रदेश में खंडवा जिलो है। यहाँ ते 70 किलोमीटर की दूरी पे और मोरटक्का गांव ते 14 किलोमीटर की दूरी पे नर्मदा नदी के बीच मानधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पे स्थित ओंकारेश्वर एक हिंदू मंदिर है। जे द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार में बनो भयो है। यहाँ पे दो मंदिर स्थित हैं, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। ओंकारेश्वर को निर्माण नर्मदा नदी ते स्वतः ही भयो हतो। जे नदी भारत की पवित्रतम नदीन में ते एक है। ओम शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुखते भयो हो। वेद को पाठ जाके उच्चारण किए बिना ना होवे है। जा ओंकार को भौतिक विग्रह ओंकार क्षेत्र है, जा में 68 तीर्थ हैं। यहाँ पे 33 करोड़ देवता परिवार सहित निवास करे हैं। यहाँ पे दो ज्योतिर्लिंगन सहित 108 प्रभावशाली शिवलिंग हैं। वैसे तो हमारे देश में प्रमुख रूप से 12 ज्योतिर्लिंग हैं, पर अकेले मध्य प्रदेश में ही दो ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं, जिनमें से एक उज्जैन में महाकाल के रूप में और

दूसरे ओंकारेश्वर ममलेश्वर के रूप में विराजमान है। राजा मानधाता ने यहाँ नर्मदा नदी के किनारे जा पर्वत पर घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कियो और शिव जी के प्रकट हेवे पे उनते यही निवास करवे को वरदान लियो हो। जब ते जे प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओंकार मानधाता के रूप में पुकारी जावे लगी। नर्मदा के क्षेत्र में ओंकारेश्वर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। शास्त्रन की मान्यता है कि कोई हु तीर्थ यात्री देश के सवे तीर्थ करवे लेवे जब तक वो ओंकारेश्वर आए के किए गए तीर्थन को जल लाए के यहाँ पे नाय चढ़ावे, बाकी सब तीर्थ अधूरे माने जावे हैं। ओंकारेश्वर तीर्थ के संग नर्मदा को विशेष स्थान है। शास्त्र मान्यता के अनुसार यमुना जी में 15 दिना स्नान और गंगा जी में 7 दिना स्नान को जो पुण्य फल होवे वो पुण्य फल नर्मदा जी के दर्शन मात्र ते होवे है। ओंकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र में 24 अवतार माता घाट, सीता वाटिका, धावड़ी कुंड, मार्कंडेय शिला, मार्कंडेय संन्यास आश्रम, अन्नपूर्णा आश्रम, विज्ञानशाला, बड़े हनुमान, खेड़ापति हनुमान, ओंकार मठ, माता आनंदमयी आश्रम, रण मुक्तेश्वर महादेव, गायत्री माता मंदिर, सिद्धनाथ, गौरी सोमनाथ, आड़े हनुमान, माता वैष्णो देवी मंदिर, चांद सूरज दरवाजे, विष्णु मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, गजानन महाराज को मंदिर, काशी विश्वनाथ को मंदिर, नरसिंह टेकरी, कुबेरेश्वर महादेव, चंद्र भोलेश्वर महादेव मंदिर प्रमुख रूप से दर्शनीय है। जा मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने तपस्या करी हती और शिवलिंग की स्थापना करी हती, जाकू शिव जी ने धनपति बनायो। कुबेर के स्नान के काजे शिव जी ने अपनी जटान के बाल ते कावेरी नदी उत्पन्न करी, जे नदी कुबेर मंदिर के बाजू ते निकल के नर्मदा में मिले है। जागू छोटी परिक्रमा में जाए वाले भक्तन ने जागू प्रत्यक्ष रूप से देखो है। जी कावेरी नदी ओमकार पर्वत को चक्कर लगावते भये नर्मदा नदी में मिले है, जाकू नर्मदा कावेरी को संगम कहो जावे है। जा ओंकारेश्वर मंदिर पर प्रतिवर्ष दिवाली की द्वादशी की रात को ज्वार चढ़ावे को विशेष महत्व है। जा रात्रि को जागरण होवे है और धनतेरस की सुबह 4 बजे ते अभिषेक पूजन होवे है। जाके बाद कुबेर महालक्ष्मी को महायज्ञ हवन भंडारो होवे है। लक्ष्मी वृद्धि पैकेट वितरण होवे हैं। जाकू घर पर ले जाए के दिवाली की अमावस्या को विधि के अनुसार धन रखवे की जगह पे रखो जावे है। जाते घर में प्रचुर धन के संग संग सुख शांति आवे है। जा अवसर पर हजारों भक्त दूर दूर से आवे हैं और कुबेर को भंडार प्राप्त कर धन के संग संग सुख शांति पावे हैं। नर्मदा नदी के किनारे पर जो बस्ती है बाकू विष्णुपुरी कहो जावे है। यहाँ नर्मदा पे पक्के घाट हैं। नर्मदा को नौका या सेतु ते पार करके यात्री मानधाता द्वीप में पहुँचे हैं और यहाँ पे स्नान करके और सीढ़ी ते ऊपर चढ़ के ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन करे हैं। ओंकारेश्वर मंदिर 4 मंजिला है और जाकी हर एक मंजिल पे अलग अलग देवता विराजमान हैं। जा द्वार ते हम मंदिर में प्रवेश करे हैं वो द्वार छोटो है, ऐसो लगे के मानो गुफा में जा रहे हों। पहली मंजिल पे ओंकारेश्वर के दर्शनों में हैं। श्री ओंकारेश्वर जी की मूर्ति मंदिर के शिखर के ठीक नीचे न है के एक ओर हटके है। मूर्ति के चारों ओर जल भरो है। पास में ही पार्वती जी की मूर्ति है और पंचमुखी गणेश जी की मूर्ति है। ओंकारेश्वर मंदिर में सीढ़ी चढ़ के दूसरी मंजिल पर जाएवे पे श्री महाकालेश्वर लिंग मूर्ति के दर्शन होमे हैं। ये मूर्ति शिखर के ठीक नीचे है।

0: श्री महाकालेश्वर के दर्शन के बाद फिर सीढ़ी चढ़ के तीसरी मंजिल पर पहुँचे हैं। तीसरी मंजिल पर श्री सिद्धनाथ जी के दर्शन हुए हैं और चौथी मंजिल पर श्री गुप्तेश्वर और ध्वजाधारी शिखर देवता के दर्शन हुए हैं। श्री ओंकारेश्वर जी की परिक्रमा में रामेश्वर मंदिर, गौरी सोमनाथ, अविमुक्तेश्वर, ज्वालेश्वर, केदारेश्वर आदि कई मंदिरन के दर्शन है जावे हैं। श्री ओंकारेश्वर से लगभग 1 मील की दूरी पर जहाँ कावेरी धाम नर्मदा से अलग भई है, वहाँ पे 24 अवतार तथा पशुपतिनाथ जी की मंदिर है और बातें कछु दूरी पे जमीन पे लेटी भई रावण की मूर्ति है। ओंकारेश्वर जावे के काजे काउ खास मौसम की जरूरत ना हुए है, यहाँ पे साल में कबू जा सके हैं। जुलाई ते अप्रैल को समय अच्छो है, अक्टूबर ते मार्च को समय सबसे ज़्यादा अच्छो है, लेकिन दशहरा दीपावली त्योहारन के समय यहाँ जाए वो बहुत ही लाभदायक और सिद्धिदायक हुए है। और अगर मानसून यानी बरसात के समय में तो यहाँ पर धरती मानो हरियाली की चुंदरी ओढ़ के विशेष खूबसूरत लगे है। श्रद्धालुन के काजें ठहरवे को प्राइवेट होटल धर्मशालान के अलावा आश्रम की सुविधा हुई है। वैसे जे बहुत बड़ी जगह ना है, फिर यात्रियों को ठहरवे में यहाँ पे कोई परेशानी ना हो गए है। श्री ओंकारेश्वर जावे के काजे सीधी कोई रेल सेवा ना है, यहाँ पहुँचवे के काजे रेल के नज़दीकी स्टेशन इंदौर और खंडवा हैं। ओंकारेश्वर ते खंडवा 70 किलोमीटर और इंदौर ते 80 किलोमीटर की दूरी पे है। इन दोनों शहरों को दुनिया के काउ कोने ते रेल द्वारा पहुँचो जा सके है। वैसे हवाई यात्रा के काजे देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डो इंदौर में स्थित है। यहाँ हवाई अड्डो के द्वारा दुनिया के काउ कोने ते कम समय में पहुँचो जा सके है। रतलाम खंडवा पश्चिम रेलवे मुंबई के रास्ते में पर है। इंदौर या खंडवा ते श्री ओंकारेश्वर को बस द्वारा वो टैक्सी द्वारा पहुँचो जा सके है।
1: देश समारोह में अभी श्रोता ले रहे थे जानकारी तीर्थ स्थल ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में। वार्ताकार थे कैलाश कुमार कौशिक। और इसके साथ ही आज का ब्रज साहित्य कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
2: मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: हो गया इंतजाम।
7: किसका?
6: गुड्डी की फीस का।
7: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
8: RBI कहता है
9: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

हम अपने श्रोताओं को एक बार पुनः याद दिलाना चाहेंगे कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किसानवाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा आज संध्या 6:50 पर और इसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। समय रहेगा आज संध्या 6:50।

आज रात 10 बजे श्रोता सुनेंगे प्रादेशिक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समय रहेगा आज रात 10 बजे।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है और अब प्रस्तुत है फिल्मी भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन।

सुरेश वाडेकर और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म थी नागमणि, बोल महेंद्र दैलवी के थे, धुन तैयार की थी अन्नू मलिक ने।

शकील बदायूनी की शब्द रचना भी आपने सुनी, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों के आवाज़ों में। फिल्म थी घराना, संगीत दिया था रवि ने।

और ये अब सुनते हैं उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों को फिल्म हिमालय पुत्र में। शब्द रचना देव कोहली की है, धुन तैयार की है अनु मलिक ने।

अब यहीं संपन्न होता है FM 102.2 MHz पर। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे, जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों के गाए हिमालय पुत्र फिल्म की इस भक्ति रचना के साथ ही आज का संध्या वंदन कार्यक्रम

0: हाँ रेनु बहनी,
1: भैया कहा जात है कि जल ही जीवन है,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन बहुत से जने ई बात का समझत नहीं है और अथाह पानी जोन है बहावा करत है।
0: लेकिन बहनी हम पंचन का चाही कि हम पानी के इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करी, और यही बदे आपन जो सरकार है वो योजना चलाए रही है प्रति बूंद अधिक फसल।
1: बिल्कुल भैया, काहे कि यहाँ पानी जोन है चाहे मानव हो और चाहे खेती पाती हो, दोनों के लिए वतने जरूरी है। यही बदे जोन है हम पंचे पानी की एक एक बूंद कहीं इस्तेमाल करी और योजना के भरपूर लाभ उठाई।
0: बिल्कुल ठीक कहती हो बहनी, मूल यकरे साथे साथे अपने आसपास जौन चीजें हो रही हैं हम पंचन का वहू केर जानकारी होइक चाहिए।
1: तो भैया काहे न सुन लीन जाए आज की खबरें।
2: CISH लालिमा अमरूद की एक उन्नत एवं अत्यंत संभावनाशील किस्म है, जिसे ICAR केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ द्वारा एप्पल अमरूद के रूप में चयनित किया गया है। इस किस्म के फल गोल मध्यम आकार के तथा आकर्षक गहरे लाल रंग के होते हैं। फलों का छिलका 1.5 सेंटीमीटर से अधिक मोटा होता है, जिससे फल परिवहन एवं भंडारण के दौरान अधिक सुरक्षित रहते हैं। इसका गूदा सख्त होता है तथा मिठास और हल्की अम्लता का उत्कृष्ट संतुलन प्रदान करता है, जिससे इसका स्वाद बेहद आकर्षक बन जाता है। इस किस्म में विटामिन सी 150 से 220 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम तक पाया जाता है, जो इसे पोषण की दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध बनाता है। अच्छी उत्पादन क्षमता, आकर्षक रंग, उत्कृष्ट गुणवत्ता और लंबी शेल्फ लाइफ के कारण ये किस्म ताजे फल के रूप में उपयोग के साथ साथ जूस, जेली, जैम एवं अन्य प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्माण के लिए भी अत्यंत उपयुक्त है। इस किस्म का विकास डॉक्टर शैलेंद्र राजन एवं डॉक्टर राम कुमार द्वारा किया गया है, जबकि डॉक्टर अंशुमान सिंह इसके अनुरक्षक वैज्ञानिक हैं। इसका विकास वर्ष 2015 में किया गया तथा वर्ष 2024 में इसे आधिकारिक रूप से जारी किया गया।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: भैया देखो, अगर कोनो काम समय पर होत है ना, तो हमका मुनाफा जोन है ज्यादा होत है, लेकिन उके खातिर हमका उस समय की जानकारी हो चाहिए कि उस समय पर कौन काम हमका ज्यादा फायदा दे। तो आज की बात में हम ऐसे एक भेंटवार्ता लेके आए हैं, आम के बागों में सामयिक कृषि कार्य,
7: और यही पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्यारे लाल सरोज भैया, और इनसे बतकही किहीन है डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया।
8: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आम की व्यावसायिक बागवानी जहां आप कर रहे हैं वहां

0: इस समय सामयिक कृषि कार्य क्या कुछ करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ से विभागाध्यक्ष फसल उत्पादन प्रभाग डॉक्टर पीएल सरोज साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आम में फलत टूट चुकी है, ऐसे में आम के बागों में सामयिक कृषि कार्य क्या कुछ करें बागवान भाई बहन?
1: नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, आम फलों का राजा है जो अपने स्वाद, मिठास, पौष्टिक एवं औषधीय गुणों के कारण जनमानस में सबसे अधिक लोकप्रिय है। भारत में आज लगभग 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में आम की खेती हो रही है, जिससे करीब 2.5 से 3 करोड़ टन आम का उत्पादन होता है।
0: यानी 2.5 से लेकर के 3 करोड़ टन।
1: जी, आम न केवल राज्य कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है, अपितु लाखों बागवान भाइयों, प्रसंस्करण उद्योगों, निर्यातकों आदि की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। उत्तर प्रदेश में अधिकांश बाग पारंपरिक पद्धति से स्थापित किए गए हैं, जिनकी आयु 30 से 50 वर्ष की हो चुकी है। पौधों की ऊंचाई काफ़ी बढ़ गई है, डालियां आपस में मिल गई हैं, सघनता के कारण प्रकाश एवं आयु का उचित संचरण नहीं हो रहा है।
0: अगस्त का महीना चल रहा है, ऐसे में आम के बागों में कौन कौन से प्रमुख कार्य करें बागवान भाई बहन?
1: सामान्यतः अब इस समय सभी किसान भाई फलों की तुड़ाई लगभग समाप्त कर लिए हैं। अगस्त के महीने में बागों का जो प्रमुख कार्य होता है वह खाद एवं उर्वरकों के प्रयोग का होता है।
0: जी,
1: यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यदि बाग में पानी भरा हुआ है तो खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग न करें। पहले बाग से पानी निकालकर जब खेत जुताई के उपयुक्त हो जाए तो अच्छी तरह से जुताई करके खेत को पहले खरपतवार रहित कर लें। पूर्ण विकसित बाग के लिए सामान्य तौर पर 50 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 1 किलोग्राम नत्रजन, 0.5 किलोग्राम फास्फोरस एवं 1 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है
0: प्रति पेड़।
1: अब अगस्त के महीने में जब हमको खाद देना है तो यहाँ यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि नत्रजन की आधी मात्रा और पोटास की आधी मात्रा तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा को देना है।
0: अच्छा, तत्व के रूप में,
1: या इसे यूं समझें, अगर हमको लगभग 500 ग्राम नत्रजन देना है तो उसके लिए लगभग 1 किलोग्राम यूरिया, 500 ग्राम अगर हमको पोटास देना है तो उसके लिए 800 ग्राम करीब म्यूरेट ऑफ पोटास, और फास्फोरस की पूरी मात्रा लगभग 500 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम DAP को हम दे सकते हैं। 1.5 से करीब 2 मीटर की दूरी पर करीब 1 फीट चौड़ी नाली बनाएं जो करीब 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी हो,
0: यानी गोलाई में
1: नाली को बनाना है, और उसी नाली में अच्छी तरह से नत्रजन, फास्फोरस, पोटास और साथ में जो देसी खाद है सबको मिला लें,
0: गोबर की सड़ी खाद।
1: फिर नाली को बंद कर दें। यदि नमी की कमी है या वर्षा नहीं होती है, ऐसी परिस्थिति में हल्की सिंचाई कर सकते हैं जिससे पोषक तत्व जड़ों तक पहुँच जाए जो स्वस्थ बाग के लिए आवश्यक हैं एवं वृक्ष की वृद्धि, पुष्पन, फलन एवं फल गुणवत्ता में आवश्यक सुधार हुए बहुत ही उपयोगी होता है। कभी कभी किसान भाई कुछ खेतों में, कुछ बागों में हरी खाद जैसे सनई, ढैंचा, लोबिया आदि बोए हैं, यदि अगर उसको बुआई किए हैं तो वह पलटाई का समय आ गया है, मतलब उसकी जुताई करके
0: हरी खाद मिलाने का
1: भी ये समय अगस्त का महीना होता है।
0: डॉक्टर साहब, जैसे दाल में नमक की जरूरत है, उसी तरह फलदार वृक्षों को मुख्य और गौड़ पोषक तत्वों के साथ साथ कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होगी?
1: जी, जैसे हमारे मुख्य पोषक तत्व आवश्यक हैं, उसी तरह फलदार वृक्षों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, अच्छी फलत के लिए, उसके टिकाव के लिए सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता होती है। सामान्य रूप से आम उत्पादन वाले क्षेत्रों में अधिकांश मृदाएँ क्षारीय प्रकृति की हैं, अर्थात उनका pH मान 7.5 से ज़्यादा है एवं कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भी सामान्यतः कम है। ऐसी परिस्थिति में जिंक, बोरान, आयरन, मैग्नीज जैसे सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। इन तत्वों की पूर्ति के लिए उनका परणीय छिड़काव करना चाहिए। अलग अलग इन तत्वों का प्रयोग करने के लिए बागवान भाइयों को काफ़ी कठिनाई होती है, अतः इसके लिए एक माइक्रोन्यूट्रिएंट या सूक्ष्म तत्वों का एक मिश्रण संस्थान द्वारा तैयार किया गया है जिसे हम फसल प्रभात के नाम से जानते हैं। इसमें जिंक, बोरान, कॉपर, आयरन, मैग्नीज और मॉलिब्डेनम होता है।
0: यानी सूक्ष्म पोषक तत्व।

0: बातों का समूह है।
1: और इसको देने के लिए करीब 4 से 5 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर परणीय छिड़काव करना चाहिए। ध्यान रहे कि उसमें वर्षा नहीं होनी चाहिए, यानी जब मौसम खुला हो तब इसका छिड़काव करें तो इसका लाभ ज़्यादा मिलता है।
0: डॉक्टर साहब, अगस्त में रोग बीमारियों की रोकथाम के लिए भी कुछ करना है?
1: अवश्य करना चाहिए। आम के फलों को तोड़ने के बाद पौधों की जो सूखी रोग ग्रसित एवं सघन शाखाएं हैं उनकी काट छांट करना बहुत आवश्यक होता है। रोग बीमारियों के रोकथाम के लिए 250 ग्राम लगभग 1 पाव ट्राइकोडर्मा 2 किलोग्राम गोबर की खाद में मिला करके प्रतिवृक्ष यदि देते हैं तो इससे पौधा स्वस्थ रहता है, बीमारियां लगने की संभावना कम होती है।
0: डॉक्टर साहब, बागवान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे आम के बागों में सामयिक कृषि कार्य के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ किसान भाइयों को बागवानी से संबंधित सभी प्रकार का प्रशिक्षण देता है और आमतौर पर यह प्रशिक्षण निःशुल्क होता है, इसलिए बागवान भाई संपर्क कर सकते हैं। और मैं उनसे निवेदन करूंगा को मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें जो उनको वार्ता करने में आसानी रहेगी। मेरा मोबाइल नंबर है 94-83-50-96-53, 9483509653, 94-83-50-96-53, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।
0: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं बागवान भाइयों बहनों का आम के फलदार वृक्षों में सामयिक कृषि कार्य के बारे में? डॉक्टर साहब,
1: सामयिक कृषि कार्य बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आपने समय पर जो आवश्यक क्रियाएं हैं उसको नहीं किया तो आप अगले वर्ष अच्छा उत्पादन नहीं पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि समय पर खाद दें, समय पर निराई गुड़ाई करें और उसमें जो सूक्ष्म तत्वों का विशेष ध्यान रखें। और इस समय जो देखे होंगे आप, जैसे वर्षा समाप्त होगी फल वृक्षों से गोंद निकलने लगता है, अतः उसके लिए भी आप अगर कॉपर सल्फेट का घोल बना करके पौधे के मुख्य तने पर लगा देंगे तो ज़्यादा फायदा होगा।
0: डॉक्टर PL सरोज साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और आम के बागों में सामयिक कृषि कार्य क्या कुछ करें बागवान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रेनु बहनी।
3: हाँ रामजीत भैया।
2: देखो जानकारी के बाद तो बहुत हो गए, अब कुछ गीत गवने की बात हो जाए।
3: बिल्कुल भैया हो जाए, तो आज सुन लीन जाए एक खिमटा सतीश चंद्र श्रीवास्तव भैया के स्वर में। यहाँ
2: जहमा वो कह रहे हैं सुलहो सिंगार कहिए।

0: रेनू बहनी।
1: हाँ रामजीत भैया।
0: देखो हम पंच अपने खेती पाती में कितना मेहनत करी थे, मूल कऊ दाय ऐस हो जाए थे कि हम उतना फायदा ना पाई थे। मूल बहुत से ऐसे पंच हैं जे वह फायदा का बनाए लिए थे और उनके बात करी थे हम पंच आज के किसान में।
1: तो भैया देखो आज ऐसे ने एक किसान अपनी बैठकी में आए हैं और वे बता रहे हैं डेयरी व्यवसाय के बारे में। यहाँ इनके नाम है ओम बाबू वर्मा भैया और देखो इनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ हैं लखनऊ जनपद के गोसाईगंज ब्लॉक के केवली गांव के डेयरी व्यवसायी ओम बाबू वर्मा भैया। स्वागत है कार्यक्रम में। भैया ये बताएं कि आप मट्ठा मैन के रूप में जाने जाते हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और खेती खास करके डेयरी व्यवसाय से जुड़ा हुआ कब से?
3: किसान भाइयों बहनों नमस्कार। मेरी पढ़ाई लिखाई तो शुरू में मेरी छठीवीं से गोसाईगंज में रामपाल त्रिवेदी इंटर कॉलेज में हुई, उसके बाद फिर लखनऊ में सुंदरबाग में बॉयज एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज किए, उसी जगह से हमने फिर आईटीआई अलीगंज से पढ़ाई की, उसके बाद फिर अपना गोपालन और थोड़ा बहुत ऑटोमोबाइल लाइन का काम हमने वहाँ से शुरुआत की।
2: तो गोपालन शुरू कब किया आपने?
3: मेरे बच्चे जो है बहुत बीमार रहते थे, तो मेरे बड़े वाले भैया एक दिन मेरे घर पहुंचे और कहे आपके घर का दूध बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए आपको जो है एक हम पकड़ी हुई गाय छोटी सी पाल देते जो 2-2.5-3 लीटर दूध देगी, वो जो है आपके यहाँ बच्चों के लिए दूध हो जाएगा और उसी से पालन पोषण होगा। तो उसी चक्कर में हमने वहीं से गाय से स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ कि वो गाय से हमारे यहाँ दूध बढ़ गया काफी, 5-6 लीटर के आसपास हो गया।
2: अच्छा।
3: और उसके बाद जो है उसका दही मट्ठा बनने लगा, और दही मट्ठा जब बनने लगा तो पड़ोस में देते तो बहुत लोगों को फायदा होने लगा। उसके बाद डिमांड भी आने लगी कि भैया तुम्हारे वहाँ मट्ठा बहुत अच्छा है, तो हम कहे भैया ले लिया करो, हम लोग तो घी के उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, तो वही जगह से होने लगा। तो फिर कोविड के समय जो है कोई काम रह नहीं गया, तो उतने समय हमारी समझ में आया कि इसको गौपालन में किया जाए क्योंकि गाय बहुत उपयोगी है।
2: तो फिर एक से शुरू किया तो कहाँ तक पहुँच गए हैं?
3: इस समय अपने पास जो है करीब लगभग 30 गाय है, बाकी छोटे बड़े मिला 55-60 के आसपास जानवर है।
2: कौन सी नस्ल है?
3: मेरे पास करीब 4 गिर की है, बाकी सब साहिवाल नस्ल के हैं।
2: अच्छा।
3: जिसमें से कुछ हमने अच्छी नस्ल देखी घूमती हुई गाय पकड़ के अपने यहाँ रखे, उसको भी अपने यहाँ तैयार किए और अपनी बछिया भी काफी तैयार है
2: और उसको भी उत्पादक बना चुके हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो सीमेन अपना उपयोग करके जो अपने सरकारी वाले मारे हैं,
2: हाँ।
3: उससे साहीवाल की बछिया बहुत अच्छी है हमारे पास है।
2: तो ये

0: बताएं कि उनका खान पान कैसे करते हैं सुबह से शाम तक।
1: खान पान तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी हमें नहीं पहले थी, तो हम तो वही बाहर से मार्केट से पशुआहार खरीद लेते थे और जो दाना पानी आता था वही सब खरीद के खिलाते थे। लेकिन जब तक हम दाना पानी बाहर का उपयोग किए जो मार्केट में आजकल चल रहा, उसके बाद फिर गाय हमारी कोई गाभिन नहीं हो रही,
0: अच्छा
1: ये समस्या बहुत बड़ी आई। फिर हम एक बार करनाल ट्रेनिंग गए और फिर गवर्नमेंट भेजी थी वहां पे देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में,
0: जी शांति
1: तो
0: कुंज में।
1: हाँ शांति कुंज में, तो वहां हमने प्रोफेसर लोग बोले कि आप अपना दाना पानी तैयार। जब से हमने अपना दाना पानी तैयार, मेरी गायों की शक्ल बन गई ऐसी कि बिल्कुल चमकीली हो गए और उसके बाद गाय मेरी सारी सारी गाभिन हुई।
0: यानी पशु आहार खुद बनाते हैं आप?
1: खुद पशु आहार बनाते, एक मशीन हमने खरीदी 50,000 की और उसी से अपनी दलिया तैयार करते हैं, उसी से अपना पशु आहार दाना मक्का सब कुछ उसी से अपना तैयार करते
0: तो
1: हैं।
0: संतुलन क्या रखते हैं, दाना खली और चूनी का?
1: हमारा मानक जो है गेहूं रखते हैं करीब लगभग 30 किलो, और जैसे आजकल गर्मियों में हमने 30 किलो जौ कर दी है,
0: हाँ
1: और उसके बाद चने की चूनी,
0: हाँ
1: और इधर थोड़ा वो चोकर लेते हैं,
0: अच्छा
1: चोकर है, उसके बाद 1 क्विंटल का मानक बता रहे हैं हम, और 1 किलो मिनरल देते हैं, 1 किलो हमने सादा नमक देते हैं और 1 किलो हम मीठा सोडा,
0: अच्छा
1: हाँ, और जो है इसी में 5 किलो खली
0: 100 किलो में
1: 100 किलो में, तो
0: तो
1: ये सब बना के हम तैयार करके और बोरियों में 15 दिन का पैक करके वजन के हिसाब से रख देते हैं कि गाय मेरी इतना चारा खाएगी तो इतना हमको राशन इसमें डालना है।
0: जो 30 भारतीय नस्ल की गायें हैं आपके पास, उसमें दूध कितना दे रही हैं?
1: दूध मेरे पास इस समय डॉक्टर साहब जो है मेरे पास 14 गाय लग रही हैं, लगभग 85-90 लीटर के आसपास दूध है
0: हो रहा है।
1: हो रहा है।
0: और आगे जो गाभिन होगी ब्याएंगी भी?
1: 20 गाय मेरे पास बच्चा देने वाले, जिसमें से मेरी खुद 14 बच्चियां अपने यहाँ की हैं जो तैयार की साहीवाल गिर, वो उसमें से देंगी।
0: तो दूध की मात्रा काफी बढ़
1: दूध
0: जाएगी।
1: की मात्रा बढ़ जाएगी, इसीलिए हमने प्रोडक्शन के लिए खोया पनीर की इसकी तैयारी कर ली है।
0: जो जानवर हैं उनको खुराक कैसे देते हैं, सूखा चारा, हरा चारा और पशु आहार?
1: ये डॉक्टर साहब मानक जो मेरा है करीब 3 से 4 किलो के आसपास एक टाइम हम भूसा दे रहे हैं, और उसी में लगभग 10 से लेकर मतलब वजन के हिसाब से देते हैं जानवर के लगभग कितना वजन है,
0: हाँ
1: 10 से 15 किलो के आसपास हरा चारा
0: हाँ
1: ये देते हैं, और जैसे अगर 6 लीटर दूध दे रही है तो उसको हम 2.5 से 3 किलो के आसपास एक टाइम राशन दे रहे हैं। जो गाभिन है उसको 1 किलो 200 ग्राम या 300 ग्राम बस इससे मानक में देते रहते,
0: बहुत बढ़िया।
1: और उसके बाद गाय को खुला छोड़ना।
0: अच्छा
1: हाँ, जब से हमने उसको खुला छोड़ दिया तब से गाय पूरा एक दूसरे को चाटती है, कहीं हमने सिरावन गांव में पुरानी पड़ी अपने घर पे उसको गाड़ दिए उसमें रगड़ती रहती है, और उसके बाद पानी पीने के भर दिए, उसके बाद थोड़ा टीन सेट बना दिए, और टीन सेट के बाद जो है अब पूरा हमने खुला रखा करीब 8 बिश्वे के आसपास,
0: अच्छा
1: और
0: उसमें
1: उसी में
0: अपना
1: खुली
0: घूमती
1: रहती है,
0: टहलती
1: घूमती
0: रहती।
1: टहलती रहती है।
0: तो पूरे डेयरी व्यवसाय की बात करें तो ये बताएं कि महीने में लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना तक ले लेते हैं और उसको बेचने के बाद आपका मुनाफा होता कितना है?
1: करीब 90 लीटर के आसपास मेरे पास दूध तैयार होता है, तो उसी का हम जो है पूरा मान चले के उसी का दूध पका के करीब मेरे पक के आ जाता है करीब 78 लीटर 80 लीटर के आसपास दूध लाल पक के तैयार हो जाता है जो मिट्टी के बर्तन में पकाते हैं, उसके बाद उसी में फिर पानी कुछ मिक्स करके मट्ठा तैयार करते हैं, उसी में से मक्खन गया, तो वो 90 लीटर के आसपास मेरा मट्ठा उतना तैयार हो जाता है,
0: हाँ
1: और कभी कभी 10 किलो के आसपास निकाल देते हैं, 80 लीटर मट्ठा तैयार कर 10 किलो दही हम तैयार कर लेते हैं,
0: अच्छा दही भी बेचते हैं?
1: दही भी लाल मटकी में और दही करके 500 ग्राम 1 किलो की दही भी तैयार करते हैं और दही भी बेचते हैं, तो लगभग ये मट्ठा और दही घी मिला के लगभग में बिक्री जो हो जाती है लगभग 15 से 16 हजार 17 हजार के आसपास पर डे की होती है,
0: पर डे?
1: पर डे की, और जिसमें से हमारे पास करीब 7,000-8,000-9,000 रुपए के गायों के प्रति
0: खर्चा
1: खर्चा
0: है।
1: खर्चा भी है, लगभग 2 लाख के आसपास मार्जिन आ जाता है।
0: जो अब तक का आपका तजुर्बा है डेयरी व्यवसाय का इतने कम दिन में, और किसान भाइयों बहनों को क्या कहना चाहेंगे?
1: किसान गाय पाले लेकिन पूरे परिवार साथ मिलके और खुद अपना प्रोडक्शन तैयार, खुद अपनी मार्केट मतलब अपनी बाजार खुद ढूंढे, दूसरे को न दे बाजार ढूंढने के लिए, तभी आप इससे कुछ बचा पाएंगे।
0: ओम बाबू वर्मा भैया, किसान भाई बहन अभी भी उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: मोबाइल नंबर मेरा जो है 7080-8999-7080-8999-28 7080 89 99 28।
0: चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहते हैं?
1: हमने कभी

0: सोचा नहीं था। लोग हमारे मित्र जो थे 10 में से 9 लोग तो मना कर दिए कि गोपालन में आप न जाइए क्योंकि ये घाटे का सौदा है। तो हमने कहा हम कैसे जाने घाटा का सौदा है, हम तो इसको हम घुस के हम देखेंगे एक बार कि घाटा है कि नहीं है हम, क्योंकि घाटा करके हम सीखना चाहते। तो हमारी जिद ने इसमें ले गए और उसके बाद हमने सोच लिया कि हम अपनी मार्केट करेंगे, अपने ग्राहकों के पास पहुँचाएंगे।
1: और आज अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करके आप दूध, दही और मट्ठा, साथ में घी भी बेच रहे हैं और कुल मिला जुला करके खुशहाल हैं। ओम बाबू वर्मा भैया, आज छोटे बड़े कुल 60 जानवर आपके गौशाला में
0: जी
1: हैं
0: जी जी
1: और आप उनकी सेवा कर रहे हैं। आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: भैया अपनी खेती पाती में यहाँ कोनो काम हो लेकिन मौसम केरी जानकारी अगर अच्छी हो ना तो काम बहुत बढ़िया बनत है। तो काहे ना दे दिन जाए अपने पंच भैया बहनिन के यहाँ मौसम केरे हाल।
4: भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार 6 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ बौछार पड़े के संभावना है और कहूं कहूं पर भारी बारिश के चेतावनी है।
3: भैया देखो ये तो हो गए मौसम के हाल, लेकिन अगर कोई पंच भैया बहनी हमका सुझाव भेजा चाहते हैं कार्यक्रम से संबंधित कोनो बात बतावा चाहते हैं तो उके खातिर हुई हमार पता नोट कर लें। हमार पता है कार्यक्रम किसान वाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ पिन कोड है 226001। और भैया देखो आजकल है डिजिटल के जमाना तो बहुत से लोग मेल भेजते हैं जो उनके ज्यादा सहज होते हैं तो बता दो अपन मेल आईडी।
4: तो पंच भाई लिखें FARMANDHOME फार्म एंड होम AIRLKO@gmail.com।
3: और भैया देखो कार्यक्रम के समय हो चुका है अब समाप्त, तो लीन जाए अपने पंच भैया बहनिन से आज्ञा।
4: जय हिंद, हिंद।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। सब 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
1: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
2: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
1: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को दी मंजूरी। कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादकों को खरीद और सही कीमत की मिलेगी गारंटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में घुमंतू समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, विमुक्त जातियों को सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को ऑनलाइन करने के केंद्र सरकार के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं से मांगा जवाब। 19 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। और प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। प्रतापगढ़ में मकान गिरने से 6 लोगों की मौत। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। इस योजना पर 23,731 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इससे 1.5 लाख रोजगार सृजित होंगे। ये योजना 2026-27 से 2035-36 तक लागू की जाएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना के जरिए गैस उत्पादों को खरीद और सही मूल्य देने की गारंटी देने की कोशिश की गई है।
1: आज जो स्कीम अप्रूव हुई है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है जिसमें 6 पिलर्स हैं। कंप्रेस्ड बायोगैस CBD जो गैस बनती है उस गैस के यूटिलाइजेशन के लिए अश्योर्ड ऑफ टेक का पिलर रखा गया, यानी जो भी मैन्युफैक्चर करेगा बायोगैस उसको एक अश्योर्ड ऑफ टेक यानी उसके प्रोडक्ट को खरीदने की गारंटी दी जाएगी। सेकेंड है प्राइस की स्टेबिलिटी। प्राइस ग्लोबल ऑयल का प्राइस गैस का प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है, तो बायोगैस को वो सब वॉलेटिलिटी प्राइस की न देखनी पड़े इसके लिए एक अश्योर्ड प्राइस का सिस्टम बनाया।
0: मंत्रिमंडल ने असम में बेहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज घुमंतू समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र देश को दिया था उसी संकल्प का विस्तार आज समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। बिना भेदभाव के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने की इसी सोच की नई कड़ी घुमंतू विकास बोर्ड है। मुख्यमंत्री ने कहा कि घुमंतू विकास बोर्ड केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बल्कि वर्षों से उपेक्षित विमुक्त एवं घुमंतू समाज को न्याय सम्मान और अवसर दिलाने का सशक्त माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा कि विमुक्त जातियां भारत के स्वाधीनता संग्राम की सेनानी हैं, उन्हें सम्मान देने के लिए ये डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध है।
2: ये विमुक्त जातियां वे हैं जो भारत की स्वाधीनता संग्राम सेनानी हैं, और स्वाधीनता संग्राम सेनानी होने के नाते जो सम्मान उनको प्राप्त होना चाहिए था उस सम्मान को देने के लिए ये डबल इंजन की सरकार निकली है। घुमंतू जाति को दर दर की ठोकर खाने के लिए नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का एक अधिकार ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार प्रदान करेगी, और यही प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से केंद्र सरकार के उस हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है जिसमें कहा गया है कि नीट स्नातक परीक्षा को पेपर आधारित परीक्षा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आरागे की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त निर्धारित की है। केंद्र सरकार ने न्यायालय को बताया कि वो नीट स्नातक परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित करने पर विचार कर रही है। पेपर लीक और प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए व्यापक सुधार किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य

0: न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने मिश्रा की जमानत शर्तों में ढील देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। मिश्रा के वकील ने दलील दी कि मौजूदा प्रतिबंधों के कारण वे पारिवारिक कार्यक्रमों सहित अपनी बेटी के जन्मदिन समारोह में शामिल होने में असमर्थ हैं। मुख्य न्यायाधीश ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का आज 45वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 85 मेघावी विद्यार्थियों को कुल 172 पदक प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज शिक्षा के क्षेत्र में बेटों और बेटियों को समान अवसर मिल रहे हैं। ये समाज के लिए सकारात्मक बदलाव का संकेत है और इससे प्रेरणा लेकर युवाओं को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का कल रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा सीट से विधायक थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने आज उमाशंकर सिंह के लखनऊ स्थित आवास पर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में मायावती ने लिखा कि पार्टी के प्रति उमाशंकर सिंह की निष्ठा की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। हर घर तिरंगा के अंतर्गत प्रदेश के 5 करोड़ घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। इसके साथ ही देशभक्ति से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम भी होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी आयोजनों को जनभागीदारी के साथ मनाने का निर्देश दिया है। इस श्रृंखला में राजधानी लखनऊ समेत सभी 75 जनपदों में तिरंगा संगीत समारोह का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रभक्ति के गीतों नृत्यों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश के कारण हुए हादसों में 9 लोगों की मौत हो गई। प्रतापगढ़ में नगर कोतवाली अंतर्गत महुली मंडी के पास एक जर्जर मकान की छत गिर गई, जिसके मलबे में दबकर एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी अभिषेक पांडे और पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने घटनास्थल का मुआयना किया। जिलाधिकारी ने बताया कि पीड़ित परिवार को आपदा राहत कोष से आर्थिक सहायता दी जा रही है।
1: 6 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रमोद जी, उनकी पत्नी, उनका एक और बेटा और अमन करके एकमात्र जो सर्वाइवर है वो बचे हुए हैं। उनकी दुखद घटना है। प्रशासन और शासन जो है वो पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ा है। आपदा राहत कोष अंतर्गत जो मदद है वो अगले कुछ घंटों में परिवार के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए गहरा शोक जताया है। वहीं बाराबंकी में भी बारिश के कारण दरियाबाद में भी घर की दीवार ढह गई, जिसमें 5 बच्चे मलबे में दब गए। हादसे में सगे भाई बहन की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। भारी बारिश के कारण इटावा और जौनपुर में आज स्कूल बंद रहे। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में इटावा में सबसे ज्यादा 126 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पूर्वी भाग में कई स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश और बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। उन्नाव में गंगा और बाराबंकी में घाघरा आज खतरे के निशान को पार कर गई हैं। वहीं अमरोहा में भी पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही और उसके कारण गंगा नदी उफान पर है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण अमरोहा में तिगरी गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे घाटों पर पानी भर गया है और पुरोहितों की झोपड़ियां डूब गई हैं। खादर क्षेत्र के खेतों में भी पानी घुस गया है, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। आज तिगरी गंगा का जलस्तर 200.45 मीटर दर्ज किया गया है। हरिद्वार बैराज से गंगा नदी में 133,357 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण मैदानी इलाकों में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मरगूब हुसैन, आकाशवाणी समाचार, अमरोहा।
0: हमीरपुर में बीती रात नेशनल हाईवे पर रोडवेज बस और टैंकर की टक्कर हो जाने से 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं झांसी में आज हुई सड़क दुर्घटना में माफिया अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद की मौत हो गई। हादसे में

0: एक अन्य युवक की भी मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को दी मंजूरी। कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादकों को खरीद और सही कीमत की मिलेगी गारंटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में घुमंतू समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, विमुक्त जातियों को सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को ऑनलाइन करने के केंद्र सरकार के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं से मांगा जवाब। 19 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। और प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। प्रतापगढ़ में मकान गिरने से 6 लोगों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को हमारा स्नेह भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आपके द्वारा प्रेषित 7:15 पर भेजे गए संदेशों को शामिल कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में शर्मीली फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत नीरज का था, संगीत दिया था SD परमन ने। इस गीत को सुनना चाहा था बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झलावाड़। राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी काना, श्रीमती मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी, मनभावन नैना, सत्यनारायण कबीर, शोभा और फुंदीबाई बागरी। पद्मा टाकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र शाह और सुषमा कपूर। नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन, सूरज, PR जैन। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंदु भूषण, संस्कृति पौरुष और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल। सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली, सुरेश नारंग। छत्रपति जी शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा, शुभम, अक्षय सेन। रायपुर से नीलू बेग, नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार और इनका समस्त परिवारिक जन। अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना हीरामण, किशोर धनाडे, हेमंत राव शंघारे, संजय कुमार, राजेंद्र गुप्ता। नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण लाल गायकवाड़, दयानंद, ओमकार साई गायकवाड़। उड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर। राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित, बेबी गर्भी। मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति रानी, मेनका पासवान, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, गोदावरी, प्रदीप कुमार, राजबहादुर और शंभू शाह। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक अफरीन, मोहम्मद अल्ताफ नीलोफर। समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम, अनामिका सिंह। गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहत और छोटा गुरुशबत। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से

ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, दुबिया नविदा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी प्रांजल राय, नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा निवृत्ति क्षीरसागर संजय चौहान, वरंगल से मोहम्मद खाजा रिजाउद्दीन, आयशा तबस्सुम, छत्रपति जी संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, वाडेखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला, विशाल, निशा, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मनिकापुरी, राजादास रानी मनिकापुरी, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज कोरवाल, कमरा रानी, गीतिका भानु प्रकाश, रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, सदर बाजार मारवाड़ा बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण प्रतीक चौहान, और आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर के आवाज में धरती कहे पुकार के फिल्म का ये गीत बोल मजरू के हैं, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मजरूह के शब्द रचना भी आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म थी धरती कहे पुकार के, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत के लिए हमें संदेश प्राप्त हुए ब्रज रेडियो श्रोता मित्र चौधरी महेंद्र सिंह नगला राणा से, राधेलाल सारस्वत सिहरा से, शारदा प्रसाद प्रजापति से राधा सिटी मथुरा, राजू लवानिया खंदौली आगरा, यादराम जी उस फार मथुरा, वीरेंद्र सिंह मंडी चौराया मथुरा, नेत्रपाल सिंह नकला विजयी राया, भजन लाल कुमार राया, महेश चंद सदर बाजार मथुरा, सतेन चंदसौलिया जिला जालौन से, पंचमलाल चतुर्वेदी दौसा राजस्थान से, सुराना मौला बीकानेर से, नरेंद्र सुराना कांतिलाल सादुल शहर से, राम कुमार रेवाड़ और चंदकला रेवाड़, गांव कोपी की नगरिया से मिठललाल सारस्वत नेहा नीरज निकेता और इनके मम्मी पापा, गांव नंगला पुला से विजय सिंह भानु प्रताप सिंह रामानुज राधिका पवन करण नमन भोला डग्गू और इनके परिवारीजन, गांव नौधरा से कोमल मास्टर जशोदा सूरज रोहित चंचल और इनके मम्मी पापा, हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से अजीत अमित शिवांश शिवांगी चुन्ना और इनके परिवारीजन, सौगा जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से कोमल सेन तोषण सेन विनायक सेन, पिपिरिया से कमलकांत गुप्ता श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, कुंडरवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर विजय लक्ष्मी सावनकर राकेश रिश्ता, दरभंगा से कामेश्वर प्रसाद गुप्ता कांति मिश्रा रानी संगीता पासवान मेनका भूलिया देवी और नवीन, पंडरपुर से जाकिर मौलानी सौमैया सुबान समीर सलमा मुमताज दिलशाद, ललेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर निर्मला विशाल नवानकर, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब राम टेके यशोधरा शव्या राम टेके, डूमरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये राधिका बेबी अनिष्का तन्मय गजबिये, फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल दलजीत राजदीप गुरनूर गुरदीप गुरलाल और विराज सिंह, करणवीर करण दपिंदर वीरेंदर कुलदीप एकम दमन अबजूत, आपका ये संदेश करणवीर हाउस भूचा कैचिया भटिंडा पंजाब से 7:15 पे ये संदेश, राज पैलेस मोहनोद भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा प्रीति वर्मा कार्तिक आर्यन वर्मा, हकीरपुरा मऊ से मुन्ना भाई पिंकी आर्यन कृष्णा और पीहू, जिला जालौन ग्राम पजौनिया से सतीन कुमार चंदसौलिया आदर्श सार्थक अलौकिक चंदसौलिया, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन बीना मस्कीन आशीष राजा चैतन्य मस्कीन मेगा मस्कीन, मामलूवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताड़े पीएस नुमानकर, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, समतानगर

काष्ठी से लक्ष्मण जी, जगताप, श्रेया, शिंदे, मानसी, निशांत, गांव खोकरावाली से विनोद, बारसा, विशाल, विकास, रोशनी और शुभम, हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर शाह, मेरा जहां, जाफराबाद मराठवाड़ा से श्री सुधाकर राजे यादव, देशमुख, प्रशांत राजे, संचेत, वायल, प्रथमेश, सरदा देशमुख, प्रणाली सानवी और हर्षदा देशमुख ने

होटल फिफ्का की तभी आपने सुना, आवाज़ें थी आशा भोसले और मनहर की। इस गीत को सुनने चाहता है पश्चिम सिंह भू चाईबासा झारखंड से, शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली गोप। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा। बरबड़ बकाल बुलठाणा से नारायण हागे, कमाल, दिव्या, जय हागे। तेलंगाना भांगूर से मोहम्मद, बुरहुद्दीन, फजान, फरहान, समेरा, आजमीन। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से प्रकाश, निषाद, सौरभ, बल्लू, तरुण, श्रेणिका, श्रीनिजा, श्री गणेश, अविका आर्ट, श्रीरामपुर से डी अशोक कुम्भार, अविका, सानू, अर्चना। कोयले बस्ती पुनावली से अजय सोनमने, करिश्मा, अविका, साईशा। ललितपुर उत्तर प्रदेश से संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अंजलि, ज्योति, अनीता, संजना, रेखा और इनके सभी समस्त परिवार। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, देशानी और निमित आहूजा। भगेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव। ऑरेंज सिटी नागपुर से विट्ठल जाधव, अनसुईया जाधव, पवन राजे जाधव। छत्रपति जी संभाजीनगर से मंगेश इंगले, संध्या, स्वराज, विराज। रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान, आर के राज। 7:15 पे ये संदेश झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया। बटिंडा रोड मर्डी डब्बावली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, लकी, तानिया नारंग। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केसु तासु, अरुणावानम और सन्यम आनंद। बुड़ागाशी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुटी भगत ने। और इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सभी का हृदय से आभार। नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।

चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर आज भी अड़े रहे। इस कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित रही। हंगामे के बीच सदन ने विनियोग विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया, जिसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च हुई अतिरिक्त राशि के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इस दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन भी किया। इससे पहले पूर्वान 11 बजे सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बैठक शुरू होने पर शून्यकाल की कार्यवाही को शुरू करना चाहा, लेकिन कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच कुछ सदस्य अपनी सीटों से बाहर आ गए। हालांकि सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से उनकी सीटों पर लौटने का कई बार आग्रह किया। हंगामे के बीच ही शून्यकाल के दौरान भाजपा के राघव चड्ढा ने डॉक्टरों को डायग्नोस्टिक केंद्रों द्वारा कथित तौर पर कमीशन राशि दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए इस पर रोक लगाने और मरीजों के हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव बीडा ने सरकारी विभागों में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 27% आरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में इस वर्ग का प्रतिनिधित्व अपेक्षित स्तर तक पहुंच नहीं पाया है। भारतीय जनता पार्टी के सदानंद महालू शेठ तानवड़े ने कहा कि गोवा में वर्ष 2012 में खनन गतिविधियां बंद होने के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ ही हजारों परिवारों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने केंद्र से खनन क्षेत्र को स्थायी और पारदर्शी तरीके से पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य गृहमंत्री के बयान की मांग करते हुए लगातार हंगामा करते रहे। सभापति ने उनसे अपने स्थानों पर लौट जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन पर आपत्ति जताई। श्री रिजिजू ने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हर दिन कुछ लिखकर लाते हैं और सदन में उसे पढ़ते हैं। इस पर कांग्रेस सदस्यों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति देने की मांग की। जब सभापति ने श्री खड़गे को बोलने की अनुमति दी तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे दोबारा बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर फिर हंगामा शुरू कर दिया। इन सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति देने की मांग की। सभापति ने कहा कि विपक्षी सदस्य शांत रहेंगे तो वो पूरक प्रश्नों के बाद नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने की अनुमति देंगे। सदस्यों के शांत होने के बाद सभापति ने नेता प्रतिपक्ष खड़गे से अपनी बात रखने को कहा। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। विपक्ष अपनी इस मांग पर अड़ा रहा कि गृहमंत्री अमित शाह सदन में आकर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर अपना वक्तव्य दें। श्री खड़गे ने संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा कि सदन में अपनी बात रखना उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि कब बोलना है, क्या बोलना है, ये तय करना उनका अपना अधिकार है और इसके बारे में उन्हें अब क्या संसदीय कार्य मंत्री से पूछना होगा। नेता प्रतिपक्ष ने आसन से कहा कि गृहमंत्री को सदन में आने और स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाए। उन्होंने कहा कि हम चर्चा चाहते हैं। इस पर सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से गृहमंत्री को विपक्ष की भावनाओं से अवगत कराने को कहा। हंगामे के बीच सभापति ने

प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन शोरगुल के कारण उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। दोपहर 2:15 पर बैठक पुनः शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को दोहराया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया। उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि एक महत्वपूर्ण विधेयक को पेश किया जाना है, इसलिए सदन में व्यवस्था बनाए रखें। लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण उन्होंने 1 मिनट के भीतर ही बैठक को दोपहर 2:45 तक के लिए स्थगित कर दिया। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:45 पर राज्यसभा की बैठक शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक पर चर्चा के लिए सदन में पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान सदस्यों ने अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं को उठाया। तृणमूल कांग्रेस के बाबुल सुप्रियो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, बीजू जनता दल की सुलता देवी, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार झा, ऑल इंडिया अन्ना डीएम के सदस्य डॉक्टर एम थंबी दुरई, तेलुगु देशम पार्टी के भाष्यम रामकृष्ण, भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सिकंदर कुमार, महेंद्र भट्ट, डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, डीएमडीके सदस्य एल के सुधीश और मनोनीत सदस्य सतनाम सिंह संधु ने भी हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार ये अनुदान की अनुपूरक मांगे 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अतिरिक्त बजट को लोक लेखा समिति की सिफारिश पर लाई है और पीएसी की अध्यक्षता विपक्ष के नेता के पास है। विधेयक का उद्देश्य भारत की संचित निधि से उन खर्चों के लिए धन निकालने की खातिर मंजूरी देना है जो व्यय 31 मार्च 2023 को खत्म हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ खास सेवाओं पर और उस साल के लिए मंजूर रकम से अधिक किए गए थे। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोकहित के विभिन्न मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद पीठासीन अधिकारी घनश्याम तिवारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक कल 11 बजे होगी। और लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारालूल हक। लोकसभा ने आज कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा न हो सकी। विधेयक का उद्देश्य विश्वसनीय नीतिगत व्यवस्था और प्रक्रियागत निश्चितता उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक विदेशी पूंजी को आकर्षित करना तथा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने पिछले कई दिनों की तरह आज भी सदन में हंगामा जारी रखा, जिससे लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मानसून सत्र की शुरुआत से ही सदन में एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके हैं। सदन की कार्यवाही सवेरे 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने की वर्षगांठ का उल्लेख किया और फिर सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करने लगे। समाजवादी पार्टी के सदस्य जहां अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा प्रमुखता से उठा रहे थे, वहीं कांग्रेस सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग को दोहराते हुए

हुए हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन को चलना चाहिए, सदन में चर्चा और संवाद होना चाहिए। अध्यक्ष ने कहा कि रोजाना नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना सदन की गरिमा को गिराता है, ये अच्छी परंपराएं नहीं है। उन्होंने कहा कि देश आपके आचरण को देख रहा है। शोर शराबा न थमने पर अध्यक्ष ने 11:03 पर बैठक अपराह्न 2 तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 2 फिर शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा उसे पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रख दिया। पीठासीन अध्यक्ष संध्या रॉय ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने और कार्रवाई चलाने में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि आपका ये व्यवहार उचित नहीं है, ये सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। हंगामा न थमने पर पीठासीन अध्यक्ष ने बैठक शुक्रवार सुबह 11 तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। विपक्ष के हंगामे के कारण कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा न हो सकी। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के आरएसपी सदस्य एनके प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया। सदन ने के राधाकृष्णन, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और प्रेमचंद्रन सहित कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया। इस विधेयक में फंड मैनेजरों के भारत आने को आसान बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि विदेशी निवेश को भारत में कारोबार में लगा पैसा नहीं माना जाएगा। ये विधेयक सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। इस विधेयक का उद्देश्य वर्तमान कानूनी प्रावधान को हटाना है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR को लागू करने से रोकता है। RTGS और NEFT के जरिए होने वाले रियल टाइम भुगतान के लिए सेवा शुल्क देना पड़ता है। हालांकि UPI लेन देन को ऐसे शुल्क से अभी छूट प्राप्त है। संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव कराधान से जुड़े एक बड़े कानून का हिस्सा है। कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर कम शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं तथा भुगतान अवसंरचना कंपनियों के लिए एक टिकाऊ राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है जो डिजिटल भुगतान व्यवस्था को संचालित करती हैं। विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 10A बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर शुल्क लगाने से रोकती है। वहीं आयकर अधिनियम की धारा 269SU के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले बड़े व्यवसायों के लिए रुपे डेबिट कार्ड और भीम UPI QR कोड सहित कुछ निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान स्वीकार करना अनिवार्य है। वर्तमान में कोई भी बैंक या भुगतान प्रणाली प्रदाता आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269SU के निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए किसी पर भी सीधे या परोक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं लगा सकता। इसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। इन हमलों में तत्काल 1,00,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी, जबकि लाखों लोग गंभीर रूप से घायल और विकिरण के शिकार हुए थे। राष्ट्रीय स्तर पर स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन की निगरानी मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति द्वारा की जाती थी।
अभी आप संसद में हुई आज की कार्रवाई

0: कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।
1: FM 102 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं देश गान।

जी, कपिल कुमार की शब्द रचना भी आपने सुनी संवेद स्वरों में, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही पलों में आप

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं देशभक्ति परक रचनाएं।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

योगेश श्रीवास्तव की शब्द रचना भी आपने सुनी उषा टंडन के स्वर में। FM 102.2 MHz पर ही आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। एक ही फिल्म से आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं तेरी कसम फिल्म के कुछ गीत। गीत आनंद बख्शी के हैं, संगीत दिया है RD बर्मन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

लता मंगेशकर और अमित कुमार को अभी आपने सुना, और आप सुनते हैं अमित कुमार की आवाज़ में तेरी कसम फिल्म का अगला गीत।

एक ही फिल्म से करके मैं समय श्रोता सुन रहे हैं तेरी कसम फिल्म के कुछ गीत FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

अमित कुमार के गाए तेरी कसम फिल्म के इस गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी।

क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है।

0: यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
2: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
1: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा।
2: आज का दूसरा बड़ा फैसला है, असम में एक हाईवे पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये है बायता चेरियाली, यानी गुवाहाटी से जस्ट बाहर निकलने के बाद में वहां से लेके तेजपुर तक। ये 4 लेन हाईवे 135 किलोमीटर का है और करीब 8,970 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। आगे जाके ब्रह्मपुत्र टनल को भी ये जोड़ेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। किसानों, सहकारी समितियों, लघु और मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों तथा ग्रामीण उद्यमों को इसका लाभ मिलेगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। जम्मू कश्मीर के संबंध में सदस्यों की चिंताओं पर वित्त मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान की है।
3: आर्टिकल 370 गेटिंग अब्रोगेटेड।
4: अनुच्छेद 370 का निरसन इस बात को सिद्ध करता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिन पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसलिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरा सहयोग और संरक्षण मिले, क्योंकि हम सभी एक ही देश का हिस्सा है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों

0: सदनों में कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही में कई बार व्यवधान आया।
1: लोकसभा की कार्यवाही 2 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका, जबकि राज्यसभा में इन्हें कुछ समय के लिए ही संचालित किया जा सका। हंगामे के बीच लोकसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। इस विधेयक में संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 तथा वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन का प्रावधान है। उधर राज्यसभा ने चर्चा के बाद विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को पारित कर लोकसभा को लौटा दिया। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांग की थी। यह राशि मुख्य रूप से ऋण के पुनर्भुगतान पर खर्च की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आज फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इजरायल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग हैं और इन्हें एक नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही।
2: 19 लाख हाउसहोल्ड्स आर रिसीविंग जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल।
3: 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने से महज 9 महीनों में लगभग 3.25 गुना की वृद्धि हुई है।
2: मोर देन 3.2 टाइम्स इन जस्ट 9 मंथ्स।
0: ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हुई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं।
4: ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 9 देश मिलकर दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, जो हम सब अपने अपने देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से अच्छी नीतियों के साथ विश्व भर में प्रगति हो सके उसकी चिंता करते हैं।
0: 2 दिन का ब्रिक्स वेब्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
5: सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री चंचल कुमार ने आज कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार का उद्देश्य वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए एक ऐसा मंच बनाना है जहां परियोजनाओं, भागीदारी तथा को प्रोडक्शन के नए मार्ग उजागर हों। इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एआई मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के भविष्य को आकार देने के लिए प्रभावी साबित होगा। ईशारानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में झारखंड विधानसभा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं।
6: छात्रों का आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया।

0: सरकार की ओर से गतिरोध समाप्त करने की गंभीर कवायद शुरू की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर 4 मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके जवाब में छात्रों की तरफ से वार्ता के लिए 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की गई है, जो सीधे सरकार के मंत्रियों के समक्ष अपनी बातें रखेंगे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने आज झारखंड विधानसभा के भीतर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के विधायकों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: उधर केरलम के तिरुवनंतपुरम में भाजपा युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्ष से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। बम्बे उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपने कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़िता को दिया जाएगा। सरकार ने आज बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने मेजबान सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र वापस लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि अभियान ने 5 सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं और ये एक जन आंदोलन में बदल गया है। ये राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को दर्शाता है। हर घर तिरंगा अभियान इस महीने की 9 से 17 तारीख तक चलाया जाएगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 374 अंक बढ़कर 78,955 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11 अंक की मामूली बढ़त लेकर 24,636 दर्ज हुआ। और अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 95.22 रुपए पर बंद हुआ।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई से मानवाधिकारों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पिछले एक दशक में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जबरन गायब किए जाने, अत्यधिक बल प्रयोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक और कब्जे वाले क्षेत्र में जवाबदेही की कमी पर बार बार चिंता व्यक्त की है। 27 जुलाई को POJK में तथाकथित विधायी चुनावों के पहले दिन रावलकोट में हिंसक झड़प हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी ने श्रेयांशी वलिशेट्टी को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves Gobardhan scheme to boost clean energy and rural economy. Also gives nod to 4-lane highway project between Guwahati and Tezpur to enhance connectivity in Assam. Lok Sabha clears legislation.

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म थी राजमहल। और आइए अब सुनते हैं आया सावन झूम के फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। गीत आनंद बख्शी का है, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आया सावन झूम के, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। चितपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

श्री रामचंद्र के संगीत निर्देशन में, राजेंद्र कृष्ण की शब्द रचना भी आपने सुनी, लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म थी आज़ाद।

किशोर कुमार को अभी आपने सुना, फिल्म थी मंजिल, गीत योगेश का था, संगीत दिया था राहुल देव बर्मन ने।

मेरे हम सफ़र, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर के आवाज़ में, बोल आनंद बख्शी के थे, संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने,

किशोर कुमार और साथियों को भी अपने सुना फिल्म थी मन चली, गीत आनंद बख्शी का था, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। झटपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

दीवाना फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, बोल आनंद बख्शी के थे, संगीत दिया था राहुल देव बर्मन ने। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में मजधार फिल्म का ये गीत।

अलका याग्निक, एस पी बाला सुब्रमण्यम और साथियों के गाए मजेदार फिल्म के इस गीत के साथ ही चितपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने आप यही संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के प्रथम भाग में आज प्रस्तुत है भैरवी काले का मराठी सुगम गायन। संगत कलाकार हैं हारमोनियम पर अजय हेराव, तबले पर निखिल मरावी तथा वायोलिन संगत निशिकांत देशमुख इनकी है।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनेट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक। We bring to you Marathi Sugam Sangeet. The artist is Bhairavi Kale. The accompanists are Ajay Hirao on harmonium, Nikhil Madavi on tabla, and violin artist is Nishikant Deshmukh.
0: Bhairavi Kale ne

0: अपने पिता विकास काले तथा सुश्री मंगल देशमुख इनसे संगीत की शिक्षा प्राप्त की है। आप आकाशवाणी नागपुर के सुगम संगीत में ए ग्रेड प्राप्त कलाकार हैं। आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में संगीत अलंकार तथा पीएचडी प्राप्त की है। मधुर स्वर की धनी भैरवी काले ने राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संगीत प्रतियोगिताओं में सहभाग लिया है तथा वह एक दंत चिकित्सक भी हैं।
1: भैरवी काले रिसीव्ड हर म्यूजिकल ट्रेनिंग फ्रॉम हर फादर विकास काले एंड मिस मंगल देशमुख। शी इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट इन लाइट म्यूजिक फ्रॉम आकाशवाणी नागपुर। शी होल्ड्स द संगीत अलंकार एंड पीएचडी इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। Possessing a melodious voice, Bhairavi Kale has participated in various music competitions at the state and national levels. She is also a dentist by profession.
0: आज की पहली पेशकश है वसंत वैभव दहा दिशांना पसरे। ये शब्द है कवियत्री सरोज देशमुख के। इस गीत को संगीतबद्ध किया है अजय हेड़ाऊ ने।
1: Here is the first गीत वसंत वैभव दहा दिशांना पसरे, sung by Bhairavi Kale. The poetess is Saroj Deshmukh and is composed by Ajay Hiraud.

0: इस गीत के बाद अब भैरवी काले प्रस्तुत कर रही हैं गीत धरा अणु मेघांचे हे ये जुड़ने नाते। रचना है सरोज देशमुख की, इसे संगीतबद्ध किया है अजय हेड़ाऊ ने।
1: भैरवी काले नवरेंडर्स द नेक्स्ट गीत धरा अणु मेघांचे हे ये जुड़ने नाते, पेंड बाय पोएटिस सरोज देशमुख एंड इज कंपोज्ड बाय अजय हेड़ाऊ।

0: भैरवी काली की इस प्रस्तुति के बाद अब सुनते हैं सुरेश भट्ट की रचना। शब्द है माझी उदास गीते तू एक दोस कारे, और गा रही हैं भैरवी काले। संगीतकार हैं अजय हेड़ाउ।
1: नेक्स्ट कॉम्पोजिशन माझी उदास गीते तू ऐकतोस कारे इज पेंड बाय सुरेश भट्ट, कंपोज्ड बाय अजय हेड़ाउ एंड सिंगर इज भैरवी काले।

0: कार्यक्रम के इस भाग के अंत में प्रस्तुत है रामदास कुहेटे का लिखा ये गीत। भैरवी काले ने गाए इस गीत को, संगीतबद्ध किया है अजय हेराव ने। इस गीत के बोल हैं, गणतंत्र भारताचा स्वातंत्र्य दीप देवो।
1: भैरवी काले कंक्लूड्स हर रिसाइटल विद गीत गणतंत्र भारताचा स्वातंत्र्य दीप देवो। द पोएट इज

0: इस गीत के साथ ही आज के प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के इस भाग का समापन होता है। कलाकार थी भैरवी काले, संगीत कलाकार थे हारमोनियम पर अजय हिराव, तबले पर निखिल मड़ावी और वायोलिन संगत निशिकांत देशमुख इनकी थी।
1: With this Marathi Geet by Bhairavi Kale, we come to the end of this part of the national program of regional folk and light music. The accompanists were Ajay Hedav on harmonium, Nikhil Madavi on tabla, and violin artist was Nishikant Deshmukh.
0: यह ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी नागपुर के स्टूडियो में किया गया। आज का प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम जारी है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला भाग।
1: This part of the program was recorded in the studio of Akashwani Nagpur. The program continues. Let us listen to the next segment.
2: ये आकाशवाणी है। क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे सुखविंदर सिंह द्वारा पंजाबी सूफी गुरमुख गीत।
3: This is Akashwani. In this part of the national program of regional folk and light music, you will listen to Punjabi Sufi and folk songs by Sukhvinder Singh.
2: Sukhvinder Singh, जिन्हें उनके मंची नाम दलेर अली के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब के एक प्रतिष्ठित सूफी एवं लोक गायक हैं। संगीत के क्षेत्र में दो दशकों के अनुभव के साथ उन्होंने पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक एवं संगीत परंपरा के संरक्षण और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले 20 वर्षों के दौरान उन्होंने अनेक कव्वाली कार्यक्रमों, सांस्कृतिक समारोहों, धार्मिक आयोजनों तथा विभिन्न प्रतिष्ठित सामाजिक एवं सांस्कृतिक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। उनकी सूफियाना एवं लोक गायकी को देश विदेश के श्रोताओं द्वारा सराहा गया है। एक सफल कलाकार होने के साथ साथ वे एक समर्पित संगीत गुरु भी हैं। उन्होंने अनेक विद्यार्थियों को संगीत की शिक्षा प्रदान की है। वे आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं।
3: सुखविंदर सिंह, also known by his stage name दलेर अली, is a renowned Sufi and folk singer of Punjab. With 2 decades of experience in the field of music, he has made significant contribution to the preservation and promotion of Punjab's rich cultural and musical heritage. Over the past 20 years, he has performed at numerous live Qawwali concerts, cultural festivals and religious events, as well as on various prestigious social and cultural platforms. His Sufi and folk singing has been acclaimed by audience both in India and abroad. In addition to being a successful artist, he is also a dedicated music mentor. He has imparted musical training to numerous students, many of whom are now successfully pursuing career in their respective fields. He is an A-grid artist of Akashwani.
2: आज रात के कार्यक्रम में सुखविंदर सिंह सबसे पहले प्रस्तुत करेंगे काफी शाह हुसैन नी माई मेनू खेड़ियां दी गल ना आख। इस काफी की प्रस्तुति का मुख्य विषय ईश्वरी प्रेम, अटूट भक्ति और आध्यात्मिक मिलन है। हीर का खेड़ो

0: को स्वीकार करने से इनकार करना, आत्मा द्वारा सांसारिक मोह माया को ठुकराने और अपने प्रियतम जो ईश्वर का प्रतीक है के प्रति पूरी तरह समर्पित होने का प्रतीक है।
1: The central theme of this kafi revolves around divine love, unwavering devotion and spiritual union. Eve's refusal to accept the Kedas symbolizes the soul's rejection of worldly attachments and its complete surrender to the beloved Ranjha, who represents the divine.

सुखविंदर सिंह अब प्रस्तुत करेंगे काफी बाबा भुलेशा। मैं गल उत्थे दी करदा हां। ये

0: बुल्ले शाह की एक बेहद रहस्यमय रचना है जो अनिश्चितता, आत्मखोज और ईश्वर के प्रति समर्पण के जरिए साधक की आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है। कवि एक ऐसी सच्चाई की बात करते हैं जो भौतिक दुनिया से परे है, एक ऐसा आध्यात्मिक सत्य जिसे आम भाषा में बयां करना बहुत मुश्किल है। वह ईश्वरीय प्रेम और आंतरिक जागृति के अपने अनुभव को साझा तो करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही अपनी झिझक और डर को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि ऐसे सत्यों को केवल तर्क या बुद्धि के जरिए पूरी तरह नहीं समझा जा सकता।
1: दिस वन इज अ डीप मिस्टिकल कॉम्पोजिशन बाय बाबा बुल्ले शाह दैट एक्सप्लोर्स द सीकर्स स्पिरिचुअल जर्नी थ्रू अनसर्टेनिटी, self-discovery and surrender to the divine. While the poet wishes to share his experience of divine love and inner awakening, he admits his hesitation and fear because such truths cannot be fully understood.

0: सुखविंदर सिंह अब प्रस्तुत करेंगे काफी बाबा गुलाम फरीद सोनिया रमजा तेरिया पौंदिया। बाबा गुलाम फरीद की ये सूफी रचना दिव्य प्रेम की अनोखी सुंदरता और आध्यात्मिक आकर्षण का जश्न मनाती है। असल में कवि प्रिय की मनमोहक खूबियों के बारे में बताता है। मन मोहने वाली आंखें, सुंदर बौहें, लहराते बाल, आकर्षक हाव भाव। हालांकि सूफी परंपरा में ये शारीरिक खूबियां दिव्य सुंदरता के उन रूपों की निशानी है जो साधक के दिल को आध्यात्मिक जागृति की ओर खींचती है।
1: दिस इज अ मिस्टिकल सूफी कंपोजिशन एट्रिब्यूटेड टू बाबा गुलाम फरीद दैट सेलिब्रेट्स द इररेसिस्टिबल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल अट्रैक्शन ऑफ द डिवाइन बिलेवड। इन द सूफी ट्रेडिशन the physical attributes symbolize the manifestation of the divine that draws the seeker's heart towards spiritual

0: सुखविंदर सिंह प्रस्तुत करेंगे एक गीत, रात अद्धी रात तो लंघ गई अगा, पता नहीं यार किथे रह गया। देव हरियाणवी का ये गाना चाहत, इंतजार और जुदाई के दर्द से दिल को छू लेने वाला है। गाना एक ऐसे प्रेमी की भावुक हालत को दिखाता है जो पूरी रात अपने उस प्यारे के आने का इंतजार करता है जो कभी नहीं आता।
1: दिस सॉन्ग लिरिसाइज्ड बाय देव हरियाणवी इज अ पॉइग्नेंट एक्सप्रेशन ऑफ लॉन्गिंग, एंटिसिपेशन एंड द पेन ऑफ सेपरेशन। The song captures the emotional state of a lover who spends the entire night waiting for the arrival of a

0: क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में आप अभी सुन रहे थे सुखविंदर सिंह द्वारा पंजाबी सूफी व लोक गीत। उनके साथ संगत कर रहे थे ढोलक पर प्रदीप कुमार, तबले पर चरण, कीबोर्ड पर पंकज, सारंगी पर सुखविंदर सिंह, बांसुरी पर गुरदीप सिंह तथा मैंडोलिन एवं गिटार पर चरणजीत ढुल्लो। कार्यक्रम का ये भाग आकाशवाणी जालंधर की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू द पंजाबी सूफी एंड फोक सॉन्ग्स संग बाय सुखविंदर। ही वाज अकंपनीड ऑन ढोलक बाय प्रदीप कुमार, तबला चरण, सरंगी सुखविंदर सिंह, कीबोर्ड पंकज, फ्लूट गुरदीप सिंह एंड मैंडोलिन एंड गिटार बाय चरणजीत ढुल्लो। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वाज अ प्रेजेंटेशन

FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात के 11 बजते हुए कुछ पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबरधन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोबरधन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी।

0: इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि सरकार विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल बनाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। 2 दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। यह रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। वहीं ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हो गई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। झारखंड में विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विधानसभा में राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब और दिल्ली में संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स सपोर्ट धोखाधड़ी और जबरन वसूली करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। The Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the scheme will be implemented from 2026-27 to 2035-36 and establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix.
2: भारत की जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है,
3: इंडिया करंटली इंपोर्ट्स नियरली 50% ऑफ इट्स नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट्स एंड द गवर्नमेंट इज टेकिंग कंटिन्यूअस स्टेप्स टू रिड्यूस दिस डिपेंडेंस। अंडर द स्कीम द प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस इज टारगेटेड टू इंक्रीज टेनफोल्ड ओवर द नेक्स्ट डेकेड। फ्रॉम एन एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव द इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बाय अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन टन्स। इकोनॉमिकली इट इज प्रोजेक्टेड टू कंट्रीब्यूट अराउंड 75,000 crore rupees टू the national GDP and generate nearly 1.5 lakh employment opportunities across the country.
2: About 1.5 lakh jobs will be created by this program.
1: Mr. Vaishno said the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of four-lane highway from Guwahati to Tezpur along the National Highway 15 in Assam. On Cabinet's approval of Gobardhan scheme, Prime Minister Narendra Modi in a social media post said the decision is a vital step towards clean energy, rural prosperity.